0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जाए।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: 1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959 दुनिया का

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ,

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा जी से। पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है, शागुस द्वीप समूह का संवेदनशील मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और ऑजी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने इस समझौते को भयानक बताते हुए जेगो गार्सिया द्वीप के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया। हालांकि इस बुनियादी मतभेद के बावजूद व्हाइट हाउस के प्रमुख ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ संबंधों और अच्छे समझ की सराहना की। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज दिन के 1 बजे के करीब पोर्ट लुइस पहुंचेगा। जहाज पर 9,000 मेट्रिक टन से अधिक पेट्रोल, 10,262 टन डीजल और विमानन क्षेत्र के लिए 15,500 टन जेट A1 मौजूद हैं। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर हैं और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालिक समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्यूएन की ग्वांगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों के आयात पर बात की गई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फिलहाल प्रस्तावित कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। और आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार

व्यवहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। और अब आखिर में मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी।

0: टू पर। बाकी इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात को भी मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से शाम के समय दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 26, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:58 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये फ्लैश न्यूज़ यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30। Your news on MBC Play and MBC.MU.
1: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
3: कहते हैं कि नज़र बदलने से नज़रिया बदलता है और सोच बदलने से जो है जीवन की जो राह है वो अपने आप बदल जाती है। तो चलिए, नया दिन निकल चुका है, आप सभी का दिल से स्वागत हम करते हैं भोर की बेला इस कार्यक्रम में। बुधवार 23 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, 6:06 होने को है। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। नया दिन मिला है, नया दिन नए जीवन के समान होता है। तो चलिए एक नए नज़रिए से, एक नए दृष्टिकोण से आज के इस दिन को देखते हैं। जो कुछ हुआ, बीती बातों को भूलकर, पुरानी बातों से सीख लेकर आज के इस नए दिन में कदम रखते हैं। मन में यही आशा, मन में यही विश्वास लिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और ईश्वर सबका कल्याण करेंगे। तो चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भोर की बेला ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है। कुछ क्षणों में आपको बता दें, हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर और उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर। और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो आइए, आज है बुधवार, आज के इस भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।

अलयाम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय अनंत व्रत तथा कथा। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। स्कंद, ब्रह्म और भविष्य पुराणों में इसका वर्णन है। इसमें उदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा के सहयोग होने से इसका फल बढ़ जाता है। उदय व्यापिनी

का मतलब होता है कि सूर्य उदय में चतुर्दशी तिथि प्रमुख ली जाती है तथा भाद्रपद्यास्ते चतुर्दश्याम द्विजोतमम पूर्णाभास्याणाम सभा योगे व्रतम च चांतर्तम चरेत। पूजन के बाद कथा मध्यांत में समाप्त होती है, अतएव यदि दोपहर तक चतुर्दशी रहे तो और भी अच्छा है। व्रत की प्रातःकाल नित्य कर्म तथा स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि बन सके तो एक पवित्र स्थान या चौकी आदि को मंडप के रूप में सजाएं। अन्यत्र सुविधा न हो तो घर पर अन्यथा पास के किसी मंदिर में जहां प्रायः पूजन होता है इसकी व्यवस्था की जाए। यदि नदी के तट और तीर्थ स्थान में भी इस पूजन का विधान है। परिकृत आसन पर भगवान की मूर्ति कुश से बनी हुई 7 फनों वाली शेष स्वरूप अनंत को मंडप में स्थापित करनी चाहिए। उनके आगे 14 गांठों वाली कुमकुम युक्त से अनंत सूत्र रखना चाहिए। यह पूजन हमेशा नदी के तट पर मंदिर के प्रांगण में सबसे उत्तम बताया गया है। इसके बाद नवीन सूत्र गंध अक्षत पुष्प धूप दीप आदि विधि पूजन पूजा करनी चाहिए। पंचामृत मोदक केले आदि का प्रसाद अर्पण किया जाता है। पूजा के बाद गिरिथ संक्षिप्त हवन भी होता है, तब प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का विशेष मंत्र इस प्रकार से है कि इस प्रकार से एक सुत्ता में 14 गांठ बांध करके ही पूजन किया जाता है। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणी धर, नमस्ते सर्व नागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। इस प्रकार से गांठों को बांध करके अपने हाथ में बांधा जाता है और क्षमा प्रार्थना के पश्चात बहायन दान भी होता है। मंत्र यह है। और जो पुराना गांठ वाला जो धागा सुत्ता होता है उसको बहाया जाता है। दातां च विष्णु भगवान अनंत प्रतिदस्तहितां सच एवं विष्णु तस्मात्वाहं सर्वमिदं ततच प्रसिद्ध देवेश वराणं दतस्वः। पूजा विधि समाप्त होने पर अनंत व्रत कथा सुनने का विधान है। उस दिन पूजा के साथ साथ में सभी लोगों को अनंत व्रत का कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात अनंत सूत्र धारण करनी चाहिए। पुरुष को दाहिने हाथ में और स्त्री को बाएं भुजा में, यही बात हमेशा हम सिखाते हैं कि यहाँ पर मैं नहीं कहता बल्कि जो पुस्तक में लिखा गया है, स्त्री को कहा गया कि बाएं भुजा में, कलाई में नहीं, भुजा, भुजा शब्द का उच्चारण किया गया है। इसलिए रक्षा सूत्र को स्त्री को बाएं भुजा में बांधने चाहिए, ऐसा लिखा गया है। इस दिन सायंकाल सूर्य अस्त पहले एक बार मीठा भोजन करना चाहिए। भारत में सवई या खीर खाने का परंपरा है। यदि दिन भर बिना खाए रहना संभव न हो तो दोपहर में भी पूजा के बाद फलाहार किया जा सकता है। किसी भी दशा में नमक नहीं खाना चाहिए। यह व्रत
यदि लगा

लगातार 14 वर्ष तक किया जाए तो अंतिम वर्ष विधि पूर्वक उद्यापन किया जाए तो बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। अनंत सूत्र धारण करने का मंत्र इस प्रकार से है, अनंत संसार महासमुद्र मग्नम संयुद्धर वसुदेव अनंत रूपेण विंधि योग जस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इस प्रकार से मंत्र को उच्चारण करने के बाद या पंडित जी जब मंत्र उच्चारण करेंगे तब आप सब लोग अंतिम 14वां गांठ बांध करके फिर अपने हाथों में बांधना चाहिए। याद रखना, स्त्री को बाएं भुजा कहा गया और पुरुष को अपने कलाई में बांधना चाहिए। पुराने जीन सूत्र को नदी तीर्थ का अन्य पवित्र स्थल पर विसर्जन करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी को धारण किया हुआ सूत्र यदि किसी कारण से टूट जाए तो प्रायश्चित रूप व्रत करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र घी की 108 आवतियां दे करके पहने फिर से पूरा रूप से बना करके उसे पहनना चाहिए। यदि किसी कारण से जो सूता जो धागा आपने बना रखा है वो किसी कारण रूप से टूट जाता है तो उसका भी विधान कहा गया है कि किस प्रकार से पुनः आप उस सूता को बना सकते हैं और मंत्र उच्चारण करके यज्ञ आदि करके आप पुनः पात्र उस सूता को बांध सकते हैं। अनंत व्रत की कथा श्री सुद जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाए थे। महाभारत कथा के अनुसार प्रसिद्ध ही है कि एक बार धर्मवीर महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में दुर्योधन शकुनी आदि भी आए थे। यज्ञशाला भूमि में घूमते समय दुर्योधन को स्थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल प्रतीत हो रहा था। फल स्वरूप कई स्थानों पर फिसल कर गिर पड़ा। उसे गिरते हुए देख करके कई लोग हंसने लगे। हंसने वाले में द्रौपदी भी थी। दुर्योधन को अपना यह अपमान असह्य हो गया और उसने अपने मामा शकुनी से घर लौट जाने का उपाग्रह किया। परंतु शकुनी के बहुत समझाने बुझाने पर यज्ञ में सम्मिलित हुए। हस्तिनापुर लौटने पर दुर्योधन ने शकुनी की सलाह पर पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया और उसी की सहायता से उनको सभी राज संपत्ति जीत लिया और प्रतिज्ञा के अनुसार पांडव वन में चले गए। एक दिन उनके आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जी पधारे। दुख को किस घटी में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्लभ दर्शन से पांडव बहुत प्रसन्न हुए। बातचीत के बीच में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने इन विपत्तियों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा तब उन्होंने इसी अनंत व्रत को पूरा करने का उपदेश दिया जिससे पांडवों का कल्याण हो और वहीं पर वो अनंत व्रत करके पांडवों ने पुनः पात्र अपना राजपाट प्राप्त किया। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभ।

0: के श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6:20 यहाँ पर होने को है। और आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सीबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। वैलेंटिना पिचिको फिनिक्स यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। यहाँ के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक CWA वैलेंटिना, वालदेवी इवेंट गार्डन, मौसलमा लिनवो, पिचिको, मौसलमा रिवर एज, सोफिया ब्रांच रोड, मौसलमा दामरी, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 23 सितंबर को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है वैलेंटिना पिचिको फिनिक्स यहाँ पर और यहाँ के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक मौसलमा लिनवो, पिचिको, मौसलमा रिवर एज, सोफिया ब्रांच रोड, मौसलमा दामरी, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 23 सितंबर को सुबह के 8 से 9 बजे के बीच और फिर दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी दो विज्ञप्तियाँ CEB की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

जी हाँ, जीना इसी का नाम है। यकीनन ज़िंदगी मिली है तो कभी कभार सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन जीवन मिला है तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, हमारे राष्ट्र के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। और कभी कभार लेने से ज़्यादा देने में हमें यकीन होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम देते हैं, पलट कर वही वापस आता है। चलिए, 6 बजे भोर की बेला इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते इस कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 6:30 बजे के पूरे समाचार की ओर। और हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में। सवेरे से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:30 बज चुके। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मैं इसका समर्थन नहीं करता, ये है अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द न्यूयॉर्क में, जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। शागोस द्वीप समूह का संवेदनशील मुद्दा चर्चा में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में इस समझौते को भयानक बताते हुए जिगोगाशा द्वीप के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज पोर्टलिस पहुंचेगा आज। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर है और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। भारत सरकार कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है और अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेट उपलब्ध कराया जाएगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। विदेश में श्रीलंका की हाईकोर्ट ने 2019 के ईस्टर बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई है। न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है, शागोस द्वीप समूह का संवेदनशील मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और ऑडी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत

0: के बाद बाहर निकलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने इस समझौते को भयानक बताते हुए जेगुगासिया द्वीप के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। हालांकि इस बुनियादी मतभेद के बावजूद व्हाइट हाउस के प्रमुख ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंधों और अच्छी समझ की सराहना की। इसका एक अंश पेश है।
1: President, are you going to support it? The deal to give away the Chagos Islands from the UK to Mauritius?
2: I don't support it. I think it was a terrible deal. They all of a sudden say they have ownership. Somebody has ownership that never showed up before after decades and centuries. It's strategically very important. We had to send the B-2 bombers back home to Missouri. It's amazing how strategic it is, and I think the Prime Minister is going to be looking at it.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: It's a very important piece of real estate, militarily and strategically. Yes, right behind.
0: मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज दिन के करीब 1 बजे पोर्ट लुइस पहुंचेगा। जहाज पर 9,000 मेट्रिक टन से अधिक पेट्रोल, 10,262 टन डीजल और विमानन क्षेत्र के लिए 15,500 टन जेट एवान मौजूद हैं। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर हैं और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालिक समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। आद्रियन वालिया की रिपोर्ट पर अशिता रघु का विवरण।
4: कई महीनों की बातचीत के बाद मॉरिशस और भारत के बीच हुए नए समझौते का असर अब दिखाई देने लगा है। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले कई वर्षों तक देश में ईंधन की सप्लाई को सुरक्षित करना और मौजूदा अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच ईंधन की कमी के जोखिम को कम करना है। भारत से आई इस पहली खेप में 9,000 टन से ज्यादा पेट्रोल, 10,000 टन से ज्यादा डीजल और 15,500 टन जेट A1 शामिल है। हालांकि भारत से ईंधन की ये खेप ऐसे समय आई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। भारत से पहली खेप पहुंचने से पहले ही पुराने समझौते के तहत मौजूद स्टॉक के आधार पर किए गए हिसाब से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव दिखाई दे रहा था। अगर पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक कल होती तो पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो सकती थी, यानी करीब 7 रुपये की बढ़ोतरी। वहीं डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो सकती थी, यानी करीब 7.10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। हालांकि इन गणनाओं में भारत से आने वाली नई ईंधन खेप को अभी शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अब ये देखना होगा कि इस नई खेप की खरीद किस कीमत पर हुई है और आने वाली पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की गणना पर इसका क्या असर पड़ता है।
0: मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। जहां उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्यूएन की ग्वांगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों में मतलब के आयात पर बात की गई, जिनमें खाद्य तेल और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शामिल हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फिलहाल प्रस्तावित कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। इस बीच मॉरिशस की कंपनियों को अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने और चीनी मंडी में नए कारोबारी संपर्क स्थापित करने का अवसर मिला है। मंत्री माइकल सिक्यूएन को सुनते हैं, उनसे बात की उर्वशी भिखारी बंजन ने, विवरण अशिता रखो।
4: तेल के उत्पाद तथा कैन के खाद्य उत्पादों की कीमतों का अध्ययन किया जा रहा है और हमें लगता है कि ये लाभदायक होगा। इसके बाद बोर्ड एक निर्णय पर आएगा। एसटीसी और सरकार प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लक्ष्य भी है, लेकिन सबसे जरूरी है स्थानीय स्तर पर पैदावार करें। तब तक मॉरिशस में प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे। एक और सकारात्मक बात

0: ये है कि हमारी मॉर्शन कंपनियों के लिए भी लाभदायक होगा कि भावी मंडियों में जाएं जहां से वे अपने उत्पादों को खरीद पाएंगे। अतः मॉर्शन कंपनियों के निर्यात के लिए लाभदायक होगा। मैंने इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री से बात की है, ईडीबी को भी सूचित कर रहे हैं कि ये निर्यात और आयात के लिए देश के लिए फायदेमंद होगा।
1: ईडीबी की बेनिफिक पुल मॉरिस।
2: भारत सरकार कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, ताकि उन्हें नए उपकरणों और तकनीकों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से वे सुरक्षित वातावरण में बंदरगाह से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का अभ्यास कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके कौशल को मजबूत करना और बंदरगाह क्षेत्र में होने वाले बदलावों के लिए उन्हें तैयार करना है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक गसेन दोसामी को सुनते हैं, जिनसे बात की आशी बाचू ने। अशिता रघु का विवरण।
3: हम अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की मांग पर भारतीय सरकार एक सिमुलेटर दान कर रही है, जो अक्टूबर में मॉरिशस पहुंच रहा है। इसके माध्यम से बंदरगाह से संबंधित सिमुलेशन के लिए प्रशिक्षण कर पाएंगे। ऑपरेटरों के लिए भी जरूरत पड़े तो यहीं ट्रेनिंग देंगे। हम निवेश में विश्वास रखते हैं। डिजिटलाइजेशन के मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य यही है, 28 जनवरी उपकरणों के पहुंचने पर सब आधुनिक हो जाए।
2: जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 7 सितंबर को कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पोर्टलिस बंदरगाह के लिए नए माल हैंडलिंग उपकरणों में 2.7 बिलियन रुपए के निवेश की घोषणा की थी। ये परियोजना यहीं तक नहीं रुकती, इसके दूसरे चरण में कई नए उपकरण खरीदे जाएंगे। इस दूसरे चरण का पूरा वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। एक बार फिर कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से गसेन दोसामी को सुनते हैं।
4: पहले चरण में समझाया गया तथा पूर्ण हस्ताक्षर भी किया गया है, जिसके लिए 2.7 बिलियन रुपए हासिल हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए एक पोर्ट मेगामार्क्स 8 ओटीजी 8 रिस्क टैकर तथा 26 ट्रेलर इम्पैक्टर शामिल हैं, जिसके लिए पूर्ण फाइनेंसिंग भारतीय सरकार कर रही है।
2: जॉ कार्ल एलिजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के पद से इस्तीफा देने के बाद, इसलिए क्योंकि वो एफसीसी की जांच के दायरे में हैं। अब उनके कृषि भूमि के लीज समझौते पर भी रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। कृषि औद्योगिक मंत्रालय ने उन्हें 2 महीने की सख्त समय सीमा दी है, जी हाँ, सख्त समय सीमा, ताकि पोएटो पिमो में उन्हें दी गई जमीन पर खेती शुरू की जा सके। 24 अगस्त को किए गए निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि वहां अभी तक कोई खाद्य फसल नहीं लगाई गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नवंबर की समय सीमा तक जमीन पर कोई काम शुरू नहीं होता है तो इस भूमि का लीज रद्द कर जमीन वापस ले ली जाएगी। चलिए मंत्री अरविंद बुलेल को सुनते हैं, उनसे बात की शैली नियबन ने।
5: Officier du ministère, il a visité, il a trouvé qu'il n'a rien pas fait faire. Tu donnes 6 mois, mais il y a une période de, comment dire, ok, parce que parfois les choses difficiles. Si dans les 2 prochains mois, il n'a rien pas arrivé, la terre a pris le prix. Il y a plus qu'une époque qui s'en a et les mêmes règles pour tout le monde.
2: कृषि उद्योग मंत्रालय छोटे किसानों को बीज और फलों के पौधों के उत्पादन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। इच्छुक किसानों के लिए 2 कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम लौकी, पैचिस और खीरे के बीज उत्पादन से संबंधित है।

0: इसके तहत 27 किसान शामिल हैं और क्वालिटी डिक्लेयर्ड सीड प्रोग्राम के अंतर्गत 80 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। दूसरा कार्यक्रम टाइसू और युक होपो किस्मों के लीची के पौधों के उत्पादन से संबंधित है। इसमें मात्र एक किसान शामिल है। उत्पादित मात्रा के आधार पर प्रत्येक पौधा लगभग 300 रुपए में बेचा जाएगा। बीज और पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इनमें अन्य किस्मों का या पौधों से किसी भी प्रकार के मिश्रण या मतलब मिश्रण से बचना भी शामिल है। कृषि उद्योग मंत्रालय की एग्रीकल्चरल सर्विसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर रुमेश सिंह बिहारी को सुनते हैं। उनसे बात की शबनीज उजीर ने, विवरण रजनी बिकर का।
1: They ensure these three-band standard and procedure can establish.
2: हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक स्टैंडर्ड हो, प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य हो, तब क्रॉप साइकिल के अंत में बीज खरीद सकते हैं, फल के जरिए बीज निकाल सकेंगे और इस तरह सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन बिजनेस में आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। लीची को लेकर भी वे अपने खेत में पौधे लगाते हैं, किस्म पर ध्यान केंद्रित, तब उनसे ये पौधे खरीदते हैं, जैसे कि पचीसों हैं, लौकी हैं। आसपास अन्य प्रकार की खेती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्य किस्म के वैरायटीज होंगे तो क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, अतः ये वैरायटी को कंटामिनेट भी कर सकता है, जैसे कि लेचुस भी हैं। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वैरायटी वो बो रहे हैं वही हम खोज रहे हैं, पास्यो हैं या फिर उकोपाओ। इस साल 27 खेतिहर हैं इन तीन सब्जियों के लिए, खीरा, स्क्वाश, पचीसों और लौकी। करीब 8 मिलियन रुपए निर्धारित हैं। लीची के लिए केवल एक ही वैरायटी को चुना गया है। 1000 पौधे खरीदे जाएंगे, एक पौधे 300 रुपए में खरीदे जाएंगे, अर्थात 1000 पौधे के लिए 3 लाख रुपए होंगे।
0: आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। इसमें स्वास्थ्य को मात्र बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शरीर, मन और जीवन शैली के संतुलन के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद में प्राकृतिक जीवन शैली, पौष्टिक आहार, योग, ध्यान और औषधीय पौधों के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन के अध्यक्ष डॉक्टर कोमल राधाकिशन हमें आयुर्वेद पर अधिक जानकारी दे रहे हैं। उनको सुनते हैं। उनसे बात किया शीता रघु ने।
3: आयुर्वेद हमारे पूर्वजों के साथ मॉरिशस में आया। यह एक बहुत ही प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो वेदों पर आधारित है। यह चिकित्सा पद्धति में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा तथा जब हम बीमार होते हैं उनकी चिकित्सा किस तरह से हम औषधियों, आहार विहार से करते हैं, इसमें बताया गया है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपके दिनचर्या, ऋतुचर्या पर ध्यान देती है, जिससे आपका स्वास्थ्य हमेशा सुरक्षित रहे। आयुर्वेद के बताए हुए सिद्धांत के पालन करने से हमें आरोग्य प्रदान होता है तथा हमारे देश में कल्याण होता है।
0: मॉरिशस में आयुष की स्थापना भी हुई है और बहुत जल्द आयुष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापना होगी। डॉक्टर कुमार राधाकिशन को सुनते हैं।
3: मॉरिशस में आयुर्वेद की प्रगति बहुत ही तेजी से हो रहा है। यहाँ पर अप्रैल से आयुष की नई अध्यक्षा प्रोफेसर पूजा सबरवाल कार्यरत है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, तथा आयुष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण बहुत ही जल्दी होने वाला है। हम ये देखते भी हैं कि हमारे सभी सरकारी अस्पतालों तथा प्राइवेट सेक्टर में भी आयुर्वेद की अच्छी तरह से मतलब प्रगति हो रही है। ख़ासतौर मेडिकल टूरिज़्म को लेकर एक बहुत ही बड़ी उत्सुकता जागरूक हुई है, जिससे जिसको हम कहते हैं लोगों के वेलनेस के लिए आयुर्वेद सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है।

विदेश में श्रीलंका की हाई कोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई है। इन हमलों में 270 लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। दोषी ठहराए गए लोगों में नोफर मुलावी भी शामिल है, जिन पर अभियोजन पक्ष ने आत्मघाती बम धमाकों की साजिश का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। वहीं 9 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 3 चर्च और मतलब गिरजाघरों और 3 लग्जरी होटलों में किए गए इन सिलसिलेवार धमाकों को 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका में सबसे घातक हमले माना गया। मृतकों में 45 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। अरब आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय ऊंचाइयों पर रह रहकर कुछ वर्षा होगी, बाद में मौसम में सुधार आएगा। मौसम अच्छा रहेगा सिवाय शाम को, देश के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात को भी मौसम अच्छा रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से शाम के समय समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 26 इलाकों पर, न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:58 पर हुआ। सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा।

देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर, मैं इसका समर्थन नहीं करता, ये हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। न्यूयॉर्क में कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है, जहां शागोस द्वीप समूह चर्चा का विषय। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज पोर्ट लुइस पहुंचेगा। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर है और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालीन समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। भारत सरकार कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। विदेश में श्रीलंका की हाईकोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई। इन हमलों में 270 लोगों की मौत और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। 6:52 हुए हैं, हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ हमें पूरा समाचार विभाग और फ्रेंच विभाग, रेडियो फ्रेंच विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

शोक समाचार सुनिए। कौतों वाकवा में ये शोक समाचार फिर से सुनिए। कौतें वाकवा में

92 साल की 92 years old, बीबी हवा मुसन, बीबी हवा मुसन पैदाशी नाम कुसबाली इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान कौतियां वाक्वा से उठाकर दफनाने के फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM दयालेन सेंटिलिया में 57 साल के 57 years old श्री भूषण सुखी, श्री भूषण सुखी जिन्हें लोग इंदिवर नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी पत्नी रेशमा सुखी के मकान दयाल लेन सैतिलिया से उठाकर सैतिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM रॉयल रोड रिवियनुआ में 66 साल के 66 years old श्री लक्ष्मी मोसुकू जिन्हें लोग फुन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड रिवियनुआ से उठाकर रिवियनुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM कोकारोल केन्या में 75 साल के 75 years old श्री आनंद देव सुधु जिन्हें लोग सुंदर पेशिया नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे शक्ति सुधु के मकान कोकारोल केन्या से उठाकर प्लेन मायाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM गिरत सिंह लेन लाल माटी में ड्रीम प्राइस सुपरमार्केट के पास 75 साल की 75 years old श्रीमती धीरज सिंह पुष्मावती जिन्हें लोग विजया नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे संजीव धीरज सिंह के मकान गिरत सिंह लेन लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM नंबर 110 ला रू ला पे प्लेन व्यर्थ में 77 साल की 77 years old मिसिज फाजिला मुदाबुकस पैदाशी नाम जुमन और जिन्हें लोग फाजिला नाम से अधिक जानते थे इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज सुपहर के तीन बजे इनके मकान नंबर 110 लाहुला पे प्लान व्यर्थ से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए रिश्तिया की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर वहां से दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रस्तान। फ्यूनरल टूडे 3 PM नंबर 56 ब्लोंडो स्ट्रीट रोज हिल में 30 साल के 40 years old जनाब अजमल अब्दुल रहमान इलाही बकस इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज दिन के 12 बजे इनके मकान नंबर 56 ब्लोंडो स्ट्रीट रोज हिल से उठाकर नमाज जनाजा के लिए रजहिल की सुनी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर वहां से दफनाने के लिए सैमाउते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे 12 PM नंबर 357 मिनाजरी कासी पोर्ट लुइस में नंबर 357 गली मिनाजरी कासी पोर्ट लुइस में 49 साल के 49 years old श्री भवन सिंह गोपुल जिन्हें लोग भवन सिंह नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके भाई महन सिंह गोपुल के मकान 357 गली में नाजरी कासी पोटलुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज पेटिट रिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM जिल्बे जैसन स्ट्रीट ओकुले में 52 साल की ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। जिल्बे जैसन स्ट्रीट ओकुले में 92 साल की 92 years old श्रीमती गौरी गनू पैदाशी नाम पदिया और जिन्हें लोग पर्वत नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे तारासेन गनू के मकान

0: बेजसन स्ट्रीट ओकुले से उठाकर अलीब्रियन किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। Avenue Rose Verdeme, Avenue Rose Verdeme, 64 Saleki, 64 years old, Shrimati Rambhauti Anmol, Shrimati Rambhauti Anmol, Paidashi Nam Digamba aur Jinhilo Kavita Nam se bhi jante the ki mrityu ho gayi hai. Inke arthi aaj din ke 1:30 baje inki patni, inke pati, ji haan, inke arthi aaj din ke 1:30 baje inke pati, धनेश अनमोल के मकान एवेन्यू रोज वेडियन से उठाकर से कॉन्स्टेंस सेंट पिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। स्कूल इन बोनाके में और ऐसे स्कूल इन बोनाके में 65 साल के 65 years old श्री नारद केंटल शिनारद केंटल जिन्हें लोग राजेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ आज दिन के 12:45 बजे आज दिन के 12:45 बजे इनकी पत्नी शमिला केंटल के मकान और SA स्कूल ने बोनाकई से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:45 AM। बालिसों रोजबेल में, बालिसों रोजबेल में 90 साल की 90 years old विधवा सुपमा दोरास्वामी की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे इनके बेटे राजन दोरास्वामी के मकान बालिसों रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। बहन लेन बेलिया रिव्यासेश में 62 साल के 62 years old श्री धर्मराज ओजायब जिन्हें लोग चाहोस संजय दत्त नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में इनके मकान बाहन लेन बेलिया रिव्यासेश से उठाकर लालूसी बिल्डिंग बेलिया किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। कांपुरन पुस्त फ्लाक में 61 साल के 61 years old श्री विजय आनंद गजाधर जिन्हें लोग भीम नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे अविनाश गजाधर के मकान कांपुरन पुस्त फ्लाक से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। Domaine de Moulin Goodlands में 55 साल की 55 years old श्रीमती देवी गोविंदन पैदाशीना मुकेन और जिन्हें लोग मालिनी नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे युवेन गोविंदन के मकान डोमेन डे मूलिन गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोदेजिया वाकुआ में 39 साल के 39 years old श्री रिकेश बिला की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी आरती बिलाव के मकान मोदेजिया वाकुआ से उठाकर फिनिक्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। और एवेन्यू मोते लाबुट में 78 साल की 78 years old श्रीमती विल्डिया गोरीबा पैदाशी नाम चेदी और जिन्हें लोग जेल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान अवेन्यू मुताई लाबुट से उठाकर सेंट जोज ले सालिन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

स्पोर्ट्स न्यूज। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। खेल समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल से यूईएफए नेशंस लीग के मैच खेले जाएंगे। ग्रुप वन में अंडोरा माल्टा, ग्रुप टू में नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच मुकाबला, सर्बिया ग्रीस, लेश्टेनस्टाइन लिचुआनिया। ग्रुप थ्री में ऑस्ट्रिया इसराइल, कोसोवो रिपब्लिक

Norway, Denmark, Portugal, Wales. इंग्लैंड की टीम ग्रुप थ्री में है, कल इस शनिवार को सैटरडे मैच स्पेन के खिलाफ, वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के खिलाफ तगड़ा मैच इंग्लैंड के लिए वेम्बले में। रियल मैड्रिड और फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियान एम्बापे ने कहा कि साल 2016 में जब वो 18 साल का था और मोनाको में खेलता था, तब वो लिवरपूल के लिए साइन करने के एकदम करीब था। उसकी माँ अनफील्ड रोड आई हुई थी। अनफील्ड रोड में आकर यर्गन क्लॉप से मिलकर वो बहुत खुश हुई और दोनों बहुत पसंद आए। वो चाहती थी कि एम्बापे लिवरपूल में आए। उसके लिए लिवरपूल ने एक प्राइवेट जेट फ्रांस भेजा था। एम्बापे का पूरा परिवार प्राइवेट जेट में आया, वहाँ बातें हुई, खूब खाया पिया, पर किलियान एम्बापे को मना नहीं पाए। एम्बापे खेलना चाहता था पेरिस सेंट जर्मेन में और वही हुआ। आर्सेनल के बॉस मिकेल आर्टेटा को नए कॉन्ट्रैक्ट में नई डील दी गई। इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट सैलरी 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से कहीं अधिक और 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग बोनस। आर्सेनल को चैंपियन बनाकर आर्टेटा अब यहां अपनी डिनास्टी, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के लिए फेवरेट हैं। ट्रांसफर बाजार से कुछ खबरें। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस के लेफ्ट बैक टैरिक मिचेल के पीछे हैं। दोनों टीमों में लेफ्ट बैक पोजीशन में कमजोरी है। यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच कल खेले गए। मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख के बीच मैच ड्रॉ। इंटर मिलान ने हैकेन टीम को 1-0 से हराया। आर्सेनल की जीत एचबी कुज टीम के खिलाफ। यूवेंटुस 1 बेनफिका 2, रियल मैड्रिड 1 पेरिस एफसी 1। इधर पेरिस सेंट जर्मेन 1, रियल मैड्रिड 1 पेरिस सेंट जर्मेन 1। आज चेल्सी ऑस्ट्रिया, वियना बार्सिलोना, पेरिस एफसी सर्वेट, लियोन और ओएचएल एएस रोमा। एशियन गेम्स में टीम इंडिया का पहला गोल्ड मेडल। वीमेन्स क्रिकेट फाइनल में भारतीय लड़कियों ने श्रीलंका को हराया। भारतीय टीम के 216 रनों के जवाब में श्रीलंका की महिला टीम केवल 69 रन पर ऑल आउट हुई। 2023 के बाद 2026 में भी एशिया की चैंपियन टीम बनी भारतीय टीम। मेंस टीम इंडिया भी जापान में है। एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक वन ऑफ वार्म अप मैच खेला गया जापान के खिलाफ। केवल 5 ओवर का मैच रहा, केवल 2 रनों से टीम इंडिया जीत पाई। टाइट मैच था। फाइनल ओवर में एक वाइड ओवरटर्न किया गया और भारतीय टीम की जीत हुई। इधर इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे वनडे इंटरनेशनल मैच में पहला मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है। बीच सोको की बात करें, कान 2026 के प्रीलिमिनरी राउंड में कल मॉरिशस का सामना अंगोला से होगा। ब्लू बे अरेना में मैच खेला जाएगा। मैच इस रविवार, इस संडे को के लिए निर्धारित था, पर अंगोला की टीम फ्लाइट मिस कर गई थी। साइकिलिंग, कनाडा में लग रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिले मिक्स्ड में हमारी टीम मोरिस एमसेबे 12वें स्थान पे आई, 12th पोजीशन। अलेक्जेंडर मेयर, डैनियल योनहिन और जेरेमी राबुद लड़कों में, और लड़कियों में कामिल शास्तो, लुसी लाजेस मेयर और किम्बर्ली लेकू डेब्यू पियना थी। पहला स्थान इटली को गया। इधर कुसाफा अंडर 20 में मॉरिशस का सफर पूरा हुआ एक हार के साथ, लगातार तीसरी हार। इस बार मोजाम्बिक ने बेबी क्लूबेम को 5-0 से हराया। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 23 सितंबर, रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:09 यहाँ पर होने को है।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आप सबकी सेवा में जुड़ चुके हैं। अभी से लेकर सवेरे के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। समिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें और चलिए जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके इस प्यार

0: बड़े साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि जीवन के हर पहलू में अगर प्यार हो, अगर अपनापन हो, तो जीवन में कभी भी हम अकेलापन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि प्यार हर कमी को पूरा कर देता है। तो बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको आज के दिन ढेर सारी सफलता मिले, अपनों का प्यार हमेशा आपके साथ हो और आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहे रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुबह का नजराना प्रोग्राम चलने वाला है 9 बजे तक। अभी के लिए चलिए चिंतन के साथ हमारे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चिंतन को हम सुनेंगे डॉक्टर जमीन की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: भूख लगना जिंदा मनुष्य का धर्म है, भूख तो भगवान का संदेश है। भूख न होती तो दुनिया बिल्कुल अनीतिमय और अधार्मिक बन जाती, फिर नैतिक प्रेरणा ही हमारे अंदर न होती।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सवेरे के 7:15 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीबी रिवियनुआ के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। रिवियनुआ के खासकर मौसलमा रामदानी यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर शुक्रवार 25 सितंबर को यहाँ पर आते शुक्रवार 25 सितंबर को सुबह के साढ़े आठ बजे से सपैर के 4 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही यूनियन पार्क मौसलमा एसआईटी यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 24 सितंबर को सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही वालेता के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। वालेता के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक मौसलमा VRS वालेता नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर और आसपास के गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 23 सितंबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही फ्लोरियाल के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। फ्लोरियाल के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक फ्लैट कोलोफान, फ्लैट सेनाटो, फ्लैट मारा, फ्लैट जेसन कोट, फ्लैट फ्लोरियाल गार्डन, थावेन्यू एवेन्यू, क्वीन मैरी स्ट्रीट, आर्थर देबीसी एवेन्यू, एडवर्ड रुयर्ड एवेन्यू, मोहबिया एवेन्यू और आसपास के गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर 26 सितंबर को यहाँ पर शनिवार 26 सितंबर को दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही फ्लोरियाल के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। फ्लोरियाल के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक किंग जॉर्ज एवेन्यू, मोंगो स्ट्रीट, हेस्केट बेल स्ट्रीट, क्वीन मैरी एवेन्यू, जॉन कैनेडी एवेन्यू, रोजिया पिजानी, लाला लेन, लुसियन दे साजाल स्ट्रीट, एनेस्ट आरएल स्ट्रीट यहाँ पर और आसपास के गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी शनिवार 26 सितंबर को सुबह के साढ़े आठ बजे से दोपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सीईबी की ओर से।
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

चलिए यहाँ पर अभी के लिए बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। चलिए अभी के लिए यही सुबह का नजराना म्यूजिकल प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और 7:40 से हम शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस, जिसके लिए आप हमें आपके जो फ़ोन कॉल्स है, आपके जो मैसेजेस है, वो सवेरे से ही हमें मिल रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है 8 हम बढ़ेंगे भोजपुरी समाचार और शोक समाचार की ओर। 8:15 से हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज, आ खेल खेले हम। 8:30 पर आप परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। 8:50 पर किरण जानकी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को।

0: और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद जो है रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे आज की चर्चा इस कार्यक्रम को। 10 बजे के समाचारों के बाद हम आपका साथ देंगे भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। 11 बजे होगा समाचार, उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। दोपहर के 12 बजे वंदना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 बजे प्रीति प्रस्तुत करेगी मराठी भाषा में प्रोग्राम। 1 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आरसी द्वारा। 1:45 बजे गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 बजे से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपैर के 4 बजे शीरीष की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम विविधा। 5 बजे खेतीबाड़ी पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फारे द्वारा। 5:15 बजे से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 बजे समय होगा पूरा समाचार का। 6:30 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे डेविड से। 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे युवराज सेन। 7:30 बजे ग्रीशालिनी द्वारा आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 7:50 पर नितिन बापू प्रस्तुत करेंगे मराठी कार्यक्रम गीत गंगा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रोशनी की प्रस्तुति में। 8:40 पर उर्दू प्रोग्राम आप सुन पाएंगे अविनाश की पेशकश में महफिल शब। 9 से 11 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। 11 बजे गिनीशा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस कार्यक्रम को। और 12:00 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के कार्यक्रमों की।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

यकीनन ये गाने हमारे दिल के बड़े करीब है और इनको सुनते ही न जाने कितनी यादें ताज़ा हो जाती है। खूबसूरत गानों का ये कारवा चलिए आगे ले जाते हैं और अगले गाने के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम में ये म्यूज़िकल सफ़र है जहां पर आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है। और यकीनन थोड़ी ही देर में जो है हम डेडिकेशंस की ओर बढ़ने वाले हैं और डेडिकेशंस के लिए आपके फ़ोन कॉल्स आपके मैसेजेस हमें मिल ही रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये दिन आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए।

एक्चुअली कभी कभार कहते हैं ना कि हम अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकते. बहुत सारी चीज़ें हमारी किस्मत में ऑलरेडी लिखी हुई होती है, लेकिन अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कभी कभार कि किस्मत से आगे हम निकल जाते हैं और जो भी हम चाहते हैं वो ईश्वर हमें दे ही देता है. क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी भी चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती. उसका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है.

अच्छा, चलिए इस दीवानगी को हम बिल्कुल यहाँ पर जारी रखने वाले हैं, आपके डेडिकेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस सवेरे से ही आपके प्यार भरे मैसेजेस और आपके फ़ोन कॉल्स की बरसात यहाँ पर हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4028085 है नंबर हमारा, और साथ ही आप मैसेज कर सकते हैं 5251700 पर। और चलिए यहाँ पर कभी कभार तो सवेरे हमारे प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही आपके मैसेजेस 6 बजे के पहले ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर प्यारी सी मुस्कान के साथ शुभ सवेरा प्यारी सुमी जी। तो चलिए ये सुंदर सा मैसेज जो है आया है यहाँ पर सुमी जी की ओर से, और यहाँ पर वो हमारे साथ जुड़ी हुई है हमेशा की तरह, और यहाँ पर लिख रही है ओके। उन्होंने कहा कि योगा टीचर अमृता खेदना का जन्मदिन है, वो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है, और साथ में ढेर सारा प्यार यहाँ पर जो है। ये मैसेज है माला सुमारू जी की ओर से आया है। और राइट माला जी, थैंक यू आपके इस सुंदर मैसेज के लिए। और जिनका भी जन्मदिन है यानी कि अमृता जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों की ओर से, पूरे परिवार की ओर से। और यहाँ पर वाकवा से सुबी जी हमारा साथ दे रही है, सवेरे सवेरे जल्दी उठ गई है। गाना चाहता है बेटे द्विज के नाम, साथ में पति है धीरज। और यहाँ पर कह रही है कि हो सके तो एक गाना, ओके कोशिश करेंगे हम। ऐसे तो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे डेडिकेशंस का सिलसिला 7:40 से शुरू होता है। और शोभा जी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गाना जाता है श्रविना के नाम, अनुषा के नाम, आपके पति के लिए, और साथ में आपके सभी दोस्तों के नाम जो रेडियो

के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं और यही गाना जाएगा सभी पुरन परिवारों के लिए। शकुन जी रोजबल से हमारे साथ जुड़ी है, गाना जाएगा एवा शेन के नाम सभी जीवन परिवार। जीवन परिवार जो हमेशा हमें सुनते हैं, हमारे प्रोग्रामों में हमारा साथ देते हैं। तो चलिए, किसी का जन्मदिन है, कोई ख़ास मौका है, कोई सेलिब्रेशन है, किसी के नाम कोई खूबसूरत सा गाना जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं।

यकीनन कुछ लोग भी ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो बहार जैसे होते हैं, जिनके बारे में सोचते ही लबों पर मुस्कान आ जाती है, जिनसे बात होते ही ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां दूर हो जाती है, जिनके बारे में सोचते ही मानो सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो बस बहार सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बहार हमारे ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़ी है और उन व्यक्तियों से भी जुड़ी है जो हमारे जो है खुशी का एक वजह हो कह सकते हैं, खुशी की एक वजह है ना। कभी कभार होता है ना कि ज़िंदगी में कभी कभार किसी से मिलने के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं कि मिलेंगे तो ये बातें कहेंगे, वो कहेंगे, अच्छा टाइम बिताएंगे। और आज के इस समय में हम बहुत ही व्यस्त हो गए हैं, सभी बिजी है अपने अपने जिम्मेदारियों में, जीवन को आगे ले जाने में, अपने अपने जो है गोल्स को, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन समय निकाल कर हमें अपनों के साथ ज़रूर मिलना चाहिए, अच्छी बातें, अच्छी यादें बनानी चाहिए, क्योंकि यही तो है जो ज़िंदगी को एक नया आयाम देती है ना। चलिए अभी के लिए ये जो डेडिकेशंस का सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। डेज़ी रानी जी पाम्पलमुस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि अगला गाना हो जाए इनके प्यारे भाई विजय कुमार रामयाल के लिए, साथ में इनकी बेटी और बेटों के नाम वीना है, मीनू है, फिदू है, पूर्णिमा है। खासकर अगला गाना इनके बेटे राजीव और बहू इरिना के लिए, सभी कलकतिया परिवार, रामयाल परिवार, माता बदल परिवार और लखू परिवारों के नाम ये तराना। चलिए और यही गाना इनकी ओर से इनकी बहनों के लिए अमृता और साकुन के नाम भी। रोजबल से अनिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि सभी बच्चों को जिनके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको वो शुभकामनाएँ दे रही हैं। और अगला गाना अनिता जी की ओर से इनके सभी परिवार के सदस्यों के लिए। और चलिए यहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस भी हमें मिले हैं। इंदिरा लौटन जी हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पर सूरज शर्मा जी हमारे हमें सुन रहे हैं त्रियोले से, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबी जी सवेरे सवेरे आपका मैसेज हमें मिला और अभी वो काम करने जा रही है, बस में है, हमें सुन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद सुबी जी। आपको शुभ दिन हम कहेंगे, आज का दिन आपके लिए आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए ऐसी कामना हम करते हैं। और यहाँ पर हमेशा की तरह जो है शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपको भी हम नहीं भूले हैं। सुनीता जी ग्रांगुप से हमेशा हमारा साथ देती है और कहती है कि बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दीजिए, अगला गाना आपके नाम। सुनीता जी आपकी ओर से आपकी प्यारी बहन विमला के लिए और ग्रांगुप के आपके पूरे परिवार के लिए। और ये अगला मैसेज आया है लक्ष्मी जी की ओर से, लक्ष्मी जी लिखती है कि मैं भी यही हूँ हमें पता है लक्ष्मी जी आप भी यही हैं, हमें सुन रही है, हमारा साथ दे रही है, बॉम्बू से आप हमेशा हमें सुनती हैं, काम करने जाने के पहले आप एक भी मौका नहीं गंवाती है रेडियो से नहीं जुड़ने का, बल्कि जब भी मौका मिलता है आप रेडियो से ज़रूर जुड़ती हैं। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है आपके नाम भी, अनिता जी फ्लिक ऑफ लॉक से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, गानों को पसंद कर रही है, प्रोग्राम को पसंद कर रही है, सभी को हैप्पी वेडनेसडे आप कह रही है। और अगला तराना आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, यही गाना आपके नाम भी अनिता जी, इतने प्यार से आप हमेशा

हमारा साथ देती हैं। यहाँ पर लक्ष्मण सिगोबिन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाकवा क्लैम्फो वाकवा से हमें सुन रहे हैं। आपको भी नमस्कार भाई, और अगला गाना सभी सिगोबिन परिवार के नाम हम करते हैं। विश्वानी दुमन जी वाकवा से साथ दे रही है, सभी को शुभ दिन कह रही है। और विश्वानी जी अगला गाना आपके लिए भी और सभी दुमन परिवारों के नाम। और आफिस जी हमेशा हमारा साथ देती है, अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो आफिस जी का फ़ोन आ रहा है, लेकिन इस समय तो हम आपके फ़ोन को नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। लेकिन चलिए आफिस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे हर प्रोग्राम को सुनती है और साथ देती हैं। तो चलिए इसी के साथ, इस गाने के साथ आगे बढ़ते हैं और डेडिकेशंस का जो सिलसिला है इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। जितने भी सुनने वालों का आज जन्मदिन है, आपके परिवार के सदस्य में अब सदस्य कोई जन्मदिन मना रहे हैं, कोई शादी की सालगिरह मना रहे हैं, या कोई ख़ास मौका जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलिए आपकी खुशियों में यहाँ पर हम भी शामिल होते हैं। ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके हर सपना आपका हर अरमां पूरा हो, बड़ों का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा रहे, छोटों का स्नेह रहे। और इसी खूबसूरत गाने के साथ यहाँ पर देखते ही देखते सवेरे के 7:56 ऑलरेडी होने को है, इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 बजल बा सबको के नमस्ते। भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको के स्वागत करत है जा। हम एकर समर्थन नहीं करब। ई अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द है। डोनाल्ड ट्रंप फिनो से सागोस द्वीप समूह के मॉरिशस के सौंपे के योजना पर अपन असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर करलक। उई समझौता के भयानक बोलेबा जब जेगो गौशा द्वीप के रणनीतिक महत्व पर बात करलक। न्यूयॉर्क में काल से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र चलत बा, जहाँ पर सागोस द्वीप समूह पर बात होता। मॉरिशस और भारत के बीच नवा ऊर्जा समझौता आज अपन व्यावहारिक चरण में प्रवेश करता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति करल गल ईंधन के पहला खेप के लेके एक जहाज आज पोर्ट लुइस बंदरगाह पहुंचता। ई खेप एसटीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नवा दीर्घकालीन समझौता की शुरुआत के प्रतीक है। भारत के सरकार कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिजिटल बदलाव के प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता। ई समझौता के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारी के प्रशिक्षण है, जिमें उ नवा उपकरण और तकनीक के इस्तेमाल खातिर तैयार करल जा सकी। अक्टूबर महीना से कर्मचारी लोग खातिर एगो सिम्युलेटर उपलब्ध करावल जाए। आज आयुर्वेद दिवस मनावल जाता है। एगो ऐसन प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा के समर्पित दिन जन स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर और मन के बीच सामंजस्य पर जोर देवेला। दूसर देश के खबर में श्रीलंका के हाईकोर्ट 2019 के ईस्टर संडे बम धमाका के साजिश रचे के आरोप में 15 जना के लंबा जेल के सजा सुनैले बा। ई हमला में 270 जना के मौत हो रहल और 500 से जस्ती जना घायल हो रहल। तैकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play.

8:02 होलबा मरनी के खबर सुन जा मौसलमा सेंट अंतवान गुडलैंड्स में 73 बरिस के 63 अंक के जनाब आजाद इमाम दी जिनकरा सब कोई आजाद नाम से जस्ती जान रलन जा गुजरगर हवन ओ पहले पुलिस कॉर्पोरल रहल उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा नाशिरुद्दीन इमाम दी के घर मौसलमा से तौतवान गुडलैंड से उठावल जाए और दफनाए खातिर बैरमोका कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। कौतें वाकवा में 92 बरीस के काथोवे दूजों के बीबी हवा मुसन पैदाशी नाम कुसमाली गुजर गर हवन इंतकाल कर गर हवन उनकर जनाजा आज दिन के दो बजे उनकर घरे कौते वाकवा से उठावल जाए और दफनाए खातिर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 110 ला रू ला पे प्लेन वेट में 77 बरीस के 77 से तंके मिसिस फाजिला

Mudau Bucăs, Mrs. Fazila Mudau Bucăs, Peda și Nam Juman, Arjun Karasup Koi Fazila Nam Se Jasti Jana Talanja, Intakal Kargar Havan, Unkar Janaza, Jese Sepeher Kitin Bajat, Sepeher Kitin Bajan Kargari, number 110 Lahulapi Plan Vea Tese Uthaval Jai, Arsab Sepehle Jan Namaz Janaza Khatir Rish Tea. के मस्जिद ले जावल जाए फिर हुआ से दफनाए खातिर रिश्ते का कब्रस्तान फ्यूनरल टूडिया 3 PM। नंबर 56 ब्लोंडू स्ट्रीट रोज हिल में 30 बरीस के 30 के जनाब अजमल अब्दुल

हवन इंतकाल कर घर हवन उनकर जनाजा आज दिन के 12 बजे उनकर घर नंबर 56 ब्लोदो स्ट्रीट रोज हिल से उठावल जाए और नमाज जनाजा खातिर रोज हिल के सुनी मस्जिद ले जावल जाए फिर हुआ से दफनाए खातिर सैमौते का कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट नून। दयालेन सैंतीलेम में 57 बरिस के सकन से तौके श्री भूषण सुकी जिनकरा सबको इंदिवर नाम से जस्ती जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 2 बजे उनकर पत्नी रेशमा सुकी के घर रे दयालेन सैंतीलेया से उठावल जाए और सैंतीलेया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टिडिया 2 PM। रॉय रोड रिवियानो में 66 बरिस के 76 के श्री लक्सिमो सुकू जिनकरा सबको फुन नाम से जस्ती जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर घरे रॉय रोड रिवियानो से उठावल जाए आर रिवियानो के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट 11 AM। कंकारोल केन्या में 75 बरिस के 75 के श्री आनंद देव सुदू जिनकरा सबको सुंदर पेशिया नाम से जस्ती जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के एक बजे उनकर बेटा शक्ति सुदू के घरे कंकारोल केन्या से उठावल जाए और प्रेन मायों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। गिरत सिंह लेन लालमाटी में ड्रीम प्राइस के भीड़ी 75 बरिस के 75 के श्रीमती धीरथ सिंह पुष्मावती श्रीमती पुष्मावती धीरथ सिंह जिनकरा सबको विजया नाम से भी जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा संजीव धीरथ सिंह के घरे गिरथ सिंह लेन लालमाटी से उठावल जाए और लालमाटी हुई कि शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 11 AM। नंबर 357 गली मेनाजरी काशी पोटलुई समय 49 बरिस के काउंट नेवा के श्री भवन सिंह गोपाल जिनकरा सबको भवन सिंह नाम से जस्ती जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के दो बजे उनकर भाई महन सिंह गोपाल के घर नंबर 357 गली मेनाजरी काशी पोटलुई से उठावल जाए और सै जोर्ज पेचित रिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट 2 PM। जिलबेर जेसन स्ट्रीट ओकुले में 92 बरिस के 92 years old श्रीमती गौरी गनु पैदाशी नाम पदिया और जिनकरा सबको पर्वत नाम से जस्ती जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के दो बज के आधा उनकर बेटा तारासेन गनु के घरे जिलबे जेसन स्ट्रीट ओकुले से उठावल जाए और आले भैयाओं के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM। एवेन्यू रोज वेदे में 64 बरिस के 64 के श्रीमती रंभावती अनमोल पैदाशी नाम दिगंबा और जिनकरा सबको कविता नाम से जस्ती जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के एक बज के आधा उनकर पति दानिश अनमोल के घरे आवेनी रोज वेदर से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर से कॉन्स्टेंस एम्पिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 1:30 PM। आर एस ए स्कूल लेन बोनाक्यो में 65 बरिस के 60 के श्रीनारद केंटल जिनकरा सबके राजेश नाम से जस्ती जानटलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के पौने बारह बजे उनकर पत्नी शामिला केंटल के घरे आर एस ए स्कूल लेन बोनाक्यो से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर लावांचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 11:45 AM। बालिसों रोजबेल में 90 बरिस के 90 के विधवा सुपामा दोहासामी गुजरगर हवन उनकर माती आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा राजेंद्र दोहासामी के घरे बालिसों रोजबेल से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर यूनियन पार्क के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। बाहन लेन बिलिया रिविया सेश में 62 बरिस के 62 के श्री धर्मराज उजायब श्री

0: अनमराज ओजायब जिनकरा सब कोई चाहो संजय दत्त नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती उनकर घरे बाहन ले नब्बे ले अहिव्या सैश से उठा के लाली सी बिल्डिंग बेलिया के शमशान भूमि ले जावल जाए समय के बारे में बाद में सूचित करल जाए। कंपूरन पुज दे फ्लाक में 61 फरवरी के 61 के श्री विजय आनंद गजाधर जिनकरा सब कोई भीम नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजरगढ़ हवन उनकर माती आज दिन के दो बजे उनकर बेटा अविनाश गजाधर के घरे कौपूरन पुज दे फ्लाक से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर लावाचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 2 PM डोमैन जुमुला गुडलैंड में 55 बरीस के सकन सैकों के श्रीमती देवी गोविंदन पैदाशी नाम मुकैन और जिनकरा सब कोई मालिनी नाम से जस्ती जाना टलन जागुसरगर हवन उनकर माती आज दिन के एक बजे उनकर बेटा योवन गोविंदन के घरे डोमैन जुमुला गुडलैंड से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर बाहुस गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 1 PM मोदेजिया वाकुआ में 39 बरीस के 39 के श्री रिकेश बिलार जिन गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के बारह बज के आधा उनकर पत्नी आरती बिलार के घरे मोदेजिया वाकुआ से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर फेनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 12:30 PM एवेन्यू मोटाई लाबुट में 78 बरीस के 78 के श्रीमती विल्डिया गोरीबा पैदाशी नाम छेदी अर्जुन करा सब कोई जेल नाम से जस्ती जाना रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती काल दिन के 11 बजे जी हाँ उनकर माती काल बीफे के दिन के 11 बजे उनकर घरे एवेन्यू मुताई लाबुट से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर सेंट जॉर्ज ले सालीन के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुमोरो एट 11 AM शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमनी के सहानुभूति बाती।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

चलिए यहाँ पर सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें और

0: से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही देखते 8:20 यहाँ पर हो चुके हैं और आ खेल खेले हम में हम तो बिल्कुल तैयार हैं हमारे प्रश्न के साथ। क्या आप तैयार हैं? ऐसे आपको पता है हर बुधवार को एक छोटा सा क्विज़ लेकर आते हैं हम, और इस क्विज़ का इंतज़ार आप बड़े ही बेसब्री से करते हैं और बड़े ही दिल से इसमें भाग लेते हैं। आज है 23 सितंबर, 23 सितंबर आज एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जा रहा है। ये विशेष दिन जो है भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति के महत्व को उजागर करती है, साथ ही उसके सिद्धांतों और योगदान को समझाने में, लोगों तक पहुंचाने में ये दिन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। यह अपने आप में एक चिकित्सा प्रणाली नहीं, ये अपने आप में एक जीवन शैली का भी रूप है। आजकल लोग इसे बहुत ही आजमाते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए। तो चलिए, आज कौन सा ऐसा विशेष दिन मनाया जा रहा है आप हमें बताएं 4028085 पर। हमारा प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने सारे फ़ोन कॉल्स आना ऑलरेडी शुरू हो गए। चलिए मिलते हैं पहले श्रोता से। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार सुमी जी।
0: नमस्ते जी।
1: हाँ मैं राधा बोल रही हूँ नोएडा से।
0: कैसी है राधा जी?
1: जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बताइए कि जवाब क्या है?
1: जी आज है आयुर्वेदिक दिवस, आयुर्वेदिक पद्धति का दिवस हम मना रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी।
1: मैं इसमें इलाज कराने जाती हूँ।
0: अच्छा,
1: इसलिए मैं, और मुझे पता है कि आज यह बहुत बड़ा दिन है, और मैं लोगों को भी ये कहूँगी कि इसको, इसमें जरूर अपना इलाज कराएं। ये बहुत एक अच्छी पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे कर गई है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, आपने भाग लिया। शुभ दिन कहेंगे आपको। जुड़े रहिए और आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है थोड़ी देर में। एक और श्रोता से मिलते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्ते सुमी जी।
0: नमस्ते जी।
2: तो मेरा जवाब है आज आयुर्वेद दिवस है।
0: ओके ओके।
2: वन फ्यूचर।
0: अच्छा अपना नाम तो बताए।
2: जी मैं देवी हूँ।
0: कैसी है जी आप?
2: ठीक
0: हूँ। चलिए आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन आपको, हमारे साथ जुड़े रहिए।
2: शुभ दिन। प्यारे गानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर, या एक स्वस्थ जीवन शैली को लेकर इसका बड़ा ही योगदान रहा है, और विश्व स्तर पर जो है अब इसे लोग एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। चलिए यहाँ पर काफ़ी सारे जवाब हमें मैसेजेस के ज़रिए भी मिल रहे हैं। यहाँ पर अनीता जी की ओर से जवाब है आयुर्वेदा डे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए। एक और जवाब यहाँ पर आया है दीपा जी की ओर से, कौथरेल से, और जवाब है इनका आयुर्वेदा डे। दीपा जी आपके भी जवाब के लिए शुक्रिया। एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, कौन है?
3: हम तारा हैं।
0: कैसी है तारा जी?
3: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
0: बिल्कुल ठीक है जी। और क्या है जवाब आपके पास?
3: आज आयुर्वेदिक दिवस मनाने जाते हैं।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी आपके इस जवाब के लिए, आपने कोशिश की इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।
3: नमस्कार।
0: एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
4: हेलो नमस्ते,
0: आपका स्वागत है। कौन बोल रही है?
4: मैं नंदिनी मोंगू से बोल रही हूँ।
0: कैसी है नंदिनी जी?
4: अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक है जी नंदिनी जी। और क्या है जवाब?
4: सुंदर गीत आपने भेजा,
0: बहुत धन्यवाद जी।
4: बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
4: जवाब है आयुर्वेदा डे।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आयुर्वेदिक जो है दवाइयाँ आप लेती है या कुछ लेती है आप? ओके
4: हाँ मैं बोलूँ?
0: नहीं ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभ दिन हम कहेंगे नंदिनी जी।
4: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। चलिए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस, और सभी ने एक ही जवाब दिया, तो बिल्कुल सही। आज है 23 सितंबर, और आज जो है आयुर्वेदा दिवस मनाया जाता है, आयुर्वेदा डे। हर वर्ष 23 सितंबर को इसे मनाया जाता है, और आज जो है 11th आयुर्वेदा डे है जो ग्लोबली मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर

हेल्दियर टुमोरो, यानी कि आयुर्वेदा एक स्वस्थ कल के लिए। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो अपने आप में आयुर्वेदा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। विश्व आयुर्वेदा दिवस भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा के महत्व, सिद्धांतों और योगदान को समझाने और लोगों तक पहुँचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आयुर्वेदा शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों यानी कि आयु यानी जीवन और वेदा यानी कि ज्ञान से मिलकर बना है। इसका अर्थ है जीवन का ज्ञान। और आयुर्वेदा की यदि हम बात करें तो सिर्फ ये दवाइयों तक सीमित नहीं है, मसाज करने के लिए, दर्द के लिए जो तेल लगाते हैं उस तक सीमित नहीं है। ये जो है अपने आप में एक जीवन पद्धति है। विश्व आयुर्वेदा दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, प्राकृतिक उपचार और रोगों से बचाव के पारंपरिक तरीके को जो है ये उजागर करती है। आयुर्वेदा केवल बीमारी का इलाज करने पर ही जोर नहीं देता है, बल्कि बीमारी से बचाव और शरीर, मन और जीवन शैली में जो है संतुलन बनाने के भी महत्व को उजागर करता है। तो चलिए इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर स्वास्थ्य है अपने आप में, हम स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं, तो ये ही अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। तो चलिए, आप सभी ने इतने प्रेम से भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर गीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं।

0: और चलिए इसी के साथ सवेरे के 8:30 बज चुके हैं और अभी के लिए समय हुआ है हम बढ़े परिवार नियोजन इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर भगन, तो आइए उनको हम सुनते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोताओं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किशोरी गर्भावस्था यानी कि टीनेज प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी हुई परेशानियों पर। हमारे ड्रॉप इन सेंटर जो कि लाखी देफोश पोर्टविस में स्थित है, हम हर महीने 15 से ज़्यादा नए केसेस किशोरी गर्भावस्था के रजिस्टर करते हैं। 2025 में 263 केसेस रजिस्टर किए गए थे किशोरी गर्भावस्था के, और इस साल जनवरी से लेकर अभी तक हमने किशोरी गर्भावस्था के 126 केसेस रजिस्टर कर चुके हैं और इन किशोरियों की उम्र 12 से लेकर 17 साल तक के हैं। चलिए जानते हैं किशोरी गर्भावस्था क्या है। मासिक धर्म शुरू हो जाने के बाद जब 18 साल से कम उम्र की एक लड़की किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध या यौन शोषण के बाद गर्भवती हो जाती है तो उसे किशोरी गर्भावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में पहुंचने के बाद लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए, और चोरी छुपे यौन संबंध बनाते हैं और किशोरावस्था में ही वे गर्भवती हो जाती है। कई बार लड़कियों पर सेक्स करने के लिए दबाव डाला जाता है और किशोर लड़कियां इस डर के कारण तैयार हो जाती हैं कि कहीं उनके प्रेमी उनको छोड़ ना दे। ज़बरदस्ती यौन संबंध को यौन शोषण कहते हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ किशोर उम्र की लड़कियां अपने ही घर के सदस्य या रिश्तेदारों या किसी अनजान के व्यक्ति द्वारा हिंसा और बलात्कार के शिकार बन सकती हैं या गर्भवती हो सकती है। याद रखें कि हमारे देश में 18 साल से कम के कोई नाबालिग बच्चे के साथ यौन संबंध रखना एक अपराध माना जाता है, जिसका परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकता है और इससे जेल भी हो सकता है। वास्तव में किशोर गर्भावस्था के लक्षण महिलाओं में प्रेगनेंसी की तरह ही होता है, पर किशोर उम्र की लड़कियाँ ये समझ नहीं पाती हैं। आइए जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक लड़की किशोरावस्था में गर्भवती हो गई है। अगर उसे समय पर मासिक धर्म ना आए, वो बार बार पेशाब के लिए जा रही है, उसके खाने पीने में अचानक बहुत बदलाव दिखे, जैसे कि वह बहुत ज़्यादा खट्टा और नमकीन खाना शुरू कर दे, उसे अचानक उल्टी आने लगे या अचानक मूड में ज़्यादा बदलाव हो, अधिक थकान महसूस हो, अधिक नींद आए, पेट के निचले भाग में दर्द इत्यादि, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसा समय है जहां शारीरिक विकास शुरू होता है। इसी उम्र में गर्भधारण करने के बाद किशोरी के स्वास्थ्य को अधिक खतरा होता है। कुछ नवयुवक ये सोचते हैं कि पहली बार यौन संबंध बनाने से वे गर्भवती नहीं हो सकती है। ये धारणा बिल्कुल गलत है और कई केसेस में

जहाँ पे पहली यौन संबंध में ही वे गर्भवती हो जाती है। जो किशोरी गर्भवती है उसको स्वास्थ्य समस्याओं का ज़्यादा खतरा होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना, अनीमिया, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन होना, मुश्किल गर्भावस्था, समय से पहले बच्चे का जन्म और बच्चे का वज़न कमज़ोर होना, माँ या बच्चे की जान को खतरा होना, बच्चे का मालफॉर्मेशन इत्यादि। और जो युवक असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने का, जैसे कि HIV एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी इत्यादि। जो किशोरियाँ गर्भवती हैं उनके बच्चे को भी ज़्यादा खतरा होता है स्वास्थ्य समस्याओं का, या समय से पहले जन्म लेना, या चिकित्सा और मानसिक कठिनाइयों का सामना करती है। कुछ लोग अबॉर्शन करवाने की कोशिश करते हैं जिसका किशोर पर बहुत गलत असर होता है। ध्यान रखें कि अबॉर्शन करवाना एक कानूनी अपराध है। कई ऐसे किशोर ही हैं जो कि बच्चे होने पर सदमा या डिप्रेशन से गुजरती है, और कभी कभी परिपक्वता ना होने के कारण वे अपने बच्चे का सही देखभाल नहीं कर पाती है। अगर इस तरह का स्थिति हो तो उसके परिवार और माता पिता के समर्थन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर किशोरी या उसके परिवार बच्चे का देखभाल नहीं कर सकते हैं तो उस बच्चे को फॉस्टर केयर या अडॉप्शन के लिए देते हैं CDU और फैमिली सपोर्ट सर्विसेज के ज़रिए। इन किशोरियों को आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, ज़्यादातर जो अपने प्रेमी के साथ नहीं होती है। इनको स्कूल छोड़ना पड़ता है ताकि वे अपने बच्चे का देखभाल कर सकें, और आगे जाकर उनको एक अच्छा नौकरी मिलने में परेशानी होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की होती है। किशोरी गर्भावस्था के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि तनाव, चिंता, डिप्रेशन, बेबी ब्लूज़, अनिद्रा और दूसरे मनोवैज्ञानिक परेशानियाँ। कुछ किशोरी माताओं को जल्दी शादी करनी पड़ती है, कुछ किशोरी माताओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज़ हो सकता है। बेबी ब्लूज़ तब होता है जब महिला बच्चे को जन्म देने के 1 से लेकर 2 सप्ताह बाद तक लक्षणों का अनुभव करती है। इन लक्षणों में मूड में बदलाव, चिंता, उदासी, घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, खाने में परेशानी और सोने में कठिनाई शामिल है। बेबी ब्लूज़ कुछ सप्ताहों में समाप्त हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षणों में शामिल है अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने में कठिनाई, अत्यधिक थकान, अपने आप को बेकार महसूस करना, पैनिक अटैक्स, खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना इत्यादि। चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के अनुसार किसी भी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे की धार्मिक या सिविल शादी करना एक अपराध है जिससे जेल हो सकता है। इसी कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र में अपने प्रेमी के साथ रहना भी, यानी कि कोहैबिटेशन भी एक अपराध है। कुछ किशोरी परिवार अस्वीकृति का सामना करती है, और ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि उनके प्रेमी उनके साथ नहीं होती है और वे बच्चे को डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। अगर उनके प्रेमी उनके साथ भी होते हैं तो मैच्योरिटी के कमी के वजह से उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और कभी कभी सेपरेशन तक पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं किशोरी गर्भावस्था के कारण क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, बढ़ती तकनीकी और मॉडर्न दुनिया में सेक्स अब एक छिपने वाली चीज़ नहीं रह गई है, और इसी कारण आजकल के बच्चे इन समस्याओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कामकाजी माता पिता अपने बच्चों को अधिक समय नहीं दे पाते हैं, और बच्चे माता पिता की अनुपस्थिति में कभी कभी गलत काम करते हैं। कुछ बच्चे इंटरनेट मोबाइल पर अश्लील साइट्स देखते हैं, और दोस्तों के प्रभाव पर छोटे उम्र में ही असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा था पहले, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शारीरिक संबंध रखना मना है। जिन परिवारों में माता पिता या नौजवान खुद शराब या नशीली दवाओं को लेते हैं वहाँ पर भी इस तरह के परेशानी ज़्यादा होता है। कुछ नौजवान शराब और नशीली दवाओं के प्रभाव पर असुरक्षित यौन संबंध मनाते हैं, या यौन शोषण करते हैं, या यौन

शोषण के शिकार बन जाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ती प्रभाव के कारण कुछ किशोर यौन रूप से सक्रिय होते हैं। ये भी हम जानते हैं कि कुछ बच्चे इंटरनेट और मोबाइल पर सोशल नेटवर्क्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण, सेक्सटिंग और सेक्सटोर्शन के शिकार बन जाते हैं। बेरोजगारी और दुख के स्थिति में बच्चे यौन शोषण या यौन संबंध के शिकार बन सकते हैं, और कुछ युवती लड़कियां वेश्यावृत्ति में गिर सकती है या गर्भवती हो सकती है। खासकर टूटे परिवारों में जहां माता पिता अलग हैं, वहां बच्चे प्यार, ममता और ध्यान की खोज में गलत हाथ में पड़ जाते हैं और कभी कभी छोटे उम्र में ही यौन संबंध या यौन शोषण के शिकार बन जाते हैं। सेक्सुअलिटी एजुकेशन की कमी के वजह से भी बच्चे किशोरी गर्भावस्था के शिकार बन सकते हैं। हम ये भी देखते हैं हमारे सेंटर में कि बहुत कम माता पिता अपने बच्चों को सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, और कभी कभी जानकारी ना होने के कारण या सही जानकारी ना होने के कारण बच्चे दोस्तों या दूसरे जरिए से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि कभी कभी गलत जानकारी हो सकता है। ये भी हमने देखा है कि बच्चे 14-15 साल से ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं, फिर भी माता पिता बच्चों से सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने को कतराते हैं, और कई बच्चों को गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। अभी बहुत सारे बच्चे दूसरे एक्टिविटीज़ करना पसंद नहीं करते हैं और वे स्कूल के बाद इंटरनेट पर होते हैं। इसके कारण वे अपने सेक्सुअल पल्शन को चैनल नहीं कर पाते हैं और कुछ केसेस में छोटी उम्र में ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं या यौन शोषण के शिकार बन जाते हैं। अभी के बच्चे ज़्यादा जल्दी डिवलप भी होते हैं और कुछ बच्चे छोटे उम्र में ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और कई कारण हैं, जैसे कि दोस्तों के गलत प्रभाव या अपने ही बॉयफ्रेंड या रिश्तेदारों से यौन शोषण या यौन संबंध इत्यादि। चलिए जानते हैं ड्रॉप इन सेंटर का उद्देश्य क्या है। हमारा ड्रॉप इन सेंटर स्थित है लारी दे फोर्स पोर्ट्विस। ये मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड फैमिली वेलफेयर का एक परियोजना है, पर मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के प्रबंध में। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे यौन शोषण या किशोरी गर्भावस्था या बाल वेश्यावृत्ति के शिकार हैं, उनकी हम मदद करते हैं। जो बच्चे एक परिवार के सदस्य या एक पड़ोसी या एक अनजान व्यक्ति से अब्यूज हुए हो, हम उनकी सहायता करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम इन बच्चों की मदद करते हैं ताकि वे सेक्सुअल अब्यूज़ के सदमे से बाहर निकल सके और बाल वेश्यावृत्ति को हम रोक सके। हमारा सेंटर 8:30 से 4 बजे तक खुला है सप्ताह के दिनों में, और 8:30 से 12 बजे तक शनिवार को। हम बच्चों को मनोवैज्ञानिक समर्थन देते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन में सहायता करते हैं। हम उनको मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। अगर वे गर्भवती हैं तो हम उनको मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के क्लिनिक पर भेजते हैं, जहां उनको गायनेकोलॉजिस्ट और एकोग्राफी सेवा प्राप्त होता है। अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको HIV या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्ट के लिए भी हम भेजते हैं। आइए जानते हैं कि किशोरी गर्भावस्था से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। किशोर उम्र के लड़के और लड़कियों को सेक्सुअलिटी एजुकेशन देना चाहिए ताकि वे किसी के बहकावे में आकर सेक्स करने के लिए तैयार ना हो जाए छोटे उम्र में। उन्हें यह बताना चाहिए कि मासिक धर्म क्या है और इसका प्रेगनेंसी में क्या भूमिका है। यदि आप कामकाजी हैं और घर पर बच्चे अधिक देर तक आपकी अनुपस्थिति में रहते हैं, तो आप उनकी हरकतों और व्यवहारों पर नज़र रखें। यह भी ध्यान रखें कि आपका बच्चा इंटरनेट और सोशल मीडियाज़ पर कितने समय बिताता है और क्या करता है। समय समय पर ये चेक करें कि कहीं वह अश्लील वीडियोस नहीं देख रहा है या साइबर बुलिंग का शिकार नहीं बन रहा है। यदि आप किसी बेटी की माँ हैं तो उसे गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में, खासकर गोलियों के बारे में बताएं। उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें ताकि वह अपने शरीर के बारे में आपके ज़रिए सब कुछ जान सके। किशोरी उम्र के लड़के और लड़कियों को बताएं कि यदि कोई व्यक्ति उनके अंगों को छूता है, इशारे करता है या बहकाने की कोशिश करता है या डराता है,
तो वे तुरंत

0: आकर घर पे बताएं या रिपोर्ट करें, लड़की के साथ किसी एकांत जगह पर अकेले जाने से रोकें, जो बच्चे किशोरी गर्भावस्था यानी कि टीनेज प्रेगनेंसी या यौन शोषण या बाल वेश्यावृत्ति के शिकार हैं, वे ऐसे दुष्चक्र में फंसे ना रहें, हमारे ड्रॉप इन सेंटर जो कि लारी दे फोर्स पोर्टविस मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन पे है, आप वहाँ पे आ सकते हैं या इन फोन नंबरों में कॉल कर सकते हैं 2114101 या 2089233। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।
1: तो चलिए अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार नियोजन मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मिस्टर भगन ने, इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए श्रोताओं, सुबह का नजराना इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब समय हुआ है हम किरण जानकी जी की प्रस्तुति में सुने कार्यक्रम हमारी धरोहर।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। सुयाक इलाका के फ्रेंच प्रशासन द्वारा करगल विकास पर आज हमने नजर दौड़ाव जा, और ई जोन इलाका बा हिया के विकास के बारे में सोच बा, तो देख बा कि आज भी ऐसन कितने निशानी सुयाक में मौजूद बा जोन बरतानी प्रशासन के बाद भी वैसे ही रह गल बा। कल फ्रांसीसी प्रशासन के बारे में बोलत रह लीजा, इस्क्लाव के ज़माना में इस्क्लाव माहो हियाँ कैसे रहत रहल और कैसे हियाँ पर धीरे धीरे निवास शुरू होल, एकर पर ध्यान दे लीजा। आज सुयाक एगो बहुत ही दिलचस्प जगह है विजिटे करे खातिर। खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र के लोग जब सुयाक के ओर बढ़े लन जा तो बुझला कि हमने एगो दूसर जगह है जा। हियाँ के समुंदर तट, हियाँ के झरना, हियाँ के नदी, हियाँ के जोन अलग अलग जगह बा वो उत्तरी क्षेत्र से एकदम अलग बा। अब हियाँ के जोन प्राकृतिक नज़ारा बा वो इतना ले मनमोहक बा, लेकिन हियाँ के ऐतिहासिक पहलू भी एकर संगे संगे उतना ही दिलचस्प बा। सुयाक के फ्रांस के सुयाक शहर संगे जुमिलाश ट्विनिंग कर रगल बा। सुयाक में आज सकब्जा बोले 6,000 से जस्ते निवासी बा। हियाँ एगो अस्पताल और एगो मजिस्ट्रेट कोर्ट, साथ में पुलिस पोस्ट, दुगो गिरजाघर, तीन गो मंदिर और एगो मस्जिद बा। सुयाक के पब्लिक बीच जोन बेहद सुंदर बा ओकर नाम है जॉन दे तेलफिया। तेलफिया नाम उ बरतानी मालिक के नाम है जे बेलोम शुगर एस्टेट के विकसित करले रलन उनकरे नाम पर जॉन दे तेलफिया नाम रखा गल। बाद में जाके तेलफिया के जोन नाम बा शॉल तेलफिया, ई समुद्र तट एगो बेहतरीन शॉल तेलफिया के नाम पर ई बाग, ई समुद्र तट बेहतरीन इलाका है पिकनिक खातिर। हियाँ पर बैठे के हियाँ के जोन नज़ारा बा ओकर आनंद उठावे के, साथ में सार्वजनिक सेवा भी जैसे शौचालय के व्यवस्था भी करल गल बा। और हियाँ के समुद्र तट के नज़ारा के देखते हुए हियाँ पर ढेर कोई एकर दौरा करे आवेलन जा, और हियाँ से जोन एगो विचित्र अद्भुत नज़ारा आपके देखे के मिली उ हियाँ के कब्रिस्तान जेके सिमिचिया मागे बोलल जाला। ई कब्रिस्तान समुद्र तट पर ही बनावल गल बा, बालू में बनावल गल बा। सुयाक के पुलिस पोस्ट पुराना इल दु फ्रांस के ज़माना के बनावल है काला पत्थर और लकड़ी से। भले ही आज ई एगो पुलिस स्टेशन है, फिर भी एकर पीछे के जोन अंगना बा हुआं पर एगो बासा, एगो रसोई, एगो भट्टी भी आप पैबा। और पुराना पुलिस स्टेशन के एगो ऊंचा दीवार से सुरक्षित करा गल बा। मानल जाला कि 18वीं सदी में एकर निर्माण करा गल रहल। ई इमारत आगे एगो सैनिक अड्डा रहल और शौदे तेलफिया के ठीक बगल में ई पावल जाला। आज भी हुआ पर ऊंचा ऊंचा दीवार आप देखबा। अब ई इलाका के मजिस्ट्रेचुअर कोर्ट भी बा जोन सुंदर कॉलोनियल इमारत में बनावा गल बा, लेकिन अब एकर हालत खराब पड़ गल बा। और ऐसा जगह के संरक्षण आसान नहीं है कोनो भी तरीका से। ई खातिर एगो नवा कोर्ट बनावा गल बा, लेकिन पुराना इमारत वैसे नहीं बा। और हरा रंग के बड़ा गेट हुआ पर जोन पुराना मजिस्ट्रेचुअर के बा वो आज बंद हो गल बा। ऐसा जगह के जोन संरक्षण कार्य है ओकर में बहुत एक्सपर्टीज लगेला, बहुत पैसा खर्च होवेला और एकर मेंटेनेंस भी बहुत खर्चीला है। एकर बगल में भी कॉलोनियल ज़माना के और इमारत पैबा जहाँ सोशल सिक्योरिटी ऑफिस, सिविल स्टेटस ऑफिस के संगे और दफ्तर बा। और हियाँ पर पुराना रेल

0: के जोन स्टेशन रहल ओ भी हुआ पर पाई बा। आज ओके बदल के हुआ पर ऑफिस बनावल गल बा। और आज भी रेल के जोन सीमा बा, जोन पटरी बा, ओकर निशानी सुयाक में मौजूद बा। अगला कार्यक्रम में ई सुयाक के जोन सिमिट्री बा, जोन सिमिट्री मारे बा, ओकर पर ध्यान देवब जा और देखब जा कि कैसे ई ऐतिहासिक है, कैसे समुन्दर तट के बालू पर सकल जाल बा एगो ऐसन कब्रस्तान बनाए जोन की बहुत पुराना है, जोन की फ्रांसीसी जमाना से स्थापित हो ले आल बा। और आज भी हियाँ पर उ सब कब्र बा, ओकर तोम भी बा और बड़ा बड़ा हस्ती लोग के नाम भी ओकर पर अंकित बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: तो चलिए किरण जानकी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए। और इसी के साथ, इस अगले भोजपुरी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं। सवेरे के 6 बजे से आपने हमारा साथ निभाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छे से बीते और रेडियो मॉरिशस पर आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में, उनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर तो होगा ही, साथ ही आज की चर्चा इस प्रोग्राम का लाइव ब्रॉडकास्ट जो है आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर। हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी 10 बजे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: 619 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं पूजा जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते पूजा।
2: रत्ना, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता, ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। उन्होंने इस समझौते को भयानक बताते हुए जेगो गार्सिया द्वीप के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया। न्यूयॉर्क में कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र रहा है, जहां शागुस द्वीप समूह चर्चा में है। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज पोर्ट लुइस पहुंच रहा है। ये खेप एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालीन समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। भारत की सरकार कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, ताकि उन्हें नए उपकरणों और तकनीकों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। और विदेश में श्रीलंका की हाई कोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई है। इन हमलों में 270 लोगों की जाने गई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो ये थी अब तक की खबरें। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।

0: आज की चर्चा।
1: 23 सितंबर बुधवार का दिन, आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और इसका सीधा प्रसारण अभी MBC के तीसरे चैनल पर भी आप देख पा रहे हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, अभी से लेकर बिल्कुल एक घंटे के इस सफ़र में। आज हम बात करेंगे हृदय पर। बिल्कुल 29 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, और इसी के संदर्भ में, इसी के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर धर्मेश राम जी, जो कि एक कार्डियक सर्जन है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपको भी।
1: और बिल्कुल फ्रांस से आए हुए डॉक्टर जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, हृदय एक ऐसा अंग है जो 2400 घंटे सातों दिन काम करता है, जब से जीते हैं, जब से धरती पर आते हैं, तब से लेकर, जब से हम कह सकते हैं कि हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं, तब से लेकर हमारी मृत्यु तक हृदय एक ऐसा अंग है जो हमेशा चलता रहता है, 2400 घंटे चलता रहता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हृदय के फंक्शंस पर, हृदय कैसे काम करता है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आज हमारे देश में नहीं पर पूरे विश्व भर में हृदय को लेकर संबंधित है, आज डॉक्टर जी से जानने का मौका मिलेगा। तो डॉक्टर जी, पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो फंक्शन कैसे करता है?
2: हृदय एक ऐसा मशीन है जिसमें बहुत सारे, उस मशीन में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि उसका एक मेजर पार्ट जो है, जो वो मसल होता है जो पंप का काम करता है, और उस पंप के द्वारा हम पूरे शरीर को खून दे पाते हैं, ऑक्सीजनेटेड खून दे पाते हैं, तो एक मसल का काम होता है। दूसरा काम तो जो है वो वाल्व्स का होता है, यानी कि खून को एक ही दिशा में बहना चाहिए, ना कि पीछे जाए, उल्टी दिशा में जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे हृदय के लिए, नहीं हमारे फेफड़े के, पूरे शरीर के लिए। और जो तीसरा अंग होता है वो हमारे कोरोनरीज होते हैं, जो जो भी आर्टरीज हमारे उस मसल में जाता है उनको खून देता है, तो जब भी ब्लॉकेज होता है उसको कहते हैं हार्ट अटैक हो जाता है। और एक और अंग भी होता है जो हम उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो है, एक प्रॉब्लम है जो है हमारे दिल में। जैसे कि आप

0: सीबी में बिजली लाते हैं तो सीबी से लेके आप यहाँ तक बिजली लाते हैं, तो हमारे दिल में भी तार होते हैं जो वहाँ बिजली लाते हैं और उससे हमारे हृदय में धड़कन हो जाता है।
1: अच्छा,
0: ये धड़कन जो है वो रेगुलर होता है, इसीलिए हम स्वस्थ रहते हैं। जब ये इरेगुलर हो जाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाता है, ये इन तारों का प्रॉब्लम होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस एक अंग में बहुत सारे अंग होते हैं और हम उसको हमें उसको समझना चाहिए और पॉपुलेशन को भी समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो हैं, जो दिल का प्रॉब्लम होता है, ये कोरोनरीज का प्रॉब्लम सिर्फ नहीं होता, ये मसल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वाल्व्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और जो हमारे कंडक्शन है जैसे कि बिजली के तार होते हैं उनका भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी तो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है ये। और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं हृदय के बारे में, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम हाइपरटेंशन पर, हार्ट अटैक पर, कार्डियक प्रॉब्लम पर बात तो करते आए हैं, पर हमारा हृदय कैसा होता है दिखने में आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि दिल का धड़कना किस तरह से होना चाहिए। अगर आपको खुद एक महसूस होता है कि आपकी धड़कनें जो है वो अगर इरेगुलर हो रही हैं, तो उसे कैसे पहचाना जाए, आज चलिए जानते हैं। डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं कि दिल पूरा दिन धड़कता है, 24 घंटे सातों दिन धड़कता है, तो आप बता सकते हैं कि एक एक दिन में धड़कनें कितनी धड़कनें होती है, हमारा दिल कितनी बार धड़कता है?
0: इसका जवाब मैं ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य जो है जब वो जन्म लेता है तो वो बच्चा होता है और वो बड़ा होकर एडल्ट बन जाता है। जब वो बच्चा होता है तो उसकी गति, उसकी हृदय गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें 130-140 तक ये जा सकता है, क्योंकि उसका पंप का फंक्शन ऐसा होता है। और जब हम बड़ा हो जाते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बोलना कि एक दिन में वो इतना काम करता है, ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हम किस की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं।
1: सही।
0: और हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादातर एडल्ट होते हैं, तो उनकी नॉर्मल गति ये है 80 बीट्स पर मिनट अराउंड। तो जैसे कहते हैं हमारे हमारे किताबों में हमने पढ़ा है कि 6200 बीट्स पर मिनट,
1: यानी ये एक नॉर्मल,
0: ये एक हेल्दी हार्ट की गति होती है। जब वो उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें देखना चाहिए कि क्यों ज़्यादा हो रहा है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये नॉर्मल चीज़ है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर आप आराम कर रहे हो,
1: बैठे बैठे ही
0: एक 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, चेकअप्स करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा हार्ट रिदम ज़्यादा हो रहा है और मैं जानता नहीं क्यों हो रहा है।
1: तो ये
0: सब समझना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, जो हमारी धड़कनें हैं वो कंट्रोल कैसे होती है, मतलब एक कैसे कहते हैं कि उसका एक रिदम होता है, वो रिदम के अनुसार चलती है? और जैसे आजकल देखा गया है कई सारे लोगों का, जब रिदम इम्बैलेंस हो जाता है, इरेग्युलर हो जाता है, तब कहीं जाकर उनको पेसमेकर डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पेसमेकर कब डाला जाता है?
0: पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कंडक्शन का सिस्टम है, जो जैसे कि मैंने कहा, मान लिया जाए एक बिजली के तार होते हैं, तो अगर हमारे सेंट्रल प्लांट जो है, हमें पॉपुलेशन को इमेजिन करना चाहिए कि मान लिया जाए कि वहाँ पोर्टलिस में है
1: जी,
0: और हमें बिजली को क्यूपी पलाना चाहिए, और बीच में या काथोबोन होता है या बुबासन होता
1: बहुत
0: है,
1: सारी जगह
0: ये कनेक्शन हो रहे हैं, तो ये तीन महत्वपूर्ण कनेक्शन होते हैं, जैसे कि पोर्टलिस, काथोबोन और क्यूपी में
1: जी।
0: तो ये जो तार आ रहे हैं एक गति से आ रहे हैं।
1: सही।
0: तो अगर पोर्टलिस में प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली क्यूपिप में, कैथोड में नहीं आ जाएगा।
1: सही।
0: लेकिन अगर पोर्टलिस का अच्छा चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम तो कैथोड में है, तो क्यूपिप नहीं आ जाएगा लेकिन पोर्टलिस का चल रहा होगा।
1: बिल्कुल।
0: मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल इशू है मेडिकल टर्म्स के, और डॉक्टर को समझना चाहिए कि किस लेवल पर प्रॉब्लम हो रहा है,
1: कहाँ पर हो रही है।
0: अगर सेंट्रल पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो हाँ, हमें देखना चाहिए क्या एक पेसमेकर डालना

0: अच्छा रहे हैं, क्योंकि ये दवाई से या कुछ भी लेने से ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे भाग में प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं
1: जी
0: तो हमें देखना चाहिए कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। सेंट्रल पार्ट तो काम कर रहा है, लेकिन जो जो बाकी चीज़ें हैं वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे में वाल्व के इश्यूज भी रिदम प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। जो भी कोरोनरीज ब्लॉक हो जाते हैं, स्पेशली राइट साइड में जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादातर रिदम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऑफ कोर्स हमें सीने में दर्द भी होगा और
1: बिल्कुल,
0: ये सब होगा,
1: जैसे
0: लेकिन
1: सिम्टम्स आपको मिलेंगे
0: हाँ,
1: उसके।
0: लेकिन
1: हाँ
0: मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये एक मशीन है जिसमें सारे अंग जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें एक सिम्टम को लेना चाहिए और उसे हमें पता चलना चाहिए कि क्या ये एक सिम्टम एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है या और चीज़ भी जो दिल में होते हैं
1: बिल्कुल।
0: उससे जुड़े हुए हैं।
1: तो इसका डायग्नोस जैसे काफी लंबे प्रोसेस,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ ये इस ऐसे में डायग्नोस करना 5 मिनट का काम नहीं होता
1: बिल्कुल
0: है। तो
1: बिल्कुल,
0: हमें हमें टाइम लेना चाहिए, हमें
1: उसकी हिस्ट्री
0: हिस्ट्री
1: समझनी चाहिए।
0: समझना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री सब कुछ देखना चाहिए, और हमें पेशेंट को भी चेक करना चाहिए, उसका
1: बिल्कुल
0: एग्जामिनेशन भी करना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: तो डॉक्टर जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आर्टरीज के बारे में बता रहे थे, कोरोनरी आर्टरीज। तो ये जो दिल से कनेक्टेड होती है, ये इसका फंक्शन कैसे होता है?
0: देखिए, जो जब ये मसल का काम होता है, जो वो पूरे शरीर में खून देता है,
1: जी
0: तो ये एक पाइप से जाता है, एक मेन पाइप, उसे बोलते हैं एओटा। और उस एओटा में हमारे उसके बिगिनिंग में जब जब वो हार्ट से निकल जाता है, तो वहाँ पर हमारे कोरोनरीज उनके जन्म होते हैं। तो ये राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में होता है एक नॉर्मल इंसान में, क्योंकि कुछ भी कुछ कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जब राइट साइड डेवलप नहीं होता या लेफ्ट साइड डेवलप नहीं होता, लेकिन छोटे हैं लेकिन है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या एनाटॉमी अच्छी है कि नॉर्मल है या मॉडिफिकेशन हुआ है नेचुरली, और देखना चाहिए कि ये कोरोनरीज जो हैं किस भाग में जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और अगर वो कोरोनरीज अच्छे हैं तो हमें हमें जैसे कि हम एंजियो करते हैं, उसे देखते हैं कि कैसे कोरोनरीज होते हैं, तो उसमें खून आ जाता है, हमारे एओटा उस बिग ट्यूब से आ जाता है और ये खून हमारे मसल में आ जाता है। तो क्या होता है, लोगों को समझना चाहिए कि जब ये हार्ट का पंप काम करता है, जब वो पंप हो जाता है और हमें खून देता है, तो कोरोनरीज काम नहीं करते। जब वो रिलैक्स हो जाता है,
1: तब जाके
0: तब ये कोरोनरीज उनको खून मिलता है और वो हम उन मसल को खून दे पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे पाते हैं, ऑक्सीजन दे पाते हैं। इसे कहते हैं लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब भी इम्बैलेंस हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होता है।
1: और डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी के धड़कने, क्योंकि कई बार होता है जैसे आपने बताया कि चलिए एक्सरसाइज करता है तो समझ में आता है कि धड़कने तेज हो गई, पर ये धड़कने तेज हो जाना, कई बार एकदम धीमे हो जाना, इसके पीछे कारण क्या होते हैं?
0: देखिए, हमारे पूरे शरीर में, ना कि सिर्फ हमारे हृदय में, पूरे शरीर में मसल्स होते हैं।
1: जी
0: जब भी हम एक्सरसाइज हो करते हैं तो हम उन उस पूरे शरीर को मोबिलाइज करते हैं, तो उन सारे मसल्स को, हमारे सारे अंग जो हैं,
1: जी
0: उनका वर्क रेट ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें खून ज़्यादा देना चाहिए। जैसे कि आप हृदय जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है, हम आराम कर रहे हैं,
1: जी
0: तो हमारे खून जो है 5 लीटर पर मिनट में जाता है, ताकि 1 मिनट में 5 लीटर खून का
1: सर्कुलेट
0: सर्कुलेशन
1: हो।
0: हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो
1: जी
0: 5 से ज़्यादा हो जाता है, 6, 7, 8, 20 तक जाता है, 25 तक जा सकता है। तो उसका काम ज़्यादा होता है और इसीलिए हमारे हमारे जो शरीर के मसल्स होते हैं उनका डिमांड बढ़ जाता है, तो इसीलिए ये हृदय ज़्यादा काम करता है। लेकिन जब हम आराम कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्डाइज है, ये 5-6 लीटर पर मिनट का काम करता है। लेकिन अगर आपको हार्ट फेलियर हो जाता है, यानी कि उस हृदय के मसल्स जो हैं वो अच्छा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा हो, तो ये जो आप जब 5 लीटर बेस लाइन आप आराम कर रहे हैं तो आपको 5 लीटर पर मिनट होना चाहिए, हार्ट फेलियर में उस 5 लीटर पर मिनट का ये नहीं दे पाता है।
1: ये वो उतना रेशो नहीं
0: हाँ,
1: होता।
0: उतना रेशो नहीं होता है, क्योंकि

0: ये मसल ठीक तरह से काम नहीं
1: काम
0: कर
1: नहीं
0: रहा
1: कर
0: है,
1: पा रहा है।
0: तो इसीलिए हमें सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी
1: धड़कने
0: कि
1: की
0: धड़कन
1: दर्द कम होने लगती
0: हाँ
1: हैं।
0: कम होने लगती हैं, पैरों में पानी आ जाते हैं, तो हमारे फेफड़ों में भी पानी आ जाता है, तो हमें देखना चाहिए कि ये क्या ये हार्ट फेलियर है। लेकिन एक वेरिएशन भी होता है, जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं, हाई लेवल एथलीट्स
1: जो
0: जो
1: स्पोर्ट्समैन
0: जो
1: होते हैं।
0: स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी धड़कनें जो हैं जब वो आराम करते हैं वो बहुत लो हो जाता है।
1: अच्छा।
0: ये बस क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि उनके शरीर जो डेवलपमेंट होता है वो एक अलग तरह के लेवल में डेवलप होता है। तो आपको 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, उनका जो है वो 40 लगभग का होगा,
1: हाँ, ओके।
0: लेकिन ये अब नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ये सब
1: एकदम
0: देखना
1: से
0: चाहिए।
1: जैसे मतलब हार्ट रिलैक्स हो जाता है,
0: हाँ
1: ये भी कारण हो सकता है।
0: तो ये एक जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि
1: किस
0: हर
1: व्यक्ति के
0: हाँ किस
1: लिए ये कम
0: व्यक्ति
1: क्यों हो रहा
0: हाँ
1: है। बिल्कुल।
0: क्या काम करता है और क्या स्पोर्ट्स करता है, क्या खाता है पीता है, तो हमें ये सब एक इंडिविजुअलिटी
1: तो डॉक्टर जी,
0: पर
1: हम
0: देना
1: ये कह सकते
0: चाहिए।
1: हैं कि मान लीजिए अभी तो आपने स्पोर्ट्समैन की बात की, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे मॉरिशस में कई सारे ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत हैवी फिजिकल उनका इनपुट रहता है, तो क्या उनके लिए भी ऐसा ही
0: नहीं
1: होता है?
0: ये अलग बात है, क्योंकि जब हम हैवी वर्क्स करते हैं, खेतों में काम करते हैं,
1: हाँ।
0: तो हम स्टैटिक होते हैं, हम खड़े होते हैं, और जैसे कि गन्ने के खेत में जो काम करते हैं
1: जी
0: वो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन
1: बिल्कुल।
0: उनके पैर उतना ज़्यादा काम नहीं, वो इतना ज़्यादा नहीं चल रहे हैं,
1: जी,
0: ये
1: हाथों का काम।
0: हाँ हाथों का
1: बिल्कुल।
0: काम कर रहे हैं। तो हमारे हमारे पूरे सिस्टम में जब हम चलते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ता है,
1: अच्छा।
0: लेकिन जब हम खड़े होते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ खड़े होते हैं या फिर बैठ रहे हैं, तो इतना सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होता।
1: यानी पैरों का चलने से
0: हाँ
1: सर्कुलेशन
0: क्योंकि
1: को।
0: हमारे पैरों के नीचे जो भी उसे बोलते हैं इंग्लिश में कशन,
1: हाँ,
0: तो जब हम उस पे चलते हैं तो हम उस कशन को
1: प्रेशराइज करते
0: स्टिमुलेट
1: हैं।
0: करते हैं
1: बिल्कुल।
0: और ये हमारे खून को चलने में ज़्यादा हेल्प करता है।
1: तो यानी चलना, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा अच्छा है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है
0: हाँ
1: उनको थोड़ा बहुत वॉकिंग करना।
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज ये स्टडीज़ में भी माना जाता है कि
1: जी
0: जो भी व्यक्ति उनको हार्ट फेलियर होता है
1: जी
0: उनको लगता है कि मुझे बैठना चाहिए, मुझे घर में रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, उनको
1: बिल्कुल।
0: थोड़ा सा एक्सरसाइज
1: एक्सरसाइज
0: करना
1: करना
0: चाहिए।
1: ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लड
0: हाँ
1: सर्कुलेशन है इसी पर आधार रखती है।
0: ये थोड़ा सा भी एक्सरसाइज जो वो करते हैं हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए उनका ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये दवाई का मैं नहीं कह रहा कि ये दवाई छूट जाता है, लेकिन उनके डोजेस कम पड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे
0: तो
1: वो पोस्टपोन हो सकता है कि
0: हाँ
1: आपका जो भी रिस्क है वो थोड़ा
0: हाँ
1: कम कम होना शुरू हो जाता है इससे।
0: एग्जैक्टली, तो उनके
1: बिल्कुल
0: रिस्क भी कम होते हैं
1: बिल्कुल,
0: और उनको जो है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी
1: इम्प्रूव
0: ज़्यादा
1: होती
0: इम्प्रूव
1: हैं।
0: होता है।
1: बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं हृदय के फंक्शंस पर, और अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे हृदय को कैसे प्रभावित करता है। हमारे साथ बने रहें, और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो हृदय के रोगों को लगकर है, या कोई भी ऐसा सवाल आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर 9:30 बजे के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर। लेते हैं गीत का ब्रेक।

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम और हमारे साथ तकनीक पर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं कादिया, प्रोडक्शन असिस्टेंट है दीपशिका और रत्नमाला जी हमारे प्रोड्यूसर जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दे रही हैं। और बिल्कुल हमारे श्रोताओं से मांग है, अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हृदय के रोगों को लेकर कोई भी ऐसा सवाल है तो अवश्य आज के इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं 4028085 पर। और जैसे ये गाना चला, भाई हृदय में दर्द उठने वाला हर बार प्यार नहीं होता, कई बार ये आपको संकेत देता है कि हो सकता है कि आपको हृदय रोग की कोई ऐसी सिम्टम्स हो रही हैं। और बिल्कुल आज का जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से हमारे हृदय को प्रभावित करता है ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, डॉक्टर जी से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, डॉक्टर जी लाइफस्टाइल हमारे हृदय को कैसे प्रभावित करता है?
1: हमें हमारे लाइफस्टाइल जो है वो हमारे काम से जुड़े हुए हैं, हम पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सब आउटसाइड की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, हमारे शरीर के अंदर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, अगर आप बैठे रहते हैं, आप सब कुछ खाते पीते हैं, जो भी कोलेस्टेरॉल की चीज़ें हैं, जो भी होता
0: जो भी जंक फूड है, ऑयली,
1: चाहे वो जंक फूड हो या घर का खाना में ज़्यादा तेल डालते हैं, उसका कंसीक्वेंस, उसका जो रिजल्ट है वो सेम होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें जानना चाहिए कि क्यों ये हमें प्रॉब्लम्स देता है। देखिए, हमने कहा था कि हमारे शरीर में खून बहता है, तो ये खून हमारे आर्टरीज में जाता है, चाहे वो कोरोनरीज हो जो हृदय के मसल को देता है, या फिर
0: और कोई भी
1: अंग होता। तो ये जो खून बह रहा है, अगर उसमें कोलेस्टेरॉल का जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है, तो ये एक छोटा सा इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है
0: शरीर में जहाँ भी हो
1: शरीर में इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। अगर हम इस इन्फ्लामेशन को रोज़ मेंटेन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं, तो ये इन्फ्लामेशन मेंटेन हो जाता है
0: जी।
1: ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये साइंटिफिक प्रूवन भी है।
0: ओके।
1: तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम मेंटेन करते हैं, और क्या हो जाता है कि जो आर्टरीज हैं, जब भी वो हमारे शरीर के अंग में जाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है
0: जी।
1: और उस जोन में उस जोन में इन्फ्लामेशन होना ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर जो है हमें कोलेस्टेरॉल के प्लाक्स दिखने लगते हैं, डिपॉजिट हो जाता है, और वो डिपॉजिट इन्फ्लामेशन से जुड़ा हुआ था और हमारे शरीर, हमारे खून में जितने भी कोलेस्टेरॉल के लेवल है उससे भी जुड़ा हुआ। तो जब ये इन्फ्लामेशन कंस्टेंट हो जाता है या हमने ज़्यादा खा लिया हो, तो उसका इन्फ्लामेशन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये कोलेस्टेरॉल का डिपॉजिट ज़्यादा होता है, और क्या हो जाता है, एक समय आ जाता है जब वो उसका लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो खून आ रहा है और उसको जो खून लेना चाहिए वो
0: रुक जाता है।
1: तो हमें शरीर को अच्छा नहीं लगता। तो अगर वो कोरोनरीज में होता है तो हमें हृदय रोग होता है, लेकिन ये
0: शरीर के किसी अंग में
1: भी हो सकता है। तो ये इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम है।
0: बिल्कुल।
1: लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है या हमारे
0: थोड़ा कुछ जंक फूड या थोड़ा कुछ तेल वाला खा लेने से
1: नहीं, ये प्योरली इन्फ्लामेशन का काम होता है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: ये है जो जैसे कि हम एक घर बनाते हैं
0: जी,
1: तो पहले उसका फाउंडेशन होता है, उसके ब्रिक्स होते हैं
0: जी,
1: तो इन्फ्लामेशन इसका काम करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमें
0: डॉक्टर जी यहाँ पर इशारा हो रहा है कि एक श्रोता है लाइन पर, आइए सुनते हैं उनका सवाल। हेलो
2: हेलो रचना जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका स्वागत है।
2: मैं ठीक से नहीं सुन पाई कि डॉक्टर कौन डॉक्टर बात कर रहे हैं?
0: आज डॉक्टर जी बात कर रहे हैं हृदय के रोगों पर, दिल की कोई भी बीमारी है उस पर।
2: उसका नाम क्या है, डॉक्टर जी का नाम बता सकते हैं?
0: डॉक्टर जी का नाम है धर्मेश रामलगन जी।
2: हाँ, रामलगन जी।

0: मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि मेरे दिल में एक बीमारी है। ये मैं 3 साल पहले ऑजो किया है, तो
1: जी
0: मैं चल नहीं सकती हूँ ठीक से, दर्द होते हैं। क्यों,
1: हाँ
0: क्या कारण है इसका?
1: जी फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा चाची जी।
0: मैं 2 साल पहले ऑजो किया है दिल का, तो
1: हाँ
0: मैं थोड़ा चलती हूँ तो दर्द होने लगता है, ठीक से चल नहीं सकती हूँ।
1: जी
0: उसका क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर जी से मुझे ये
1: जानना है,
0: कुछ
1: चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से। आप रेडियो पर सुनिए। जी हाँ डॉक्टर जी, उन्होंने 2 साल पहले एंजियो किया था, तो अब जब वो चलती भी हैं थोड़ा सा तो उनको दर्द शुरू हो जाता है।
2: ये टिपिकल केस है। हमने पहले भी बोला था क्यों, हमारे शरीर में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है।
1: बिल्कुल
2: तो जब वहाँ चल जब ये आपकी आपकी उम्र क्या है?
1: नहीं, शायद फोन कट गया है।
2: हाँ,
1: हाँ जी।
2: तो जब वो चलती हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, हमारे हृदय का डिमांड भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
2: अगर कोई भी जगह में ब्लॉकेज होता है तो वो सप्लाई नहीं हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज
1: ब्लॉकेज
2: होगा।
1: है।
2: तो अगर उसको सीने में दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ टेस्ट करना है। और अगर एंजियो भी किया है, एंजियो क्या होता है कि हम एक तार को हमारे आर्टरीज में डालते हैं,
1: जी
2: हृदय तक लाते हैं,
1: जी
2: और उसमें एक प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सारे आर्टरीज को देख सकें।
1: जी
2: तो जानना चाहिए कि जब उन्होंने ये किया तो क्या देखा,
1: जी
2: क्या कोई प्रॉब्लम हुआ, क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्या उसको उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। लेकिन ये जानना चाहिए कि जो भी एनजीओ आपने 1 साल से ऊपर किया
1: जी
2: तो वो इनवैलिड हो जाता है,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि 2 साल में अगर उसका कोई प्रॉब्लम बेसलाइन में हुआ तो वो बढ़ सकता है। तो उसको घर में नहीं रहना चाहिए, उसको
1: तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाना बहुत
2: दिखाना चाहिए।
1: ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने रेंडेवू पर जा रहे हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स पर जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ होता है तो आप बैठे ना रहें, आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं हो सकता है कि ये डेंजरस हों, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि बिल्कुल सिचुएशन हो सकता है कि आपके दिल को लेकर गंभीर हो सकती है, इसीलिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। चलिए इसी के साथ, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है हमारे हृदय पर? डॉक्टर जी, आजकल तो ये फैशन हो गया है कि अगर सिगरेट स्मोक ना करो तो आपके दोस्त आपको नीचा दिखा देंगे, या फिर शराब ना लो तो ऐसे कहेंगे कि ये थोड़ी चलता है आज की सोसाइटी में, तो ये हमारे दिल को कैसे प्रभावित करता
2: हाँ,
1: है?
2: लेकिन पहले ये एक फिलोसॉफिकल आंसर है। अगर आपने कहा कि आपके दोस्त आपको नीचा दिखाएंगे, आपको आपके दोस्त आपको अभी नीचा दिखाएंगे, बाद में वे नीचे दिखेंगे, तो
1: ये
2: ये
1: समझना
2: समझना
1: बहुत
2: चाहिए,
1: जरूरी
2: ये
1: है। बिल्कुल
2: समझना चाहिए।
1: बिल्कुल
2: तो जब भी हम धूम्रपान करते हैं तो उसका उसके इफेक्ट्स जो हैं
1: हाँ
2: हमारे सिर्फ हृदय पे नहीं होता है, हमें पूरे शरीर में होता है।
1: हाँ
2: और वो हमने पहले भी बताया, उसका उसका मेन रीज़न है इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है,
1: बिल्कुल
2: और जो इन्फ्लामेशन धूम्रपान से होता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है।
1: सही बिल्कुल
2: तो हम और हमें ये भी समझना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ व्यक्ति आते हैं और हमें बोलते हैं, सर मैंने 3-4 सिगरेट पिए लेकिन मुझे भी हृदय रोग हुआ, उसने एक पैकेट भी पिया उसको
1: उसे
2: भी
1: कुछ
2: हृदय
1: नहीं हुआ।
2: रोग,
1: हाँ
2: उसे क्या कुछ
1: हाँ
2: हुआ नहीं हुआ, तो मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब भी ये धुआं हमारे खून से उसका कांटेक्ट हो जाता है तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। और जैसे कि हम
1: सिर्फ
2: जान
1: धुएं के कांटेक्ट से
2: हाँ
1: इन्फ्लेमेशन हो सकता
2: हाँ
1: है।
2: तो हमारे जो भी व्यक्तियाँ हैं सब अलग होते हैं,
1: बिल्कुल
2: जेनेटिक्स अलग होते हैं।
1: जी
2: तो आप शायद आप 1 सिगरेट पी रही हैं
1: जी
2: तो आपका इन्फ्लामेशन 100 गुना बढ़ेगा,
1: हाँ
2: कोई और 1 सिगरेट पिएगा तो उसका इन्फ्लामेशन 20 गुना ज़्यादा होगा। एक वेरिएशन होता है जेनेटिक के
1: अनुसार
2: अनुसार से। तो सोल्यूशन क्या है? धूम्रपान छोड़ें,
1: बिल्कुल, जितना
2: क्योंकि
1: जल्दी आप छोड़

0: हाँ
1: छोड़ेंगे उतना आपके सेहत के लिए
0: हाँ तो
1: फायदेमंद
0: फायदेमंद
1: रहेगा
0: होगा और
1: जी।
0: हमारे हृदय रोग भी कम हो जाए
1: हाँ
0: हो जाएंगे
1: बिल्कुल
0: और हमारे फेफड़ों को भी अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल। चलिए यहाँ डॉक्टर जी एक और इशारा हो रहा है टेलीफोन। जी हाँ फोन कट गया है शायद। जी हाँ 4028085 पर अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर है 4028085 पर। और बिल्कुल हमारे साथ दीपशिका बनी हुई है, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर है रत्नमाला मंगरू जी। कादिया जी हमारे साथ तकनीक पर बने हुए हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं धूम्रपान और शराब की लत अगर लगती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे हृदय को बिल्कुल रोगी बना ही देता है। आप निरोगी नहीं रह सकते। और जैसे डॉक्टर जी आज का समय तो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ का हो गया है, एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है, हम थोड़ा चलना भी पड़े तो हम गाड़ी लेकर जाते हैं या मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं। तो एक्सरसाइज ना करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज हम पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं,
0: हाँ
1: तो क्या ये भी हमारे हृदय को प्रभावित करता
0: हाँ
1: है?
0: क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि ये सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं करता, हम खड़े होते हैं बैठे
1: जी
0: होते हैं तो हम
1: जी
0: चल नहीं रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: उस पंप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,
1: जी
0: जो भी एनर्जी उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, अच्छी
1: जी
0: तरह से नहीं कर रहे हैं।
1: जी
0: ये सिर्फ हृदय को नहीं, सारे अंग जो हैं उस पर प्रभावित होता था। और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है आपने कहा, तो जब हम उस सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं करते
1: जी
0: तो हम, जैसे हमने बताया एमिशन से कि पहले भाग में 5 लीटर पर मिनट जो खून का बहना होता है और एक्सरसाइज करने पे ये 4-5 गुना ज़्यादा होता है, उसका वेरिएशन होना ज़रूरी है हमारे जीवित रहने के लिए।
1: बिल्कुल
0: तो अगर हम ये मेंटेन नहीं करते तो उसमें इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, उसमें आर्टरीज के प्रॉब्लम आ जाएंगे और हमारे जो हृदय का मसल है
1: जी
0: वो भी सेडेंटरी हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं
1: जैसे
0: पूरे हफ्ते
1: बिल्कुल
0: में
1: हाँ
0: काम
1: काम ही
0: नहीं
1: ना
0: कर रहा
1: करूं
0: हूँ,
1: जी
0: सिर्फ एक बार आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता,
1: बिल्कुल लेजी हो जाता है
0: लेजी
1: कहीं
0: हो
1: ना
0: जाता है।
1: कहीं।
0: और जैसे कहते हैं आपको क्रियोल में बोलते हैं, पेशेंट्स बोलते हैं मैं फिजियोथेरापी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नेचुरल फिजियोथेरापी है इस हृदय के लिए,
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज करना उसके लिए नेचुरल फिजियोथेरापी है,
1: बिल्कुल
0: उसको अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमें एक्टिव रहना चाहिए,
1: जी
0: हमारे हमें जानना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या फ्यूल ला रहे हैं
1: बिल्कुल
0: इस
1: बिल्कुल।
0: शरीर में।
1: चलिए यहाँ पर एक श्रोता है, सुनते हैं उनका सवाल। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रत्ना बेटी।
1: नमस्ते। नमस्ते दादी, तो हर स्वागत बा।
2: हाँ
1: हाँ बोला।
2: हमार नौ बरिस हो गल, और जो कर ले लिए तब ऐसा बेटी,
1: हाँ
2: तब से तो बहुत अच्छा रही, तो कैसे लगे गईली फैतमा करीला, अब तक कमर के दुलेर उठल बाटे, कागज दिल बा डॉक्टर ले जो, डॉक्टर से पूछे के जोन के फैतमा करीला दिल के बीमारी के ना,
1: हाँ हाँ
2: नसीपा कान में पास हो ऐसो बा पूछो तो डॉक्टर के। डॉक्टर जी नमस्ते।
0: नमस्ते दादी जी।
1: वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने औंजो भी किया है और उन्होंने गैसो डाला है,
0: जो
1: तो उनकी कमर में दर्द हो रहा है, क्या ये रिलेटेड है इन सारे ट्रीटमेंट की वजह से उनको कमर में दर्द हो रहा है?
0: आमतौर पर नहीं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि उसका ओवरऑल हेल्थ कैसा हुआ, कैसा हो रहा है। तो अगर सीने में दर्द हुआ तो उसने स्टेंट डाला, गैसो डाला, तो
1: जी
0: उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन मेडिकेशन लेना चाहिए,
1: जी
0: ये फॉलोअप में है।
1: जी
0: लेकिन अगर कमर में दर्द हो रहा है, ये बहुत चीज़ें हो सकती हैं, या वो या बुढ़ापे में से आ जा सकता है, हमारे जो भी हड्डियों के प्रॉब्लम्स होते हैं उससे भी आ जा सकते हैं, बैक मसल्स
1: जी
0: हमारे पीठ में जो मसल्स होते हैं उससे भी आ जा सकता है।
1: यानी
0: हाँ,
1: बहुत सारे कंडीशंस
0: और
1: हो सकते
0: हमारे
1: हैं।
0: जो हैं जो बोलते हैं क्रियोल में लाओस
1: हाँ हाँ
0: लाओस एंड एंड और हमारे जो घुटनों
1: घुटने
0: में भी,
1: जी।
0: उसमें भी दर्द हो सकता है, लेकिन वो दर्द हमारे पीठ पर भी प्रभावित हो जाता है। तो क्या है कि इस दादी के सॉल्यूशन के लिए उसको एक अच्छा डॉक्टर देखना चाहिए, जनरल डॉक्टर, ताकि पूरी तरह से अच्छी तरह से एग्जामिनेशन हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी
0: हाँ
1: है। हाँ चलिए यहाँ पर एक और श्रोता है, उनको भी सुन लेते हैं। हाँ लो
3: हेलो
1: हेलो हाँ जी।

0: नमस्ते जी।
1: रत्ना जी नमस्ते।
0: हाँ जी
1: डॉक्टर जी के भी नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर, मैं आंजो किए थे 15 बरिस हो गए, रेसो डाली डाली थी, मैं संग रेसो है मेरे दिल में, तो तब से ठीक थी, अब जब चलती हूँ तब थक जाती हूँ। क्यों
0: जान सकते हैं आपकी उम्र कितनी है?
1: 77
2: देखिए, अगर उन्होंने स्टेंट डाला है जो रेसो बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि हाथ में ब्लॉकेज हुआ था।
0: बिल्कुल।
2: तो ये 15 साल पहले की बात है, 15 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं
0: जी,
2: क्योंकि अगर एक सिंपल एंजियो एक साल में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो ओवरऑल हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, वो बिगड़ सकता है
0: जी।
2: तो ये 15 साल की बात हुई।
0: बिल्कुल।
2: अगर उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सांसों में सांसें में लेने में कठिनाई हो रही है
0: जी,
2: तो उसका फिर से अच्छी तरह से चेकअप होना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि हमें देखना चाहिए क्या इस क्या वो जगह जब जहाँ उसने स्टेंट डाला, रेसो डाला, क्या वो ठीक है, या फिर क्या उस जगह पर फिर से प्रॉब्लम आ गया हो, और हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या दूसरी जगह जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्या वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस सब को देखना चाहिए, और सिंपल सा सा तरीका है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरी तरह से एग्जामिनेशन करना चाहिए उसको। इस केस में
0: जी,
2: उसको ECG करना चाहिए, ताकि हम दिल के जो भी कंडक्शन सिस्टम को देख सके
0: जी,
2: और पूरी अच्छी तरह से एको, यानी कि उस मसल के फंक्शन को देखना चाहिए। तब इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हम जान सकते हैं कि क्या इस पेशेंट को फिर से एंजो करना पड़ेगा या नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एंजो या नहीं, क्योंकि अगर उसने 15 साल एंजो नहीं किया था
0: जी, जी,
2: तो हम सोच सकते हैं क्या कोई और तरीका है देखने के लिए। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो उनको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि उसको एक पहले भी हाथ उसका एक पहले हादसा हो चुका है, तो अब वो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं है।
0: बिल्कुल।
2: सेकेंडरी प्रिवेंशन में है, तो हमें वक्त नहीं
0: वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत उनको दिखाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको ऐसा कोई भी हो रहा है, संकेत हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार फिर से आप अपना चेकअप करवाएं। हो सकता है कि जहां स्टैंड डाला वहां नहीं, पर कहीं और जगह पर कोई आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, शायद इसी कारण आपको दर्द हो रहा है। और इसी के साथ जी हाँ डॉक्टर, आज जो जीवन है, आज का जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा तनाव से भरा हुआ है, टेंशन आए दिन रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम पूरी नींद नहीं ले पाते, ठीक से सो नहीं पाते। तो क्या ये सारी चीज़ें भी हमारे हृदय को हेल्दी रखने को, मतलब बीमार कर सकता है हमारे दिल को?
2: हाँ, ये सब हमारे दिल को बीमार कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट वे है।
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि ये हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमारे चलने खाने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं
0: जी।
2: तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है।
0: बिल्कुल।
2: और ये इसको समझना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम मेरे जैसे डॉक्टर जो हैं, हम गंभीर समस्या को देखते हैं
0: जी।
2: तो हम ऑपरेशंस करते हैं, चाहे वो एडल्ट्स के हो, बच्चे के हो, तो हम उसमें रहते हैं, उस स्पेशलिटी में रहते हैं।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो उस पेशेंट, जो भी पेशेंट आते हैं, क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उनके शरीर पर।
0: बिल्कुल।
2: और आप जो कह रही हैं मॉनिटर टाइम, स्ट्रेस, ये सब इमोशनल चीज़ें आएंगे, लेकिन देखना चाहिए कि उसका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफस्टाइल में कैसे हो रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं, उनको बहुत लाइफ, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं और ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ये हम जानते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएगा, लेकिन क्यों ज़्यादा खा रहे हैं? क्योंकि उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये उनका असली बीमारी होता है,
0: इसी कारण उनके दिल को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल।
2: तो एक डॉक्टर का काम ये भी होता है
0: कि समझना कि वो क्यों हो रहा है। बिल्कुल।

0: उस प्रॉब्लम का जड़ कहाँ से हो रहा है।
1: तो ये सारी समस्या, मतलब कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, वो डायरेक्टली हिट नहीं करता आपके हृदय को, पर कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड होता है और वो लंबे समय पर कैसे, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्लो पॉइजन की तरह ये काम करता है और बेशक आपके दिल को, आपके हृदय को ये प्रभावित करता है। तो डॉक्टर जी, जैसे हम जानते हैं हार्ट अटैक की समस्या जो है, आए दिन आज देखा गया है कि छोटे जो यंग, जो ग्रोइंग कह सकते हैं कि 30-35 ईयर्स की उम्र वाले जो लोग हैं, उनको भी हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, क्या ये सेम है या फिर इनमें कोई अंतर
0: नहीं,
1: है?
0: नहीं, ये सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट उसका मतलब होता है कि जो हृदय का काम, हृदय में मसल जो होते हैं उसका काम बंद हो जाता है।
1: अच्छा, मतलब ठप पड़ जाता है एकदम से।
0: कार्डियक अरेस्ट तो उसका मतलब ये कि अगर हमने उसको उसको उसका हेल्प नहीं किया, उसको मैसेज नहीं किया, तो वो मर जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम जानते हैं कि उसका मसल जो है, उसका काम करना बंद हो गया है। अगर एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा हो, नहीं कि ये हार्ट अरेस्ट नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, हार्ट अटैक उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का लो ऑफ डिमांड सप्लाई बंद हुआ, और जहाँ भी उस हृदय के कुछ अंग में वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सीने में दर्द होगा या उसको पीठ में दर्द होगा, लेकिन उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, लेकिन उसका हार्ट अरेस्ट नहीं होगा, उसका दिल का काम करना बंद नहीं होगा, स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है, लेकिन बंद काम करना बंद नहीं होगा
1: जी।
0: तो ये अंतर है उस हार्ट अटैक में और हार्ट अरेस्ट में।
1: जी जी, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उनको तुरंत मेडिकेट किया गया या तुरंत उनको जैसे पंप किया गया, तो हो सकता है कि वो बच सके।
0: हाँ हाँ, लेकिन तुरंत पंप करना चाहिए
1: जी।
0: और ये एक पब्लिक हेल्थ इशू है, क्योंकि हमें अपने पॉपुलेशन को इस पंप के टेक्निक से उस पंप की टेक्निक का ट्रेनिंग मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उसकी एक फर्स्ट एड, जैसे हमने थोड़े दिन पहले फर्स्ट एड का भी एक प्रोग्राम किया था जहाँ पर हमें डॉक्टर ने बताया था कि किस तरह से ये होता है और बकायदा इसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि आप यूं ही आप बिना इन्फॉर्मेशन के आप
0: क्योंकि अगर आप विदेश जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्कूलों में या फिर छोटे क्लासों में हम बच्चे को सिखाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो, उसका हार्ट अरेस्ट हुआ हो, तो आप कैसे उसको पंप करें और कैसे उसको बचाया जा सके।
1: बिल्कुल,
0: तो ये हमारे स्कूलों में उसको सिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ यानी शॉपिंग मॉल्स में जब आप जाते हैं विदेशों में, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने डेफिब्रिलेटर्स का काम का इस्तेमाल करने के लिए उनको रखा हुआ है।
1: अच्छा,
0: अगर कोई भी व्यक्ति उसका हार्ट अरेस्ट हुआ हो तो पंप करना चाहिए, तो एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन डेफिब्रिलेटर्स भी उनका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये शॉक देता है।
1: ओके,
0: तो ये लाइफ सेविंग डिवाइस होते हैं और हमें हमें इसका ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझती हूँ ये जो जानकारियाँ हैं ये तुरंत, मैं समझती हूँ ये हर एक को ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और किसी की ऐसी सिचुएशन आ जाती है और अगर आपके पास ये नॉलेज है तो डेफिनेटली एक जान बचाई जा सकती है, और हो सकता है कि मेडिकल के वहाँ तक आने तक आप,
0: हाँ, क्योंकि आप 2020 या 2019 में जब कोविड हुआ था, तो एक टेक्नोलॉजी से एक ऐप हुआ हमारे मोबाइल में, एक ऐप हुआ, उस ऐप में जो भी व्यक्ति पंप जानना चाहते थे या भी जहां भी एक डेफिब्रिलेटर होता है उसका जो भी उसका जो भी इंफॉर्मेशन उस ऐप में होता था, तो लोगों को पता चलता था कि अगर एक प्रॉब्लम हुआ तो मैं कहाँ पर डेफिब्रिलेटर देख सकता हूँ या फिर कहाँ पर वो व्यक्ति मिलेगा जिसको पंप करना उसके नॉलेज हुआ।
1: बिल्कुल,
0: तो इसका असर जो है लाइफ सेविंग हुआ, क्योंकि बहुत सारे
1: लोगों को इसका मतलब एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन में जहाँ पर एक लाइफ

0: एक जिंदगी कोई गंवा रहा है उसमें
1: हाँ
0: आप उसको पूरी तरह से हेल्पिंग हैंड दे सकते हो। डॉक्टर जी, ऑलमोस्ट हम आज के इस प्रोग्राम के समाप्ति तक आ पहुँचे हैं, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे हृदय को कैसे हेल्दी रखना है, इस पर एक समअप करते हुए आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, आपको देखना चाहिए कि पहले आप अपने शरीर में क्या फ्यूल डाल रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जब आप पेट्रोल पंप के स्टेशन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अलग तरह के फ्यूल होते हैं, तो आप अच्छी फ्यूल डालेंगे ताकि आपके मोटर
0: गाड़ी
1: में,
0: लंबे समय तक
1: हाँ,
0: चले। सही
1: तो आपके शरीर ऐसे भी काम करता है। तो आपको देखना चाहिए कि मैं रोज़ उस शरीर में क्या डाल रहा हूँ।
0: बिल्कुल
1: अगर आप ये एनर्जी है, लेकिन अगर आप एनर्जी ज़्यादा डालते हैं लेकिन एक्सरसाइज या फिर आप अच्छी तरह से चल नहीं रहे, उसका इस्तेमाल नहीं करें, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, और आपकी लाइफ स्टाइल जो जो भी हम बदल सकते हैं, जैसे कि
0: जो
1: जो भी
0: हमारे कंट्रोल में
1: जो हमारे
0: है।
1: कंट्रोल में, धूम्रपान,
0: जी
1: हमारा वेट, हमारे खाने के तरीके, तो ये सब कंट्रोल में होता है। तो उस हमें उस पर फोकस करना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम,
0: जी
1: ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो
0: डेफिनेटली
1: हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
0: बिल्कुल
1: लेकिन अगर हम
0: प्रिवेंशन बिल्कुल
1: जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स ला सकते हैं, और जो भी उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स,
0: बिल्कुल
1: जो भी रिस्क फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका कंट्रोल करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ये हमारे हम एक देश में हैं जहाँ पर आसपास समुद्र होता है। हम यूरोप में नहीं हैं जहाँ पर एक बड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे आसपास कुछ भी नहीं है।
0: सही
1: अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: और मेडिकल टर्म्स में, जब भी हमें कोई भी इशू होता है एक पेशेंट में,
0: जी
1: तो हम देखते हैं कि क्या ये मॉरिशस में सॉल्यूशन हो सकता है या फिर विदेश जाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उस सिचुएशन में ना आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: तो ये मेरा मैसेज है।
0: बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर जी ने कहा कम शब्दों में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करें उन सारी चीज़ों को जो आपके हृदय के रोगों को बढ़ा सकती है। डेफिनेटली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में जो भी बदलाव हम ला सकते हैं उसे अप्लाई करें और बिल्कुल समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएं, क्योंकि आपका हृदय जो है वो 24 घंटे काम करता है, और आपके हृदय का ख्याल रखना ये आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो जी हाँ, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये कार्यक्रम आप दोबारा से सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। इसी के साथ हमारे टेक्निकल टीम पर काद्या जी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और रत्नमाला जी हमारे साथ बनी रही। जितने भी श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुना, आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 23 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10 बज रहे हैं।
2: स्टूडियो में आगे पूजा, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
3: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत

0: करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्यूएन की ग्वांगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों के आयात पर बात की गई, जिनमें खाद्य तेल और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शामिल हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फिलहाल प्रस्तावित कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज दिन के करीब 1 बजे पोर्ट लुइस पहुंचेगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान, इसमें स्वास्थ्य को मात्र बीमारी की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शरीर मन और जीवन शैली के संतुलन के रूप में देखा जाता है। विदेश में न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र शुरू हुआ, शागुस द्वीप समूह मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और अजी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसका समर्थन नहीं करता। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। मौसलमा सेंट अंतोन गुडलैंड्स में 73 साल के 73 years old जनाब आज़ाद इमाम जी जिन्हें लोग आज़ाद नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है। वे पहले पुलिस कैपोरल थे। इनका जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके बेटे नाशिरुद्दीन इमाम जी के मकान मौसलमा सेंट अंतोन गुडलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए बैलमोका कब्रिस्तान में जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM एवेन्यू रोज वेडर में 64 साल की 64 years old श्रीमती रंभावती अनमोल, पैदाशी नाम दिगंबा और जिन्हें लोग कविता नाम से ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है आज दिन के 1:30 बजे इनके पति दानिश अनमोल के मकान एवेन्यू रोज वेडर से उठा कर से कॉन्स्टेंस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 1:30 PM और दोयालिन सेंटिलिया में 57 साल के 57 years old श्री भूषण सुकी, जिन्हें लोग इंदिवर नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी रेशमा सुकी के मकान दोयालिन सेंटिलिया से उठाकर सैतिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play and NBC.MU. 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस।

बुधवार 23 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:05 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर भक्ति धारा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत आभार श्रोताओं। आपको बता दें कि भक्ति धारा ये जो कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। श्रोताओं, जीवन की यदि हम बात करें तो जीवन अपने आप में बहुत ही अनमोल है, बहुत ही सुंदर है।

और जीवन को सही तरीके से जीना भी अपने आप में एक कला होती है। कहीं ना कहीं ये जीवन हमें मिला है तो अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, बड़ों के प्रति हमारे मन में सम्मान स्नेह होना चाहिए, छोटों के प्रति आदर होना

जीवन जो है कहते हैं अच्छे रूप से चलता है और जीवन में कभी कभार रुकावटें बाधाएं भी आती हैं, लेकिन इसके चलते हमारा जीवन रुकता नहीं है, जीवन जो है आगे बढ़ता रहता है। तो समय के अनुसार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में ऐसे कार्यों को करना चाहिए जहाँ पर लगे कि हमने हमारे इस जीवन का जो है सही लाभ हम उठा पाए हैं या जीवन में जो भी क्षण हमें मिले हैं उसके चलते हम किसी के काम आए हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के भक्ति धारा कार्यक्रम का हम आरंभ करते हैं भगवान गणेश के नाम से।

श्रोताओं, कर्मों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कर्म भाव से हम बंधे होते हैं और जैसा कर्म करते हैं, कहते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। और कर्म भाव से बंधे हुए हैं इसलिए तो हमारे हर एक कर्मों का फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्मों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है हमारे जीवन में। और कर्म अच्छा हो तो फल भी अच्छा मिलता है और इसके चलते हमारा भाग्य भी सच में चमकता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और श्रोताओं, अभी के लिए भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय हुआ है हम सुने कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में।
2: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
3: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। विनयांजलि में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे प्रदीप के गाए हुए एक मधुर गान से। आप रसास्वादन करें।

श्रोताओं, हमने अपने पिछले कार्यक्रम के संदेश में बताया था कि हमारे ऋषि महर्षियों ने सभी मनुष्यों को उपदेश दिया है कि प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही हम ऋग्वेद अथवा यजुर्वेद के 5 मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करें। इन 5 मंत्रों को स्तुति प्रार्थना के प्रातःकालीन मंत्र कहा जाता है। हमने अपने पिछले संदेश में प्रातःकाल में उच्चारण किए जाने वाले पहले मंत्र पर अपना वक्तव्य आधारित किया था, वह मंत्र एक बार और प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर रश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मनस्पतिम प्रातः सोम मुत रुद्रम भुवेम। श्रोताओ, आज आप इस कड़ी का 5वां मंत्र सुनेंगे। 5वां मंत्र इस प्रकार है। ओम भगैव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवंत श्याम तन्त्वा भग सर्व इजो हवीति सनु भग पुर एता भवेह। महर्षि दयानंद ने अपनी पुस्तक आर्याभिविनय में इस मंत्र की व्याख्या में लिखा है, हे सर्वाधिपते महाराजेश्वर, आप भग परमेश्वरीय स्वरूप होने से भगवान हो। हे विद्वान हो, उस भगवान के सहाय से हम लोग परमेश्वरीय युक्त हों। हे भग परमेश्वर, सर्व संसार आपको ही ग्रहण करने का की अत्यंत इच्छा करता है, क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्राप्त होने की इच्छा न करे। सो आप हमको प्रथम से प्राप्त हो, फिर कभी हमसे आप और ऐश्वर्य अलग न हो। आप अपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्वर्य का यथावत भोग हम लोगों को करावें। पर जन्म में तो कर्मानुसार फल होता भी है, तथा आपकी सेवा में हम नित्य तत्पर रहें। श्रुतागण, महर्षि दयानंद की लिखी पुस्तक आर्याभिविनय ईश्वर भक्ति का अपूर्व ग्रंथ है। यह अपूर्व ग्रंथ 1875 में ईश्वर भक्तों की प्रार्थना पर लिखी गई थी। इसकी भाषा 150 वर्ष पहले की है। चूंकि महर्षि दयानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उनके हिंदी में संस्कृत भाषा के बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे सर्वाधिपते महाराजेश्वर, परमेश्वरीय स्वरूप, सहाय, सर्व संसार, यथावत आदि। हम चलें इस मंत्र में आए हुए शब्दों के अर्थों को सरल हिंदी में समझें और इस पर अपने विचार आप तक हम पहुँचाएं। श्रोताओं, मंत्र में कहा गया

कि हम ईश्वर से ऐश्वर्य की कामना करते हैं, ईश्वर से हम चाहते हैं कि हमारा ऐश्वर्य बढ़े। ऐश्वर्य का सरल अर्थ है धन संपत्ति। तो धन संपत्ति की प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। हम ऐश्वर्यशाली यानी धनी बने। प्रातःकाल अपनी झोली में अनेक प्रकार के ऐश्वर्य भरकर सूर्य लाता है। सूर्य की ज्योति चित्त में चेतनता लाती है, बुद्धि में शुद्धता, मन में प्रकाश और आनंद लाती है। ऐसा बहुत सारा वरदान लाती है जिसे सौभाग्य कहते हैं। मानव अपनी योग्यता से एक भग को असंख्य बनाकर सौभाग्य बना लेता है। अच्छा धन पोषण करने वाला होता है। मानव ऐसा ही धन चाहता है जो शरीर को दुख आदि से दूर रखे, वाणी में मधुरता भरकर, मिठास भरकर सबको सुखी करे, दिन को सुदीन यानि अच्छा दिन बनाकर रात में आराम एवं शांति प्रदान कर सके। ऋग्वेद के इस मंत्र में इसी को भग यानि ऐश्वर्य कहा गया है। ऐश्वर्य धन है, इसी को मानव चाहता है और जिसके पास ऐश्वर्य आ जाता है वह भगवान बन जाता है। हम सब परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमें वही ऐश्वर्य प्रदान करें जिसे पाकर हम भगवान बन सकें। भगवान का मतलब ये नहीं कि जिसने संसार की रचना की है। यहाँ भगवान का मतलब है जिसके पास भग हो। जिस तरह विद्या जिसके पास होती है तो वह विद्वान कहलाता है, जिसके पास धन है धनवान कहलाता है, और जिसके पास ऐश्वर्य हो वह ईश्वर कहलाता है। इस तरह भग वाला आदमी भगवान बनता है। भग का अर्थ हमने धन संपत्ति का अर्थ दिया है आपको। परमात्मा सकल ऐश्वर्यों के स्वामी है, सभी धन संपत्ति। यह सूर्य जो चमक रहा है यह उसका धन है, यह पृथ्वी परमात्मा का धन है, यह वायु जो बह रही है, हवा में जो सांसें हम ले रहे हैं, ये सब परमात्मा का धन है। हम इन धनों से अपने आप को धनी बनाते हैं। हवा में सांस लेते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं, और इस जीवन से हम परिश्रम करके धरती से सब कुछ पा लेते हैं, धन संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। परमात्मा अग्नि के द्वारा हमें ज्योति देते हैं, प्रकाश देते हैं। हम ज्योति पाकर यज्ञ में श्रद्धा की आहुति देते हैं ताकि उस आहुति से हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो सके, हमारा जीवन आनंद का स्रोत बनकर सबके लिए आनंद बरसाने वाला बने। श्रोताओं, अंधकार समेटने के लिए प्रकाश फैलाने की जरूरत होती है, दुख समेटने के लिए सुख फैलाने की आवश्यकता है, निराशा समेटने के लिए आशाएं फैलाने की आवश्यकता होती है, रोग समेटने के लिए निरोगता आरोग्यता फैलाना आवश्यक होता है। जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जीवन को सुखी बनाने के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं को ऐश्वर्य कहा जाता है। पशु पक्षी औषधि वनस्पति फूल फल आदि सबको सुख बांटने का काम करना पड़ता है। जो पृथ्वी की झोली में कमी रह जाती है उसको सूर्य देव पूरा करता है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि सभी ऐश्वर्यों के स्वामी जगदीश्वर का हम प्रातःकाल ध्यान करें। प्रातः शब्द का अर्थ है जो हमें प्रकृष्ट उत्तम बनाकर आगे ले जाए। सवेरे जब हम उठकर चलते हैं तब हमारे साथ सूर्य पृथ्वी टिमटिमाते तारे शरीर को मानो सहलाते हैं, मीठी हवा धरती पर

ढकने वाले सभी पक्षी मानो हमारा स्वागत करते हैं। परमात्मा की ये दैवी शक्तियाँ हैं, इसी दैवी शक्ति को ऐश्वर्य कहते हैं। ईश से ऐश्वर्य बनता है। ईश यानि ईश्वर स्वामी है, उसकी सारी संपत्ति ऐश्वर्य है। इस प्रकार पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितने उत्तम उत्तम पदार्थ हैं सभी ऐश्वर्य है। इस मंत्र में यही ऐश्वर्य मांगा जा रहा है। मंत्र में कहा गया भगैव भगवान अस्तु। वास्तव में हर प्रकार की संपत्ति हमको अपने बड़ों से प्राप्त होती है। जमीन जायदाद मकान संस्कार विद्या ध्यान आदि संपत्ति हमें पूर्वजों से ही मिली है। वेद ज्ञान ऋषि मुनि आदि से मिला है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जब हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते हैं तब आशीर्वाद में कहते हैं आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान भूया, यानी हे पुत्र तुम सबसे पहले आयु वाले बनो। आयु का अर्थ केवल दिन मास वर्ष आदि का गुजरना नहीं बल्कि उत्तम स्वास्थ्य वाली आयु है। यदि हम उत्तम स्वास्थ्य को पाना चाहें तो सुबह उठकर उस प्रभु का ध्यान करें, तभी वह परमात्मा अपना ऐश्वर्य सूर्य अथवा प्रकृति के द्वारा हमें देता है। प्रातःकाल किए गए यज्ञ के द्वारा देव पूजा संगतिकरण दान स्वाहा और दन्नममा का फल मिलता है। यही फल हमारे लिए खरबूजे की तरह मधुर मीठा सुंदर सुगंध से भरा हो जाता है, जो दूर दूर तक फैलकर सबके मन को आकृष्ट करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी को वेद ने ऐश्वर्य कहा है। आज का समाज इस ऐश्वर्य को पाने के लिए प्रयत्नशील तो है परंतु केवल भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। एक ऐश्वर्य आध्यात्मिक है, आत्मा का धन है। परमात्मा का संग करने से ही वह आत्मा का धन आत्मा का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और इस प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त होने से आदमी वर्चस्वी बन जाता है, शक्ति से भरपूर हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। और वर्चस्विता भी हमारा ऐश्वर्य है, शक्ति भी हमारा ऐश्वर्य है। यह सुंदर शक्ति जिसके शरीर मन बुद्धि और आत्मा में है वह महान बनता है। मानव को आत्मिक बल मानसिक बल बौद्धिक बल आदि वर्चस्विता से ही मिलता है। श्रोताओं, हम जब किसी को पुकारते हैं तो कहते हैं श्रीमान जी। श्रीमान श्री का मतलब क्या है? यही जिसके पास ऐश्वर्य है उसी को हम श्रीमान कहते हैं। परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि हम भी श्रीमान बने, हम भी ऐश्वर्यशाली बने। और इसके लिए शर्त है कि हम प्रातःकाल उठें और प्रातःकाल उठते ही उस परमात्मा का गुणगान करें और कहें भगैव भगवान अस्तु। इस तरह से प्रार्थना करके हम आगे बढ़ें। श्रोताओं, अंत में आप आदरणीय पंडित वाल्मीकि महर्षि जी का एक भजन सुनेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं इस भजन के लिए। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में सहयोग दिया है श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी, उनके प्रति हम आभार प्रकट कर दें। आपने सुना, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।

श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, हर कोई चाहता है कि वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले, वे भक्ति के मार्ग को अपनाए, वे अपने जीवन में सुख एवं शांति को अपनाए। लेकिन कभी कभार जीवन में हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहकर भी इन रास्तों को पकड़ नहीं पाते हैं, इन पर चल नहीं पाते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन कभी कभार जीवन में सब कुछ सरलता से नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। जिस भी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए परिश्रम करना बहुत आवश्यक होता है। यदि परिश्रम करेंगे, दृढ़ निष्ठा होगी, विश्वास होगा, तो वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कितना ही कठिन क्यों ना हो।

जी हाँ, जिसके सर पर उस परमपिता परमेश्वर का हाथ होता है, उसे दुख कैसा, उसे चिंता कैसी, उसे परेशानी कैसी। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सारी परेशानियाँ मिट जाती हैं, उसकी सारी चिंताएँ अपने आप दूर हो जाती हैं। यही है ईश्वर की लीला, और इस ईश्वर की लीला पर हमें सदैव भरोसा रखना चाहिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 23 सितंबर आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक ज़रूरी विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबीसीबी यूनियन पार्क मौसलमा एसआईटी यहां पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है कि यूनियन पार्क मौसलमा एसआईटी यहां पर और आसपास के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहां पर कल गुरुवार 24 सितंबर को सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच यहां पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बढ़ते हैं आज की इस अंतिम भेंट की ओर, और इस अंतिम भेंट के साथ आज का हमारा भक्ति गीतों का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हमेशा की तरह आज भी आपने हमारा सहयोग किया इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इसके लिए आभार। और आपको बता दें कि 11 बजे जो है आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू भाषा में प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। हमारी आपकी भेंट होगी कल आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही, आपके साथ के लिए धन्यवाद। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। रेडियो मॉरिशस पर ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही साथ देते रहिएगा। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: स्टूडियो में आगे पूजा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज पोर्टिस बंदरगाह पहुंच रहा है। ये खेप STC तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालीन समझौते की शुरुआत का

0: प्रतीक है। भारत की सरकार कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है और इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। आज मनाया जा रहा है आयुर्वेद दिवस, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। विदेश में श्रीलंका की हाईकोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन। News on NBC Play and NBC.mu.
1: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: Shamme Farooza.

आऊज़ु बिल्लाही मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके अंदर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। मौज़ समीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान, नातो सलाम और आपके पैगामात। ताखिर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल फत्ह की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: तेरा करम है मौला, तेरी अता है सब कुछ। मेरी हयात क्या है, तेरी रज़ा है सब कुछ। हर सांस तेरी नेमत, हर पल तेरा करम है। लब पर रहे हमेशा या रब तेरा ही शुक्र है। अल्लाह जो नेमतें तूने हमें अता फरमाई हैं, हमें उन पर हमेशा शुक्र गुज़ार बना और हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से आबाद रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। मौज़ सामीन, अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मासपावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लाक़िबतु लिल मुत्तकीन व सलातु व सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अशहाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम वल फुरक़ानिल हमीद, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इब्ने जहरा को मुबारक उरूसे कुदरत, कादरी खाएं तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। हुजूर गौसुल आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की वो अजीम

और तबलीग दीन फरमाते रहे और शरा शरीफ के मसाइल को लोगों के सामने पेश करते रहे। قال الله وقال الرسول से उनकी मजलिस मुबारक, उनकी दरसगाह मुबारक, उनकी खानका शरीफ हर लम्हा इस जिक्र से गूंजती रही। और उन्होंने जब इस मैदान में कदम रखा तो 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ में पहली मर्तबा उनके वालिद और वालदा ने जब एक उस्ताद मोहतरम की माइयत में उसकी बारगाह में पेश किया बतौरे बिस्मिल्ला खानी फर्स्ट डे और फर्स्ट टाइम पहले दिन, तो उस्ताद मोहतरम ने बड़ी खुशी और मसर्रत के साथ और मोहब्बत और वालिहाना अंदाज में बिस्मिल्ला खानी शरीफ की तकरीब को कराया। लेकिन गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की करामत और गौसुल आदम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह तबारक व तआला उन औलिया किबार में से हैं कि जो मादर ज़ात वली हैं, पैदाइशी वली हैं, अल्लाह ने उन्हें माँ के पेट से विलायत अता फरमाई है। और न सिर्फ विलायत अता फरमाई बल्कि वो ऐसे वली हैं कि जिसके लिए दुआ फरमा दें, तवज्जो फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला उसे वली बना देता है। हुज़ूर गौसुल आदम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब पहली मरतबा दरसगाह में गए, उस्ताद मोहतरम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया और उसके बाद आदत के मुताबिक उन्होंने अरबी के अल्फ़ाबेट्स अलिफ बा ता सा की तख्ती पढ़ाई। गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला ने नहीं पढ़ा बल्कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा से शुरू किया और उसको मुकम्मल किया और सूरह बकरा शरीफ को पढ़ा। उन्होंने फिर पहला पारा, दूसरा पारा और तीसरा और चौथा, हत्ता के पढ़ते गए और 18 पारों के अख्तिताम पर उन्होंने सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहा। उस्ताद मैं वे हैरत में हैं, सारे लोग देख कर के अश अश कर रहे हैं और अपने दांतों के मुंह अंदर ज़बान के दांतों में उंगली को दबा कर ये सोच रहे हैं, हैरत में हैं कि 4 साल 4 दिन 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ और फर्स्ट डे में ये कमाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटे तुमने ये कहाँ हासिल किया है? तो हुज़ूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम मैंने ये किसी मदरसे या मकतब या उस्ताद से नहीं सीखा है, मैंने सबसे बड़े मदरसे अपनी माँ की गोद में ये पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। मेरी वालदा माजिदा की आदत मुबारक है, जब वो मुझे दूध पिलाती तो तिलावत करती, मैं सुन सुन करके उसको याद कर लिया। ये कितना बड़ा पैगाम है आज के इस मुआशरे के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए। आज जिस हालात में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, मोबाइल और टेक्नोलॉजी का दौर, इंटरनेट का दौर, 5G के दौर में, और ज़िंदगी इतनी फास्ट जा रही है कि हमें ये शऊर और सलीका ही नहीं रहता कि हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी है और उनकी तरबियत कैसे करनी है। हम उनको पैदा करने के बाद दूसरों के हाथ में, पीले स्कूलों में बच्चों की तरबियत में दूसरी दाइयाओं को लगा करके छोड़ देते हैं और फिर ये हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़े होने के बाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। मियाँ, जब आज उन बच्चों को सबसे ज़्यादा माँ बाप की ज़रूरत थी तो आप उन्हें अपना टाइम, अपनी तालीम, अपनी आदत व अतवार नहीं दे पाए, तो उसने गैरों से अडोप्ट किया है, तो फिर आप उससे ये तवक्को क्यों करते हैं? आज जो मुआशरे में वालिदैन की नाफरमानी की तबाही है, जो माँ की इज्जत को तार तार किया जाता है, उसकी वजह यह है कि हमने मुआशरे के हालात को अपने हाथों से खुद बिगाड़ा है। और ये मुसीबतें कहीं और से नहीं आती हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह पाक फरमाता है, ये तुम्हारे ही हाथों का किया धरा है, जो ये तुमने बोया है वही तुम आज काट रहे हो। और अगर किस्मत से कोई खातून अपने बच्चों को टाइम देने भी लगे तो फिर उसकी तरबियत ऐसी होती है कि ना उसके पास इस्लामी तालीम है, ना उसवे नबवी है, ना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का इल्म है, ना सहाबा और सहाबियात की तालीमात, बल्कि वो बिल्कुल कोसों दूर है। और जब वो

0: दूध पिलाती भी है, फीड कराती भी है, और ऐसे वक्त में भी वो या तो टीवी वॉच करती है या मोबाइल, और ऐसी ऐसी फहश और गंदगियाँ उस पर होती हैं, और ऐसे ऐसे फहश गाने उसके कानों में होते हैं, ना उसे तहारत का पता, ना पाकिजगी का पता, ना हालात का पता। वो बच्चा उसकी गोद में, उसकी दरसगाह में सीखता रहता है। माँ की गोद दीन इस्लाम सबसे पहला बच्चे की तरबियतगाह और उसका मदरसा होता है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उसकी माँ की आगोश होती है दुनिया में आने के बाद। अगर उसकी परवरिश, उसका फाउंडेशन वहाँ मजबूत हो गया, तो कब्र तक जाने तक वो आदमी, वो बंदा, वो बेटी, वो बेटा मजबूत रहता है। और जिसका फाउंडेशन माँ की गोद और बाप की तरबियत में बचपन ही से कमज़ोर हो जाए, तो फिर वो जवान होने के बाद माँ बाप के सामने खड़े होते हैं। खुदारा अपने हालात पर रहम करें और अपने हालात का जायज़ा लें। और सैयदना हुजूर गौसुल आदम महबूब सुबहानी की वालदा से तरबियत हासिल करें और ये सबक याद करें कि 18 पारे पहले दिन पढ़ना कोई मजाक बात नहीं है, और उस पर ये जवाब देना कि मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, अपनी माँ की गोद में पढ़ा है। सुबहान अल्लाह, माँ हो तो गौसे पाक जैसी, बाप हो तो गौसे पाक जैसा। मैं मानता हूँ कि आज हालात बहुत तेज़ी से, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी पाकीज़ा नहीं हैं, हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, हमारे पास अब्दुल कादिर जिलानी जैसा पाकीज़ा और तक्वे और तहारत वाला बाप नहीं है, ऐसे मुआशरे में हालात नहीं हैं। तो हमारी माओं की गोदों में आज अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली कैसे पैदा हो, मानता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल अटल है। और ये बात कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि अगर हमारी माओं की और बहनों की गोदों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली नहीं पैदा हो सकता, तो कम से कम ग़ुलाम गौसे आज़म ज़रूर पैदा हो जाएगा, ग़ुलाम साबिर पाक ज़रूर पैदा हो जाएगा, ग़ुलाम हज़रत ख्वाजा मोइन ज़रूर पैदा हो जाएगा। हमारी तरबियत ऐसी हो। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने 18 साल तक जीलान में इल्म हासिल किया, और 18 साल की उम्र में अपनी वालदा से इजाज़त लेकर के तशरीफ़ लाए बगदाद में, और वहाँ आपने तकरीबन 30 साल तक इल्म हासिल किया, और फिर वहीं पर मुकीम होकर के बगदाद मुअल्ला में उन्होंने इल्म की रोशनी को बाँटा। आखिरी जुमला कहकर बात को ख़त्म करता हूँ। गौसुल आज़म की ज़िंदगी बता रही है कि बग़ैर इल्म के अल्लाह किसी को विलायत अता नहीं करता, और जो वली होगा वो यकीनन आलिम रब्बानी होगा, किसी जाहिल को अल्लाह विलायत अता नहीं करता। जो शरीयत के राज नहीं जानता वो तरीक़त के रुमूस कहाँ से हासिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म और अमल की ज़िंदगी अता फ़रमाए, और गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला की सीरत मुबारक पर और उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। सनीचर 26 सितंबर, सनीचर 26 सितंबर सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज में पोर्टलिस में आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में उर्स गौसे पाक का ख़ास इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इतवार 27 सितंबर, जी हां इतवार 27 सितंबर सुन्नी रज़वी सोसाइटी की जानिब से सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद और सुन्नी रज़वी एकेडमी सर 8 को लोगों स्ट्रीट पोर्ट लुइस में उर्स गौसे आज़म का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीनों हज़रात को शिरकत की दावत है। जी हां सुबह 10 बजे सर 8 को लोगों स्ट्रीट पोर्ट लुइस में। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:41 हो चुके हैं। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251700।

सरकार गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे ज़मीन पर आसमान है। और फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। तेरे नाम से मुर्शिद मुझे जानती है दुनिया, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चमक रहा है। मौज़े सामीन, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। पेची पाके से शीरीन दस मोहम्मद अपनी सास के लिए इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। और फिनिक्स से नाज, जी हाँ, फिनिक्स से नाज इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। मरहूमा अम्मी ताहिरून अमीर, जिनके इंतकाल को सिर्फ़ और सिर्फ 18 दिन हुए हैं, उनकी बेटी दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा ईसाले सवाब की गुजारिश की गई है मरहूम अब्दुल शकूर और मरहूमा हाफिज़ा सुमताली के लिए। और ये ईसाले सवाब की गुजारिश की है शाहिदा समताली और उनकी पूरी फैमिली ने, जो कि फोर्ट साइड के रहने वाले हैं। इसके अलावा मुस्लिम चिबाई वाकवा से हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। लावेनिया से हाफिज़ बाबा साहेब ने अपने मरहूम शोहर के लिए एक कलाम की फरमाइश की थी, अभी जिसे आप थोड़ी देर पहले समाअत फरमा रहे थे। मरहूमा हाफिज़ा आजिम रुखसाना ओआमद, जी हाँ, मरहूमा रुखसाना ओआमद और मरहूमा फ़ज़ीला के लिए उनकी बहन रशीदा आजम ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। और अपनी बड़ी बहन रुकियों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी बहन को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन।

मोहतरम सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ही मजलिस अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा ले जिन्हें तू हिदायत फरमाता है, और वो जो सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं, जो तौबा करते हैं और जिनकी तौबा को तू कबूल करता है, जो तेरा खूब शुक्र अदा करते हैं और जिन पर तू अपना ख़ास करम फरमाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में इस सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: ढाई बज चुके हैं, श्रोताओं एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार, आदाब आप सबको। और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम, आपकी पसंद प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर, जी हाँ, और रोज़ की तरह आप इस कार्यक्रम को बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए नंबर याद रखिए, 402-80-5-0-5-0। और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5251-7005। हमें आपका इंतज़ार है और आज का पहला गाना सुनते हैं महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में।
1: अभी अलविदा मत कहो।

चलिए आज का पहला गाना फिल्म तुम हंसी मैं जवां। जी हाँ, फिल्म ये फिल्म रिलीज़ हुई 1970 में और ये गाना खासकर हम चला रहे हैं रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबा से साथ देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे ही साथ दीजिए और हमेशा ये कार्यक्रम आप लोगों के नाम हम करते हैं, बस आप खूब एंजॉय कीजिए।

सुनो ना, कहे क्या सुनो ना। चलिए बे इंतहा, और गाना हम सुन रहे हैं आतिफ असलम और साथ में सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। ये गाना खासकर विक्षय और राहुल के लिए जो इस समय काम कर रही है और साथ ही साथ में रेडियो सुन रहे हैं, क्या बात है। और ये जो नया गाना है

की पसंद। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। बढ़ते हैं आगे और अगला गाना जो है खासकर हम चलाएंगे ज्योति के लिए और वो रहती है यूनियन पार्क। गाना खासकर प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और केनिता के लिए।

जहाँ बहुत प्यारा गाना फिल्म सनम तेरी कसम से लिया गया किशोर दा की आवाज़ में। जी हाँ, और यहाँ पर हम अगला गाना चलाएंगे खासकर लीला जी के लिए, और वो रहती हैं बुआशेरी। गाना वो मांग रही हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और फिल्म का नाम है आपकी कसम। सनम तेरी कसम के बाद फिल्म आपकी कसम, एक बार फिर से किशोर दा की आवाज़ हम सुनेंगे। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना ज़िंदगी के सफ़र में, और ये गाना जाता है उन तमाम सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लोग घर पर हैं, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग काम भी कर रहे हैं ना, तो बस हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आपके नाम जाता है अगला गाना, और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर, और हमारी मुलाकात

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। संघर्षों का समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में भाषणों के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। ये एक ऐसी महासभा है जहां अमरीकी राष्ट्रपति ने AI का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व की वकालत की है। ब्रिटेन ने अमरीका के साथ AI के क्षेत्र में रक्षा साझेदारी करने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जबकि फ्रांस ने इस संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा करने की मांग की है। ये महासभा मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के लिए भी चर्चा में रही। बुधवार को पोर्टलुई में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने मारी जेड कैथरीन से मुलाकात की, जो पुलिस बल की एक नई भर्ती है, जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। सरकारी नेता ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया। सरकार ऑनलाइन हमलों को रोकने और दोषियों को दंडित करने के उपायों पर पहले से ही विचार कर रही है। आज सुबह इबेन में MMM ने अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। दल के सदस्य MMM की 57वीं वर्षगांठ की घोषणा करने के लिए एकत्र हुए, जिसे इस रविवार 27 सितंबर को रेजवी के ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने अपनी स्थापना के बाद से MMM को लगातार समर्थन देने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। MSM का कहना है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन साथ ही दल नेशनल क्राइम एजेंसी की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर सवाल उठाता है। ये एजेंसी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जगह लेने के लिए बनाई गई है, जिसने खुद 2024 में इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन की जगह ली थी। MSM के सांसद जूली रोंगो ने नेशनल क्राइम एजेंसी को स्थापित करने वाले विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने विशेष से इस भावी एजेंसी के महानिदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। विदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के जाने से ठीक पहले भारत के कई स्थानों पर मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 24 राज्यों में बारिश की

संभावना जताई है। और मेक्सिको के तट पर पुलु तूफान तेजी से विकराल रूप लेते हुए प्रशांत महासागर में इस मौसम के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: Yes, CBC की ओर से एक विज्ञप्ति यूनियन पार्क मौसम CIT के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 24 सितंबर 2026 सुबह के 8 बजे से दिन के 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। CB अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
0: 3:04 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे। आपकी पसंद प्रोग्राम आपके नाम और मैं उषा कौर साथ निभाऊंगी 4 बजे तक, और आप भी साथ निभाइएगा। जी हाँ, और नंबर है 4028085402808। मैसेजेस आप भेज रहे हैं 15251700। चलिए, यहाँ पर कौन सा गाना हम चलाने जा रहे हैं? जी हाँ, और खास गाना हम चलाएंगे अमृता जी के लिए। जी हाँ, आप अनीता जी, आप रहती हैं मौदालबेया, और गाना आप मांग रही हैं करुणा अमृता कविता। और हमारे सभी सुनने वालों के लिए, 90s के सभी चाहने वालों के लिए भी ये गाना जाएगा कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम हैं बेमिसाल।

आपकी पसंद। तीन बजकर 12 मिनट हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम और आप हैं सुदेवी फ्रॉम वाक्वा। चलिए गुड आफ्टरनून टू यू और गाना आप मांग रही हैं दीदी ललिता कुशल फैमिली जो रहते हैं त्रियोले और खासकर दीदी ललिता जी हाँ दीदी सुनीता देवीना बिंदु माला मालेंगा के आहाना नंदिता और रामरतन परिवार कुआहू परिवार रघुवर परिवार गुरुदयल परिवार और गाना मांग रही है फिल्म नाइट इन लंदन। चलिए नज़र न लग जाए जाए जी हाँ हम बस यही उम्मीद करते हैं कि किसी की नज़र ना लगे आपको और आपके परिवार को रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: keep us in.
1: Oh my love, चलिए यहाँ पर अगला गाना एक बार फिर से रफ़ी साहब और साथ में आशा जी की आवाज़ों में हम सुनने जा रहे हैं तुम हंसी मैं जवां, एक बार फिर से इसी फिल्म से लिया गया एक और प्यारा सा तराना। आपको पहले भी कहीं देखा है, जी हाँ कहाँ देखा है पता नहीं, और आप है दिलीप जी जो रहते हैं कुंगुमा। गाना खासकर आप मांग रहे हैं संगीता, योगिता, योगेश, कविता, किश्नवी, आरव, निशान और दानन के लिए।

3:24 हुए हैं और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं सरिता जी के लिए, वो हमें सुन रही हैं फ्रॉम कैटरबोन। चलिए, साथ देने के लिए धन्यवाद आपको। फरमाइश आप कर रही है अपने लिए और साथ में हमारे सभी सुनने वालों के लिए, एक मंजिल राही दो। चलिए, संजोग फिल्म का ये खूबसूरत गाना लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए प्यारे दोस्तों, आज 23 सितंबर 2026 और कई लोग अपना जन्म

जन्मदिन मना रहे हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चलाएंगे अगला गाना विद्या के लिए, आज उनके भाभी बबीता का जन्मदिन है। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और साथ में हमारा प्यारा सा बेटा अंशु का जन्मदिन है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। चलिए, उनके भी बहुत से चाहने वाले हैं और उनको विश कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं नानी सरिता, नानी शांति, मामा उषा और पूरे सितौल परिवार की ओर से, और दादी, चाचू है प्रीतम, चाची है भारती और कज़न है उर्वशी। तो चलिए अंशु के लिए अगला गाना।

3:33 हुए हैं और थयोले के रहने वाले अनीता जी गाना खास मांग रही है अपनी बेटी अंजू, दामाद वेद, बेटा सचिन, बहू पूजा और साथ में दो नाती हैं, नातिन हैं सिया और

की पसंद। तीन बजकर 37 मिनट हुए हैं। चलिए असली नकली फिल्म से लिया गया अगला गाना, खासकर ज्योति जी के लिए, वो रहती हैं बनाकर और इस समय हमें सुन रही हैं और गाना वो डेडिकेट कर रही हैं अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए नंदीश और दामिनी। चलिए गाना हम सुनेंगे लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

चलिए, बहुत ही प्यारा गाना है ये, फिल्म सौतन से लिया गया और ये गाना जाएगा बसंती के लिए जो इस समय हमें सुन रही है। बसंती जी, चलिए ये गाना आपके नाम।

3:47 हुए हैं और चलिए अरब का सोना फिल्म से लिया गया और नितिन मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना हम सुनेंगे और गाना खासकर बंडू परिवार के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम थयोली।

Yesunye sibik yor se ek vegyapti, jiha. Rivye noir ke aspas ke ilake, jiha. Moselmo ramdani ke kuch ilake, jiha. Moselmo ramdani ke rane walo ko ye suchit kiya jata hai ke shukravar 25 September 2026, jiha. सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। इसे भी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

चलिए, दुश्मन का ये खूबसूरत गीत हम चलाएंगे बेजितोंबो के रहने वाली ललिता जी के लिए, और गाना वो मांग रही हैं अपने पति की याद में, गुजरे हुए उनको 4 साल हुआ है और उनको याद कर रहे हैं उनके बच्चे विशाल, क्रिस्टल, नातिन सोनिया, नीवी, बेटियां हैं बिंदिया और टीना, और बेटा विमल, और खासकर बहू निष्ठा। और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला दोस्तों, आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। 3:55 और 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम शेरिश रामा की प्रस्तुति में। हमारी मुलाकात होगी आज शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लता जी की आवाज़ में ये गाना सुनते हैं।

किसान भाई बहन के नमस्ते। आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आप लोग के स्वागत है। आज के कार्यक्रम MCIA के एक्सटेंशन और ट्रेनिंग विभाग के द्वारा प्रस्तुत करल जाता। प्रस्तुतकर्ता मिस्त्री भोलानाथ है। हमनी के आज के विषय मिट्टी की अच्छी सेहत के महत्व पर बा। आज गन्ना पैदावार के क्षेत्र में मॉरिशस के किसान लोग के अनेक प्रकार के समस्या के सामना करे के पड़ता, जोन में जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी के सेहत पर बुरा प्रभाव होता। इससे पैदावार के गिरावट के एक कारण मिट्टी के सेहत से जुड़ल सकेला। आजकल एगो आधुनिक कृषि के जरूरत है बढ़ती जनसंख्या के खाद्य पदार्थ के आपूर्ति के लिए। ई आधुनिक कृषि के आधार उपजाऊ और उत्पादक खेती से प्राप्त हो सकी। पिछले कुछ बरस में कृषि क्षेत्र में एगो बुरा प्रभाव पड़ल बा। ई बुरा प्रभाव अनेक कारण है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। लेकिन आज चर्चा करब जा मिट्टी के स्तर पर जोन गिरावट होता। मिट्टी के पतन प्राकृतिक रूप से या कि अनुचित भूमि संचालन द्वारा होल बा। ई गिरावट से हमनी देखिला जा फसल के पैदावार और स्तर पर भी असर होल बा। मिट्टी के उत्पादन समान बनाए रखे खातिर एगो सामगित अभियान परिक करे के ई जरूरी है, ताकि हमनी सकब जा खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी प्राप्त करी। एगो उपजाऊ भूमि पौधा के आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करेला, और एकर अतिरिक्त जोन लाभदायक छोटा जीव जंतु है ओकर में वृद्धि करेला। एकर अलावा एगो उपजाऊ भूमि के ई सब विशेषता है, जैसे कि ऊंच मात्रा में खाद रहेला यानी कि ऑर्गेनिक मात्र, अच्छा जड़ जमाने के स्थिति देवेला यानी कि गासिन, अच्छा जल निकासी के अवस्था देवेला यानी कि ड्रेनेज, अच्छा हवा के संचारण करेला आयराशों, अच्छा नमी बनाए रखना यानी कि मॉइस्चर रिटेंशन, अच्छा मात्रा में जीव जंतु के गतिविधि होला, सोइल डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी के पतन। अब चला देखी जा कौन कौन कारण है मिट्टी के पतन के। मुख्य रूप से मिट्टी के पतन तीन वर्ग में विभाजित करे सकीला जा, जैसे कि फिजिकल वर्ग, केमिकल वर्ग, बायोलॉजिकल वर्ग। फिजिकल वर्ग दो प्रकार के है, यानी कि मिट्टी के बहाव यानी कि सॉइल इरोजन। इसमें खेत के उपजाऊ मिट्टी पानी के बहाव से प्रभावित होवेला। आकर परिणाम खेत में उपजाऊ मिट्टी रह जाला, जिससे पैदावार कम होवेला। डबल मिट्टी

यानी कि कॉम्पैक्शन। अधिक मशीन जैसे ट्रैक्टर के आवाजाही से मिट्टी दब जाला और एकर असर से पौधा के जड़ अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए सकेला, परिणाम कम फसल। केमिकल वर्क, चार प्रकार के समस्या केमिकल वर्क से दिखल जाला। खारापन यानी कि सालिनाइजेशन, सूखा खेत में ज़्यादा सिंचाई होला, सिंचाई के द्वारा जोन खेत में खाद डालल जाला तो उ मिट्टी के निचले भाग में ढेर हो जाला, परिणाम फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेला। एसिडिफिकेशन, अधिक मात्रा में खाद जैसे कि अमोनियम सल्फेट डाले के कारण भूमि एसिडिक हो जाला, एसिडिक भूमि में गन्ना के पौधा के कम मात्रा में खाद मिलेला जौन से अच्छा विकास नहीं हो सकेला और पैदावार कम होला। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिमा में गिरावट, ई देखिला जा जब कम मात्रा में खेत में खाद डालीला जा या कि नहीं डालीला जा, मिट्टी में जौन पोषक तत्व के भंडार बा वो कुछ समय के बाद कम हो जाला और मिट्टी बंजर हो जाला, कम उत्पादन के कारण घाटा हो जाला। प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन, घरेलू और औद्योगिक कचरे के कारण मिट्टी दूषित हो जाला जिसके परिणाम खेती बाड़ी नहीं हो सकेला। प्रदूषित मिट्टी में पैदावार बहुत कम मात्रा में होला और वो पैदावार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बायोलॉजिकल वर्क, बायोलॉजिकल वर्क दो प्रकार में विभाजित है। ऑर्गेनिक पदार्थ में गिरावट, ई गिरावट होला जब कम मात्रा में खेत में कंपोस्ट डालल जाला या कि अनुचित कृषि प्रथाएं करल जाला, जैसे कि बार बार एक तरह के जुताई उस खेत में होवेला जोन की मोनोकल्चर बोली ला जा। खाद और पेस्टिसाइड के अवशेष यानी कि रेजिड्यू, अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक पदार्थ यानी कि पेस्टिसाइड के उपयोग से मिट्टी के जीव जंतु के हानि होवेला। ई सब जीव जंतु फसल के लिए लाभदायक है और एकर गिरावट से फसल पर बुरा असर होला। सही कृषि विधि यानी कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अच्छी माटी संचालन, अच्छी व्यवहार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के आधार बनेला, लेकिन गलत माटी संचालन से माटी खराब होला और कम उत्पादन होला, इसलिए गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाए के चाहेला। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम एगो स्ट्रैटेजी है जहां माटी के एक समग्र तरीके से संचालन किया जाला ताकि उत्पादन के सुधारे और बनाए रख जा सकेला। इसमें माटी संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन के अपनाई के पड़ी, जैसे कि भारी बारिश के दौरान जमीन के साफ सफाई और तैयारी से बचे के, ऑर्गेनिक माटी के उपयोग करे के पड़ी और केमिकल फर्टिलाइजर्स के समझदारी से उपयोग करे के, यानी कि सिर्फ उतनी मात्रा जो गन्ना के ज़रूरत है चाहिए डाले के। मॉरिशस में माटी संचालन के उदाहरण है कंटू प्लांटिंग, जो मुख्य रूप से गद्दे वाले ज़मीन यानी कि जो माटी स्लोप पर है जहाँ फसल के कोंतू लाइन के अनुसार लगाए के चाहेला। इससे पानी के बहाव और कचरा के जमा होने के खिलाफ एक रुकावट के रूप में काम आवेला। वेजिटेटिव बारियर्स, जिसमें गद्दे पर मजबूत घास जैसे वेचिवे या मुगे लगाई के चाहिए ताकि पानी के बहाव के रफ्तार के कम करल सकी जाए। कवर क्रॉप, जैसे कि मुख्य फसल के बीच में मुख्य फसल लगाने से पहले माटी के ढकने और सुरक्षा खातिर उगाई जाला, यहाँ हमने बोलीला सा इंटरलाइन क्रॉपिंग के नाम से। बगीचों में जैसे लेबोइक या बतात के प्रयोग किया जाला
जो घास के जमे

से रोकेला और माटी को समृद्ध बनावेला। मल्चिंग के इस्तेमाल अक्सर सूखा खेतों में गन्ना के खेत में किया जाला। यहाँ गन्ना के सूखा पत्ता के पूरी तरह से खेत में ढक देवल जाला। इससे पानी के प्रभाव और पानी के बहाव से सुरक्षा मिलेला। मल्चिंग ग्रास के वृद्धि रोकेला, मॉइस्चर के संरक्षित करेला और डेकोम्पोजिशन के दौरान माटी में ऑर्गेनिक मैटर जोड़ेला। मिनिमम टिलेज, माटी के सिर्फ उतना ही हिस्सा में काम होला जहां गन्ना उगाई जाला। पिछले फसल वहीं छोड़ल जाला, उस पर एगो लेबिसी डाले के चाही जहां पड़ी जोन पुराना प्लां बाती उसकी मर जाई और नवा प्लां कान सकब।

संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के सुधारेला, माटी के पानी के रोकने के क्षमता बढ़ावेला और माटी के माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावेला। उदाहरण के लिए 30 टन पोल्ट्री मान्यू लगभग 350 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फॉस्फेट और 450 किलो पोटेशियम माटी के प्रदान करेला। लेकिन यानी कि इसकम सकब उपयोग करे जब नया रोपाई होवेला, एक टन लेकिन में 5 किलो फॉस्फेट मिलेला और एक बीघा में 20 टन लेकिन सकब ज्यादा ले। ग्रीन मैन्यूरिंग के मतलब है ऐसा पौधों के उगाए जाला जो माटी के ऑर्गेनिक प्रदान करेला और माटी के गुणवत्ता के सुधारेला। इसमें खासकर कवर क्रॉप जैसे लेग्यूम के उगाए जाला जो माटी के न्यूट्रिमा को सुधारेला। जब ये पौधा माच्यू हो जाला तब उसको मिट्टी में मिलावल जाला ताकि वो माटी के जरूरी न्यूट्रिएंट मिलेला और माटी के फर्टिलिटी बढ़ावेला। ये प्रक्रिया माटी के स्वास्थ्य के सुधारेला और खेती के लिए अच्छी माटी तैयार करेला। न्यूट्रिएंट बैलेंस, जब खेत से 35 टन गन्ना मूला जाला तो वो मिट्टी से 50 किलो लाजुत, 20 किलो फॉस्फेट और 100 किलो पोटेशियम निकलेला। इसलिए उचित उत्पादन स्तर रखने के लिए किसानों को जैविक और रासायनिक पोषक तत्वों को पुनः डाले के चाहेला। पोषक तत्वों को जोड़ने और निकालने के बीच एक अच्छा संतुलन चाहेला। अगर अधिक हो तो मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान होला और अगर कम हो तो फसल उत्पादन समय के साथ कम हो जाला। तो प्रिय श्रोतागण, आज के कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता। अधिक जानकारी खातिर तोहर पास के फार्मर्स सर्विस सेंटर से संपर्क रखिए। आप लोगन के ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्ते।

शाम के 5:13 हुए हैं दोस्तों, आप सबका स्वागत है रेडियो मॉरिशस के लहरों पर और आप सुन रहे हैं अंताक्षरी प्रोग्राम। और प्रोग्राम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। जी हाँ, आप भी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी। और जी हाँ, हर बुधवार हम आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं, लेकर आए हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम अंताक्षरी प्रोग्राम। 6 तक ये कार्यक्रम चलेगा और आप लोग सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद, ऐसे ही साथ दीजिए। और यहाँ पर मैं हूँ शाकर, और रोशन जी जो है आज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको सुन रहे हैं। नंबर आपको फ़ोन करना है 1402-8085। और बैठे बैठे घर पर अगर आप सुन रहे हैं तो मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं 1525-17005। और आज प्रोग्राम कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम गेम खेलेंगे और वो है जलसा के रात बाजी। हाँ, इस खास मौके पर आप भूलिएगा नहीं, जो भोजपुरी कंसर्ट होने वाला है सैटरडे 26 सितंबर 2026 आट बॉन्केट हॉल आर्सेनल। और आपको क्या करना है, हमारे साथ ब्लिस बॉन्केट हॉल होल ऑसेनाल। जी हाँ, और सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 2 टिकट।

0: जी हाँ, और यहाँ पर इतने सारे कलाकार होंगे, रंभाराम तोहर, नीरज गुप्त माधो, किशोर खिमिया, कुनर हिरीलाल, रोशन सदा सिंह और कृष्ण मुनित, और डीजे होंगे नेल, स्पाइकी, डीजे वाकेल, डीजे अभी और डीजे आनी। तो भूलिएगा नहीं, ये कॉन्सर्ट आप जा सकते हैं ऑन सैटरडे 26 सितंबर 2026 को। और चलिए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं, और यहाँ पर आपको फ़ोन करना है। जी हाँ, गाना भी है, जवाब भी देना है और खेलना भी है। एक गाना आप लोग गाएंगे आपकी पसंद, और दूसरा गाना आपको गाना होगा एसपी बालासुब्रमण्यम। जी हाँ, ये महान कलाकार जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत आज भी दिलों में जिंदा है। एसपी बालासुब्रमण्यम जी की मधुर आवाज़ को संगीत की दुनिया हमेशा याद रखेगी। और उनके बारे में हम क्यों बात करेंगे, उनके गाने हम क्यों इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो निधन है 25 सितंबर 2020 में हुआ। तो चलिए उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं।
1: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: Oh my God, मेरी तो हिंदी कभी।
0: चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, और आपको जो पहला सवाल है, आपको हमें कहना बताना है कि हिंदी फिल्म जगत में एसपी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज किस अभिनेता के लिए बहुत मशहूर हुई? आप हमें सही जवाब दीजिए। जवाब ए है सलमान खान, बी है आमिर खान, और सी है अनिल कपूर। तो चलिए, हमें आपका इंतजार है।
2: खूबसूरत, जिद्दी, पड़ोसन, सत्यम, शिवम, सुंदरम, बेनहर।

0: चोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम
2: सत्यम
3: चलिए 5:19 हुए हैं और आज हम सुनेंगे कौन हेलो
4: नमस्कार उषा बहन से
3: जी हाँ हरीश जी नमस्कार कैसे हैं आप
4: बिल्कुल चकास
3: बिल्कुल चकास चलिए विषय
4: भाई रोशन की कमी महसूस हो रहा है
3: जी उनका नाम तो
4: भाई रोशन को भी
3: जी वो आपको सुन रहे हैं चलिए हरीश भाई आपको गाना है दो गाने होंगे एक आपकी पसंद एक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर और जो दूसरा है और इसी दौरान आपको हमेशा ही जवाब देना है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ किस अभिनेता के लिए बहुत मशहूर

0: हुए। चलिए हम आपको सुनते हैं, पहला गाना सुनाइए।
1: पहला गाना अपनी पसंद के सोनू निगम के फैन होने के नाते एक एक गाना हो जाए सोनू निगम के। जिस कदर प्यार है तुमसे ओ हम सफर, इस कदर प्यार है तुमसे ओ हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर।
0: ओके ओके हरीश जी, और चलिए आप सही दूसरा गाना आपको गाना होगा एस पी बाला सुब्रमण्यम पर।
1: बहुत मशहूर गाना है और एक्सेप्शनली उस फिल्म में एक तमिल एक्टर ने गया था। फिल्म है सागर।
0: चलिए सुनाइए।
1: सच मेरे यार है बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरी ओ यार मेरी।
0: चलिए बहुत धन्यवाद आपको, और सही जवाब आप क्या देंगे?
1: शुक्रिया।
0: और जवाब आप नहीं देंगे
1: तो वो है सलमान खान।
0: सलमान खान, चलिए आपने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मिलते हैं बहुत जल्द।
1: बाय बाय।

चलिए सही जवाब ने दिया है हरीश जी जो रहते हैं बोबा से, सही जवाब उन्होंने दिया है और वो है एस पी बाला सुब्रमण्यम और वो जवाब है सलमान खान। और आपको प्राप्त हो रहे हैं 2 टिकट भोजपुरी कॉन्सर्ट के लिए जो होने वाला है सैटरडे 26 सितंबर 2026। तो भूलिएगा नहीं, आप को कंग्रेचुलेशंस। और थोड़ी देर में हम पूछेंगे दूसरा सवाल। सच में

0: हाथ की। जिस हाथ में वो हाथ है और हमें क्या डर है। हेलो, यहाँ पर देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते,
1: मैं सुदेवी हूँ।
0: हाँ जी सुदेवी,
1: मैं
0: जी।
1: कोशिश करती हूँ,
0: चलिए
1: नहीं कि अच्छा है कि नहीं।
0: हाँ जी सर, और आपको गाना होगा, दो गाने गाने होंगे,
1: जी,
0: एक एक आपकी पसंद और दूसरा गाना एस पी बाला सुब्रमण्यम जी पर।
1: तुमसे मिलकर ना जा, मेरी पसंद की है।
0: तुमसे
1: मिलकर ना जाने क्यों और भी याद आता है, याद आता है। तुमसे

0: चलिए, याद आता है और बहुत प्यारा गाना है। दूसरा गाना गाइए एस पी बाला सुब्रमण्यम पर।
1: कपूर चढ़ जा, ठीक है?
0: हाँ
1: कपूर चढ़ जा, जा जा कपूर चढ़ जा, जा जा पहले प्यार के पहले चिट्ठी दो दिया, कपूर चढ़ जा, जा जा कपूर चढ़ जा, जा जा।
0: चलिए, कबूतर जा जा जा, लेकिन अभी आपको जाना है अभी, लेकिन वापस आना है अगले सप्ताह एक और खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको सुदेवी जी, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।
1: ठीक है ना?
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय बाय। शुभ रात्रि आपको।
0: शुभ रात्रि आपको भी।

0: चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है। 5:28। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप ठीक हैं ना?
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। हाँ, और आप हमें सुनाइए पहला गाना
1: जी। कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें

बहुत बहुत खूबसूरत मीनाक्षी जी, और सुनाइए दूसरा गाना, और वो है एस पी बालासुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत।

0: चलिए भांजी, बहुत बहुत बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद आपको मीनाक्षी जी. हमारी मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट वीक इसी समय इसी चैनल पर. तब तक आप अपना ख्याल रखिए
1: और आप हैप्पी बर्थडे आपके बेटे के लिए.
0: अच्छा जी हाँ, हमारे प्यारे अंशु, होप ही इज लिसनिंग एट दिस टाइम. बस हम कामना करते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़े. धन्यवाद आपको, बाय बाय. चलिए अंशु जो है बहुत ही लकी है, काफी लोग उनको याद कर रहे हैं. आपको तहे दिल से हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद.

0: कबूतर जहाँ जी हाँ फिल्म मैंने प्यार किया से लिया गया। और वैसे इस फिल्म में सभी गाने एक से बढ़कर एक ही खूबसूरत है और सब पॉपुलर हुए थे। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल के साथ। दोस्तों आप जानते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, लेकिन हम आपसे ये सवाल करेंगे कि एसबी बाला सुब्रमण्यम जी का पूरा नाम क्या था। बस आप हमें जवाब दीजिए और आपको गाना भी गाना होगा। दो गाने, एक आपकी पसंद और एक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते उदय भाई, कैसे हैं आप?
1: सभी लोगों को नमस्ते। अच्छे हैं,
0: अच्छे हैं।
1: सभी जो साथ दे रहे हैं टिकटॉक पर भी?
0: नहीं, टिकटॉक आज हम लाइव टिकटॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं।
1: वो लोग सुन रहे हैं ना?
0: हाँ जी, हाँ जी, वो लोग सुन रहे हैं, यही काफी है। और चलिए उदय जी, आप हमें सुनाइए पहला गाना।
1: रफी जी का गाना है, तू बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी तारीफ क्या करूं, आँखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं।
0: चलिए धन्यवाद आपको। और दूसरा गाना जो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको सही जवाब भी देना होगा, आपको बताना होगा कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का जो,
1: मैंने मैंने काम नहीं किया, मैं तो फोन पर था।
0: अच्छा कोई बात नहीं,
1: नहीं तो,
0: लेकिन
1: नहीं तो
0: चलिए
1: मैं ढूंढ लेता।
0: ओके, दूसरा गाना सुनाइए।
1: बारा बीएसपी की

0: बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको उदय जी, बहुत ही प्यारा गाना आपने गाया और बहुत सही तरीके से भी गाया है। चलिए धन्यवाद आपको, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय। कबूतर जा जा जा। चलिए आपको जवाब देना होगा कि एस बी बाला सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या था, और आपको मिलेंगे दो टिकट। जी हाँ, दो टिकट भोजपुरी कंसर्ट के लिए जो होने वाला है सैटरडे 26 सितंबर एट ब्लिस बैंक्वेट हॉल एट आर्सेनल। दो टिकट आपको मिल रहे हैं, और आपको आना होगा MVC टिकट कलेक्ट करने के लिए सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे के बीच ड्यूरिंग वीकडेज, तो भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि सही जवाब कौन देने आया है। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: जी मैं संध्या हूँ, मैं दुखी मैम से।
0: अच्छा संध्या, सबसे पहले संध्या जी कैसी हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं। संध्या जी आपके

0: पास सही जवाब है इस सवाल का?
1: नहीं नहीं
0: नहीं,
1: बस हम गाना चाहेंगे,
0: गाना चाहेंगे तो अगर चलिए तो पहला गाना गाइए प्लीज
1: जी।

0: ठीक है ओके संध्या, बहुत धन्यवाद। दूसरा गाना एस जी बाला सुब्रमण्यम का गाना हो, का एक गीत सुनाइए।
1: ये गाना चलिए उन्हीं पर
0: उन्हीं
1: है
0: पर है। और दूसरा
1: जी।
0: गाना
1: हाँ दूसरा गाना उन्हीं पर ही गा लेते हैं।
0: ओके।
1: तेरी

0: मुझसे मुझे कितना प्यार है।
1: चलिए संध्या जी, बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत
0: ओके
1: जल्द,
0: आपको भी। ओके बाय बाय।
1: बाय।
0: थैंक यू बाय।
1: चलिए हम आप लोगों से यही मांग करते हैं कि जो सवाल आप हमने आपसे पूछा है आप सही जवाब दीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर लाइन पर कौन है। हेलो
0: दीवान।
1: हेलो हेलो, हम आपको सुन रहे हैं।
0: हेलो नमस्ते बहन।
1: नमस्ते जी, नमस्ते। और आप हैं जय सी गुलाम जी।
0: हाँ बहना, हाँ
1: चलिए पहला गाना सुनाइए।
0: मैं अपनी पसंद का एक गीत सुनाता हूँ, तब फिर राष्ट्रपति बाला सुब्रमण्यम पर आएंगे।
1: चलिए।
0: ये रात सुहानी रात नहीं है, चांद सितारों सो जाओ, है चांद सितारों सो जाओ, सो जाओ सो जाओ, ये रंजो आलम के दीवानों, तू मेरा फसाना क्या जानो, ना मौत मिली ना दादी, किस्मत में लिखी थी बर्बादी। ठीक है ना बहन?
1: ठीक है। और दूसरा गाना एस वी बाला सुब्रमण्यम पर।
0: तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा

0: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको जय जी। और हमने एक सवाल पूछा कि एस बी बाला सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है, आप हमें ये जवाब दे सकते हैं?
1: हमको नहीं पता बहन, माफ कीजिए।
0: चलिए धन्यवाद आपको। और हमको लग रहा है कि ये जो सवाल हमने आप लोगों से पूछा है वो काफ़ी कठिन है, इसीलिए कोई नहीं जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम कुछ जवाब देते हैं। उनका सही नाम है श्रीपति पंडितरायलु बालासुब्रमण्यम। एक बहुत ही आसान सा सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, और हमको ये बता दे कि एस बी बालासुब्रमण्यम जी का निधन किस वर्ष में हुआ। अभी आपको क्या करना है, फ़ोन करके गाना नहीं है लेकिन सही जवाब देना है, सही जवाब देने पर आप गा पाएंगे। चलिए हमें आपका इंतज़ार है, सही जवाब आप देंगे इसी पर आप गाना गा पाएंगे। हमें आपका इंतज़ार है, हमें ये बता दे कि उनका निधन किस वर्ष में हुआ।

0: चलिए यहाँ पर देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्ते उषा जी। मैं
0: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं। चलिए आशा जी, बताइए सही जवाब क्या है।
1: सही जवाब है 26 सितंबर 2026।
0: जी हाँ, आपने सही बोला है। और वो उनका जो निधन है ये तो 25, जहाँ 25 सितंबर 2020 में है ना। तो आपने सही जवाब दिया है, बहुत धन्यवाद आपको आशा जी। एक गाना और आपको प्राप्त हो रहे हैं, 2 टिकट फॉर भोजपुरी कंसर्ट जो होने वाला है सैटरडे 26 सितंबर, तो भूलिएगा नहीं। और आपको आना है MBC, ठीक है, सुबह के 9 बजे से 3 बजे तक ज्यूरिंग वीकडेज, ताकि आप अपना टिकट कलेक्ट कर सके, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस टू यू।
1: अब मैं गा
0: चलिए
1: सकती हूँ?
0: हाँ जी, आप गा सकते हैं, गाइए।
1: हाँ जी, तो पहला गाना मैंने प्यार किया सुना है,

0: तुमसे मिले जो दिल ने कहा, तेरी बाहों में गुजरे जमाना।
1: एस वी बाला सुब्रमण्यम जैसे रोशन भाई अगर वो होते तो वो आपको ये कहते कि आप बने हैं स्टार ऑफ द वीक। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं। ओह ओके, थैंक यू सो मच आशा, थैंक यू। चलिए धन्यवाद आपको, बाय बाय। इतने सारे लोग अंशु को विश कर रहे हैं, दिल को ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए गेम तो हमने खेल लिया है और दो विजेता हमको मिले हैं और वो है हरीश जी फ्रॉम बोबासन, आपको प्राप्त हो रहे हैं दो टिकट, और आशा जानू फ्रॉम कॉटेज आज आपको भी मिल रहे हैं दो टिकट कंसर्ट, भोजपुरी कंसर्ट के लिए जो होने वाला है सैटरडे 26 सितंबर। तो भूलिएगा नहीं, आपको आना है MBC सुबह के 9 बजे से 3 बजे के बीच। जी हाँ, और आप अपना टिकट प्राप्त कीजिए।

0: 6 बज चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम देखते हैं कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो जी, हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते
1: उषा जी।
0: जी नमस्ते आपको, आप कौन?
1: नमस्ते, मैं हूँ ज्योति।
0: ज्योति जी कहाँ से आप बोल रही हैं?
1: बॉम्बू से।
0: बॉम्बू से
1: जी।
0: ओके ज्योति जी, बोलिए सवाल। दो गाने आपको गाने होंगे, एक आपकी पसंद और एक एस वी बाला सुब्रमण्यम पर।
1: बाला सुब्रमण्यम जी का हम पहले गाएंगे
0: जी। चलिए।
1: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: ओके।

0: देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते, आपका नाम।
1: हेलो
0: हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, आपका नाम प्लीज।
1: हेलो, मैं श्यामा बिलमे से बोल रही हूँ।
0: ओके श्यामा जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। पहला गाना सुनाइए। हेलो हेलो, लगता है लाइन में कुछ खराबी है। एक और कॉलर है। हेलो,
1: हेलो सर जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, हम आपको सुन रहे हैं। चलिए नीला जी,
1: हैप्पी
0: धन्य,
1: बर्थडे टू यू।
0: मेरा जन्मदिन नहीं है लेकिन मेरा बेटा का जन्मदिन है।
1: ओके,
0: फिर
1: कोई
0: भी
1: बात नहीं।
0: बहुत धन्यवाद आपने विश किया। और चलिए नीला जी, आप हमें सुनाइए पहला गाना, एक गाना आपकी पसंद।
1: न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल
0: दूसरा गाना एस पी बाला सुब्रमण्यम का एक गाना सुनाइए।
1: गया। आजा शाम होने वाली, मौसम भी है अंगराई, तो किस काम की है लड़ाई, तू चल
0: ओह
1: मैं
0: नो,
1: आई,
0: अंदाज के साथ। चलिए बहुत धन्यवाद आपको नीला जी,
1: थैंक यू
0: मिलते
1: साजी,
0: हैं।
1: साथ साथ हम लोग चलेंगे। हाँ
0: ऑफ कोर्स, हमेशा। धन्यवाद,
1: जी,
0: मिलते हैं बहुत जल्द।
1: शुक्रिया, आपको भी
0: बाय।
1: धन्यवाद।

5:53 हुए हैं दोस्तों, और आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद, ऐसे ही साथ दीजिए हमेशा। मिलते हैं बहुत जल्द, आप अपना ख्याल रखिए। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। न्यूयॉर्क में कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के बीच लगी पहली बैठक के अंतर्गत शागस का मुद्दा चर्चे में रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मॉरिशस के साथ हुए समझौते का विरोध करते हुए इसे एक बेहद खराब डील बताया। उनका कहना था कि जेगो गार्सिया एक रणनीतिक सैन्य ठिकाना है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में वैश्विक विवाद सुलझाने के उपाय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा के मुख्य विषय बने हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर उसे सुपर इंटेलिजेंस के तौर पर रिब्रांड करने का फैसला आम किया। इंडियन ऑयल के ईंधन की एक पहली खेप आज मॉरिशस पहुंची। इसमें 9,047 मेट्रिक टन पेट्रोल, 10,202 मेट्रिक टन डीजल, 15,505 मेट्रिक टन जेट एआई और 4,933 मेट्रिक टन मैरीन गैस ऑयल पाया जाता है। इस आपूर्ति के बावजूद ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के संकेत दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने आज पुलिस में नई भर्ती हुई कांस्टेबल मेरी जेड कैथरीन के साथ मुलाकात की, जिसे हाल में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने इन आक्षेपों की कड़ी निंदा करते हुए इस नौजवान अफसर के प्रति अपना समर्थन जताया। और विदेश में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर में एक आवासीय इमारत में गोलीबारी की वारदात पेश आई है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा कि उन्हें मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान एक कॉमन ग्राउंड मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जुलाई में बर्नहम के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से दोनों नेता दो बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इन वार्ताओं ने एक उत्पादक संबंध स्थापित करने में मदद की है। संघर्षों का समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में भाषणों के मुख्य केंद्र बिंदु रही हैं। ये एक ऐसी महासभा है जहां अमरीकी राष्ट्रपति ने एआई का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व की वकालत की है। ब्रिटेन ने अमरीका के साथ एआई के क्षेत्र में रक्षा साझेदारी करने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जबकि फ्रांस ने इसी संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा करने की मांग की है। ये महासभा मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के लिए भी चर्चा में रही। कुणाल गोजी, आस्था गुबिन।
1: दुनिया में युद्ध और जलवायु संकट बढ़ रही है, इसी बीच एआई के विकास को नियंत्रित करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात की ये तस्वीर पेश की। अंटोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब शक्ति के कई केंद्र उभर रहे हैं। ऐसे समय में देशों को एक दूसरे पर अपनी निर्भरता समझनी होगी और मिलकर काम करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया को दो विरोधी गुटों में बंटने से रोकना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देने के कुछ ही मिनट बाद कहा कि उसके साथ बातचीत फिर से शुरू हो गई है। दूसरी ओर तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रणनीतिक रूप से फिर खोलने के लिए अपनी शर्तें सामने रखी
2: हैं।
1: ईरान के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एआई पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अब आधिकारिक दस्तावेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह सुपर इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका इस तकनीक के विकास को और समर्थन देना चाहता है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी शक्तियां उन देशों के राजनीतिक फैसले तय नहीं कर सकती जिनके पास मजबूत सेना नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 10 और 11 नवंबर को होने वाले पेरिस पीस फोरम के लिए निमंत्रण दिए। उन्होंने एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर भी जोर दिया।
3: On a laissé nos enfants et nos adolescents

0: évoluer dans un système qu'on maîtrisait assez peu, qu'on apprenait à découvrir nous-mêmes.
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने एआई के सेक्टर में अमेरिका के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अफ्रीकी देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग उठाई।
2: Institutions that do not reflect the people whose cooperation they require will eventually struggle to command their trust.
1: सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने छोटे टापू देशों की मुश्किलों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट और कर्ज का बोझ इन देशों पर भारी पड़ रहा है।
3: Do not seek strategic competition. We seek shared solutions.
1: उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय जलवायु आपदाओं के असर और उसकी भौगोलिक दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए।
4: एमएस टोम स्प्लेंडिड नामक जहाज बुधवार को पोर्टली में आकर लंगर डाल चुका है। इसमें देश के नए आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद इंडियन ऑयल द्वारा पहुंचाई गई ईंधन की पहली खेप मौजूद है। इस खेप को प्राप्त करने के लिए व्यापार मंत्री बंदरगाह पर मौजूद थे। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने राशन वाले चावल की आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया है। एसटीसी का कहना है कि सफ़ेद लंबे दाने वाले चावल को खरीदने की उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण मॉरिशस के लिए कुछ खेपों के परिवहन में देरी हो रही है। वितरण सुनिश्चित करने के लिए एसटीसी का कहना है कि वर्तमान में हर दिन 2.5 किलो के लगभग 12,000 बोरी बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में दुकानों को सामान पहुंचाने के लिए एक डायरेक्ट सेल्स यूनिट भी स्थापित की गई है। एसटीसी का कहना है कि उसने इससे संबंधित शिकायतों के लिए एक हॉटलाइन शुरू की है। आज पोर्टली में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मेरी जेड कैथरीन से मुलाकात की, जो पुलिस बल में एक नई भर्ती है, जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। सरकारी नेता ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया। सरकार ऑनलाइन हमलों को रोकने और दोषियों को दंडित करने के उपायों पर पहले से ही विचार कर रही है। सिंचा मुतु की रिपोर्ट।
1: अपनी वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर पूनम कुपों के साथ नई भर्ती हुई पुलिसकर्मी मेरी जेड कैथरीन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और उनको लेकर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों की निंदा की।
5: Inacceptable. Mindjali pendant longueur pas qu'ils histoire qui fausse et je peux faire très bien là hier sur supervisor puis j'ai inspecté woman inspecteur ou pas peut dire qu'il peut faire très bien donc ça me suis encouragé et en même temps qu'il était qui action vous en prendre vivre.
1: मेरी जेड कैथरीन ने प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भी वे हिम्मत बनाए रखेंगी।
6: Des votes ça là, donc on toujours garde la tête haute et malgré toutes difficultés, nous là, donc on peut du bout de faire notre travail correctement.
1: Mary Jade Catherine ne hal hi mein Pop NEC police station mein apni training shuru ki hai.
4: सऊदी अरब का राष्ट्रीय दिवस कल मॉरिशस में मनाया गया। त्रियानो में सऊदी अरब के दूतावास द्वारा आयोजित एक समारोह में विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भाग लिया। ये अवसर मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ संबंधों के साथ साथ कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को उजागर करने का था। अब्दुल बुलाकी।
7: त्रियानो में संयुक्त अरब अमीरात राजदूतावास की पहल पर मॉरिशस में सऊदी राष्ट्रीय दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। कई महानुभाव मौजूद, जिनमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल। मौके पर अपने भाषण में मॉरिशस के लिए सऊदी राजदूत फैयज मिशेल अल्तमियात ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और लगातार विकसित हो रहे संबंधों पर जोर दिया। कई क्षेत्रों में सहयोग दर्ज, जैसे आर्थिक आदान प्रदान, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और जनताओं के बीच संबंध आदि।
8: सऊदी अरेबिया एंड मॉरिशस एंजॉय वार्म एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन।
7: सऊदी अरेबिया और मॉरिशस के

बीच लंबे समय से रिश्ते कायम हैं, जो दोस्ती, परस्पर सम्मान और समान हितों पर टिके हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात को खुशी है कि मॉरिशस में कई क्षेत्रों में कई परियोजनाएं साकार करने में अपना समर्थन और योगदान दे पा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य, जल, सामाजिक आवास, स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय मूल ढांचा, शहरी विकास, मानवतावादी सहायता और राहत कार्रवाइयाँ। इस तरह मॉरिशस की जनता के कल्याण और मॉरिशस

0: सेक्टर परिवर्तन के सिलसिले में सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख किया गया। सऊदी कूटनीतिज्ञों के लिए ये तरक्की मॉरिशस के साथ रिश्तों को मजबूत करने का मौका भी प्रदान करती है। दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं और पहल से साझेदारी और भी सुदृढ़ होने वाली है।
1: और समाचारों की शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के बीच लगी पहली बैठक के अंतर्गत शागुस का मुद्दा चर्चे में रहा। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: न्यूयॉर्क में राष्ट्रसंघ महासभा के कार्यों में भाग लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने मंगलवार को अपनी सबसे पहली बैठक लगाई। मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच शागुस वापसी पर प्रमुख रूप से चर्चा। कुछ समय बाद प्रेस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉरिशस को शागुस द्वीप समूह पर प्रभुसत्ता लौटाए जाने की यूनाइटेड किंगडम के फैसले की निंदा की। बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जेको गार्सिया सैनिक अड्डे की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि मॉरिशन प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताया गया था कि एक सुझाव के लिए सब कुछ किया जाएगा। इस मामले पर बरतानी प्रतिरक्षा मंत्री वेज स्ट्रेटिंग ने बीबीसी को दिए गए एक बयान में बताया कि यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस वापसी के मकसद से तय समझौते की फिर से जांच की जाएगी।
1: मॉरिशस की मौसम विज्ञान सेवाओं में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मौसम विज्ञान सेवाओं के कार्यकारी निदेशक ने 2027-2031 की रणनीतिक योजना पेश करते हुए घोषणा की कि इसमें नई चेतावनी प्रणालियां यानी अलर्ट सिस्टम शामिल होंगी, जिनमें इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग और जोखिमों का बेहतर संचार शामिल है। आयुर्वेद भारत की सदियों पुरानी चिकित्सा परंपरा है, जो केवल इलाज पर ही नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर भी जोर देती है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद फॉर हेल्थियर टुमोरो विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन आज फिनिक्स स्थित आईजीसीआरसी में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग ने किया था। इसमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू, मॉरिशस में आयुर्वेदिक चिकित्सकों और आयुष क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों ने हिस्सा लिया। अशिता रखो।
2: एक प्राचीन परंपरा जो आज भी प्रासंगिक है, आयुर्वेद में बीमारी से बचाव, स्वस्थ आहार और शरीर एवं मन के बीच संतुलन पर विशेष जोर दिया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस कम प्रदर्शनी आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी एक अवसर रहा।
3: अब तक तो हम केवल ओपीडी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें तो इंडोर होगा यानी कि पेशेंट एडमिट होंगे, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम उसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट भी देंगे, जाकि जिससे लोगों को उसका लाभ हो। नहीं तो अभी
2: प्राकृतिक उपचार और स्वस्थ जीवन शैली में बढ़ती दिलचस्पी के बीच मॉरिशस में भी आयुर्वेद को लेकर लोगों की रुचि बढ़ रही है।
4: आयुर्वेद हमारे पूर्वजों के साथ मॉरिशस में आया। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम आयुर्वेद के बताए हुए पद्धति पर चलें, क्योंकि इनमें बताए हुए दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो आयुर्वेद में बताए हुए औषधियों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चिकित्सक के मतलब एडवाइस पर हम कर सकते हैं, और उसके बाद हम आयुर्वेद का एक तरह से जो सेवन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।
2: कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान के लिए दो हस्तियों को सम्मानित भी किया गया।
3: तो अलग अलग विषयों पे जो है आज हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें डायलॉग डिस्कशंस होंगे। वेरियस पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स मिलके बैठ के जो है वो आयुर्वेद को कैसे मॉरिशस में और जो है वो मजबूत किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे।
5: मैं यही चाहूँगा कि ये सम्मान 1.2 मिलियन में, ये जो धनवंतरी है, एक छोटा धनवंतरी के रूप में 1.2 मिलियन के लोगों में प्रतिष्ठित हो। इसका मतलब आपके में एक ऐसी विद्या हो जो अरी के रूप में, एक एनमी के रूप में डिजीज को मारेगा, तो ये धन्वंतरी की खूब खूब एक विद्या है।
2: भारतीय उच्चायोग ने क्षेत्र में आयुष को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
6: हमारा स्वास्थ्य सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन और आयुर्वेदा का जो के बारे में जागरूकता फैलाने का जो हमारा प्रयत्न है, जो प्रयास है, उसमें हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम जो है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये हम मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं पिच होता है, ये साथ के साथ पोजीशन होता है। और आयुर्वेदा में जो तमाम बेनिफिट्स हैं उससे हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल, एक अपनी डेली रूटीन्स, एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इन सब में हमें बहुत बहुत फायदा मिलता है।
2: वहीं राष्ट्रपति

0: रणवीर गोखुल ने कहा कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी शामिल है।
1: Bizet engage une campagne de sensibilisation vis-à-vis la population pour que la population comprenne tout bon bénéfice qui est capable de gagner en utilisant les produits ayurvédiques.
0: इस तरह ये आयोजन एक प्राचीन चिकित्सा परंपरा को सामने लाने के साथ साथ बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी बना।
2: आज सुबह बेन में एमएमएम ने अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। दल के सदस्य एमएमएम की 57वीं वर्षगांठ की घोषणा करने के लिए एकत्र हुए, जिसे इस रविवार 27 सितंबर को रिजवी के ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने अपनी स्थापना के बाद से एमएमएम को लगातार समर्थन देने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने पार्टी की यात्रा और उन विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की जिनका उसे वर्षों में सामना करना पड़ा है। इस जुटाव की अध्यक्षता पार्टी के कई नेता करेंगे, जिनमें आर्याना वोमारी, अजय गणेश और राजेश भगवान शामिल हैं। आज एमएसएम ने भी अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। एमएसएम का कहना है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन साथ ही दल नेशनल क्राइम एजेंसी की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर सवाल उठाता है।
3: एमएसएम के अध्यक्ष जूलिय रॉगो ने हर एक नागरिक की स्वतंत्रता की इस नई एजेंसी और साथ में इस कानून की संवैधानिकता के संभावित प्रभाव पर प्रश्न उठाया।
4: C'est un texte sacré qui est drafté avant l'indépendance et qui définit pas juste nos cadres légaux, mais l'identité même nous pays. Et ce que nous constatons, alors qu'il met un comité Djibouti, comité qui s'appelle Constitutional Review Commission, pour un travail, l'eau, ben, possibilité d'amendement constitutionnel, mais qui fait partie inclure ça l'amendement pour créer sa National Crimes Agency là.
3: इसके अलावा जूलिय रॉगो ने शागो इस मामले पर भी बात की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर भी टिप्पणी की। उनके मुताबिक 2 वर्ष बीत चुके हैं और जनता को इस मामले में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसमें एमएसएम की ओर से आयोजित 3 हालिया जुटाव शामिल।
2: और विदेश में दक्षिण अफ्रीका के शहर डर्बन के पास एक आवासीय इमारत में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात हमलावरों ने एक घर पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 14 लोगों पर गोलियां चला दी। इनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में चोटों के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल धूप खिली रहेगी, लेकिन पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो पर दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 5:58 पर सूरज उगेगा और शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।

बगन लेन बेलेगवेसेश में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री दनमराज ओजाइब, जो काहो संजय दत्त नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। एवेन्यू मुतेला बुट में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदायशी नामची दी और जो जेल नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन की 11 बजे उनके घर एवेन्यू मुतेला बुट से उठाकर सेंट जॉर्ज दे सालिन की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। कौबम्बई नंबर 2 वाकवा में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यवती गोपाल पैदायशी नाम सोनू और जो साकुन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके घर कौबम्बई नंबर 2 वाकवा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 12:30 PM। नंबर 85 वेस्टर्न बाउंडेरी काट्रोबोन में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सतभामा हुला पैदायशी नाम परन सिंह और जो राधिका नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे उनके बेटे भुवन हुला के घर नंबर 85 वेस्टर्न बाउंडेरी काट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 12:10 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। विचे मिल थ्रियोले आनंद स्क्वायर हिंदू कल्चरल सर्कल श्री हनुमान मंदिर में इस शुक्रवार 25 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच अनंत चतुर्दशी व्रत का आयोजन हो रहा है।

रेडियो मर्शस पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए अभी के लिए सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेपल और फिनिक्स के रहने वालों को, स्पेशली इन गलियों के रहने वालों को जो है होट सेपल के कुछ हिस्से, बिशाओ लेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड, सोमिल लेन, एडगर क्विरिन एवेन्यू, मोसलमा नोएल, एपास गुमानी, बालगुबिन लेन के कुछ हिस्से, उस्मान एवेन्यू, अली जैक स्ट्रीट, एपास लोरियो, मोसलमा शाम्बो, मोसलमा सुब्राती, किनिंग रोड नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, CWA सैंपल और वहां आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शुक्रवार 25 सितंबर 2026 को दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरी विज्ञप्ति। मोसलमा सोना, आली ब्रियान और कास्टेल, मोसलमा सोना, आली ब्रियान और कास्टेल और वहां आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि गुरुवार 24 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से उन सारे जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्षमा प्रार्थी है। ये थी 2 विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से।

听众朋友，感谢收听张大卫，祝大家接下来的时间愉快，我们下次见。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को लेकर। हमारे सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को हमारा नमन। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। एक साल बीतते हैं, जी हाँ, एक साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा भक्ति गान।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं मन की शांति जीवन का वह अनमोल धन है जिसे पाने के बाद छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी लगने लगती है। बाहर की दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर मन शांत हो तो जीवन में संतुलन बना रहता है। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं मन की शांति केवल परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि अपनी सोच भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने से भी आती है। जब हम हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़कर वर्तमान पल को स्वीकार करना सीखते हैं तब मन को सुकून मिलने लगता है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रेम

समस्त सुनने वालों को हम बताते चले कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर दुनिया को खुश करने की कोशिश में हम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने मन की आवाज़ जो है सुनना भूल जाती है। तो हमें याद रखना है कि हर प्रश्न का जो जवाब है तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं, हर परेशानी का हल आज ही निकलना ज़रूरी नहीं, कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही जीवन की समझदारी है।

जब मन में प्रभु का स्मरण हो, हृदय में श्रद्धा हो और कर्मों में सच्चाई होती है, तब जीवन में शांति का अनुभव गहरा हो सकता है। तो आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करने जा रही है। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उर्दू तर्जुमा, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में बरतने का सामान है, और जो कुछ अजर व सवाब अल्लाह के पास है वो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाला है, जो सिर्फ मोमिनीन और अपने रब पर भरोसा रखने वालों के लिए है। बहवाला उर्दू तर्जुमा सूरा अशूरा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, निकाह करो चाहे महर में लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना हो। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। शब बखैर। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

0: रात के ठीक 9 बजल बा घड़ी मिलाल और इ वक्त तू सुनत एमबीसी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
0: रात के 9:05 होता आज बुधवार की रात बुधवार 23 सितंबर साल 2026 सब संगतियालों के सब भाई बहनों के और जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह एमबीसी रेडियो मनोरंजन और एमबीसी रेडियो मॉरिशस दोनों चैनल पर चलता है प्रोग्राम भोजपुरी चरका धमाकेदार कार्यक्रम जहाँ पर नाची रह सक गावी रह सक झूमी रह सक कमरवा डुलाई रह सक और बेशक की प्रोग्राम अभी चली टिकटॉक पर भी टिकटॉक पर सब अपनी देखे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर मन करता कोनो गीत सुने के टिकटॉक पेज पर एसएमएस करिए या फिर टेलीफोनी का रखा 0800 पर। ये प्रोग्राम में ढेर कुछ बा बॉलीवुड न्यूज खाना खजाना व्यंजन कहानी और ढेर कुछ बा गीत खाली गीत नहीं मांगी रहा सर ये प्रोग्राम में ढेर कुछ हमने शेयर करी रहा सर तो लोग के संगे और बढ़िया गर्म कर रहा भैया आज दिन के तक खूब गर्म कर लक और सांझ के भी घर के भीतर जैसे जैसे आग भी गता बढ़िए गर्म ठंडा के मौसम चल गया भैया अब गर्मी के मौसम आवा था तब गर्मी के मौसम के चेहरा सामना करे के का करब नाचे गावा झुमक कमरवा डुलावा और एक गर्मी के भगावा आंख मारेला ये अभी रात के देखे आंख मारता हो कोनो जुली जुली तंसा के देखे आंख मारता हुआ का देखिए भौजी देख रहे कोई चौक मारा तो भौजी बेलना और चौकी से धरा दी है। चलो सुनी ना सही गीत बंधु मोहम्मद खालिद और रत्ना पदारत गीत गेले हवन आंख मारेला अब रत्ना देखिए के आंख मारा तो है।

हमरा देख देख के आंख मारेला, हमका देख देख के सिटी मारेला। छोकरा छोकरी के देख के आंख मारेला, सिटी मारेला। देखिए अब छोकरी तो शौत और एक थप्पड़ धरा दे। मजाक करते हो। अब छोकरा छोकरी के देख के आंख नहीं मारी था, के देख के आंख मारी हो। अब छोकरा छोकरा के देख के आंख मारी तो नहीं अच्छा बना। कि छोकरी छोकरी के देख के आंख मारी तब पर प्रॉब्लम बा। तभी तो छोकरा छोकरी के देख के आंख मारी। हम बात नहीं करते हो, ऐसे नहीं करिए पब्लिक में। कोनो छोकरी के देख के आंख नहीं मरे तो एक थप्पड़ खा ली बा। रात के 9:11 होता है और बेशक अपन परिवार के कबो नहीं भूलैया। ये परिवार जो है तोहर संसार, ही परिवार तोहर खातिर सब कुछ करेला। परिवार नहीं बात कुछ नहीं बा भैया। समाज में परिवार के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहल बा और हमेशा रही। अपन परिवार के कबो नहीं भुलाए के कहे कि माँ बाप जितना को लड़का लोग खातिर करेला, इस दिना में कोई कोई के नहीं करी। अपन परिवार के इसने ही प्यार करते रहिए, उनके साथ देते रहिए। और नतराज रामकोरन उनके साथ देवतन उनके बड़का संगतिया वन। और एग्जाम को शुरू होता है चेसी के लेंदी से। ऑल द बेस्ट, गुड लक नतराज। गीतवा तोहर खातिर गरम तावा विशाल पौधा गीतवा गई रखबा। तो सब लड़का लोग जो एग्जाम में भाग लिया होता है आजकल, ऊँचा है पेशाक हो, एन सी ए हो, एस सी हो, एच एस सी हो, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।

हाय सामदी, 26 सितंबर के को बहुत ही बड़ा इवेंट हो मॉरिशस में, जलसा के रात बाद फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट अब इन मॉरिशस। जी हाँ, शनिवार 26 सितंबर के रात के 7 बजे और ये हो ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में। और टिकट खरीदे खातिर प्री सेल टिकट है 500 रुपया, डो है 700 रुपया। और भूले नहीं कंसर्ट जो है कुणाल हीरीलाल की ओर से आयोजन कर गरबा और घर में ढेर मना आर्टिस्ट लोग भाग ले, भोजपुरी आर्टिस्ट लोग तो ज़रूर। जैसे हम बोली जो कंसर्ट है ये पहली बार मॉरिशस में ऐसे कंसर्ट आयोजन करल जाता और एक में जैसे हम बोली तो ढेर मना कलाकार बा एक में भाग लेवाता रंभा राम तो हल, फिर कुणाल हीरीलाल और इस भवन जा कुणाल हीरीलाल, किशोर खीमिया, रंभा राम तोहल, नीरज गुप मधु, रोशन सदा सिंह, कृषि मोनिकर, डीजे लोग रही वहाँ पर ही, डीजे यानी डीजे अभी, डीजे वकील, स्पाइक भी और नील के, और गेस्ट आर्टिस्ट रयन केतन महाराय, राधन रामसा, रविंद्र सांबर और अवनीश एमसी की ड्यूटी करी। तो भूलिया नहीं हाई सामदी के 26 सितंबर के रात के 7 बजे से रात ले ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में रही फर्स्ट जलसा के रात बा भोजपुरी लाइव कंसर्ट, एक में ज़रूर भाग लिया जा आइए देखे। पर एक से पहले चाहे टिकट खरीदे के तो चल अभी कचिर सुनब जा कुणाल हीरीलाल जो है मस्त माइंड है लाइव कंसर्ट की, और आवाज़ में वो गीत और गीत हमने चलाओ थे

मार ताली मार। और संगतिया लोग, तू बोला तू अगला जन्म में कौन सी बनी खोजबा। हमार से पूछबा था अगर अगला जन्म मिली तो हम एगो तितली बनी खोजब। तितली की मतलब है पापियों। अब पापियों का है, पापियों ई खातिर कहे कि पापियों वो लीब रहेला, वो उड़ल करेला। तो हम भी अगर अगला जन्म मिली तो भगवान से बोला तुमके इंसान नहीं बने प्रभु, तुमके एगो तितली एगो पापियों बना दिया, हम सगरो उड़ल करब। और तू कुछ बनबा बोला था जब अगला जन्म मिली था, ढेर कोई बोला था हम शेर।

शेर बना, कोई बोलता हम घोड़ा बना, कोई बोलता हमें को राजा बना, कोई बोलता हमें को मिलियनेयर बना, तो सबको एक अपन अपन सपना बा अगला जन्म के बारे में। और हमने की मान्यता यह है कि है जब शरीर मरेला तो आत्मा नहीं मरेला है, आत्मा है शरीर के छोड़ के दूसरा शरीर में प्रवेश करेला। इट डिपेंड्स ऑन द पॉस एक्शंस, कौन एक्शन कर ले, वह निमन एक्शन कर ले तो निमन शरीर मिली या तो मोक्ष मिली, मोक्ष मिली तो भगवान के चल जाए, अगर मोक्ष नहीं मिली तो फिर से परी दुनिया में आएगी, हाँ कि नहीं। तो अगला गीत जो है को पोटपोरी है गीत गवा विभा चिंता बनी गए वन है गीता चरावती से सब संगतियारों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हो जा टिकटॉक पेज पर देखो हमने के देखा था और रेडियो पर सुना हवन आप हवन काविश प्रिया न सिमलु अनिमाक्स रानीपुरन श्वेत रेशमा लाला कुतना मोहर हुसैन सरिता कनाय सरिता जी नमस्ते लवली कौर भूब प्रेम मीशा निर्मल खुदी कृति शाह सेवियर एंजल संध्या रामनोरत नौशाद नेहा अविनाश और रवि बंगारू, रवि बंगारू बराज हो नाचा तमने के संगे नाचा भैया कमरवा डोलावा दिव्या रवि बंगारू की ओर से है गीत तोहर खातिर, रवि बंगारू गीत तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और सब परिवार के नाम। सत्यानंद मुनि हेलो, दिजय सिंह राम सिंह श्री हरिशन दजय सिंह राम सिंह सूरी नाम से वन नमस्ते जी। और अगला गीत वेदना के नाम आप हवन काठबोन से और काठबोन में जितना कोई हमने की देखा था सुना था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर सब कोई खातिर। अगला गीत चलाओ अब सर रेहाना जमन ई बी साधुवन करुताई है गीत तोहरो नाम, तो चलो एक साथ गीत सुन अब सर गीत गवाई है पोटपुरी विभा चिंतामणि की आवाज़ में।

हमनी के बड़ा आदमी के आशीर्वाद हमनी पर हमेशा रहेला। आशीर्वाद को बहुत बड़ा चीज है। अगर तोहर पर तोहर बड़ा आदमी के आशीर्वाद बात है तो जिंदगी में हमेशा कामयाब हो, तू प्रगति करते रह और आसमान के बुलंदियों तक छूबत। हमेशा अपन बड़ा आदमी लोग के आदर सत्कार करिए और लोग के आशीर्वाद प्राप्त करिए। रात के 9 बज के आधा हुआ था और अभी अगला गीत चली घर घर में झगड़ा सुजीरा जीवन गीत गए वन और एक गीत चली संजय हरिचंद की असगर पत्नी और बेटी पीताओं से सब हरिचंद परिवार के अमृता गणेश पीताओं से वन मालिनी दरबारी रेस गाड़ी से हाय मालिनी एक गीत और खातिर फिर राजमना लोंग चिबुग राजा स्टीव नानू प्रवीण भैरव और श्याम मंगल अगला गीत लोग के नाम। और अभी टिकटॉक पर ढेर कोई हमने की फॉलो करा था बेशक तो लोग खातिर अगला गीत चराव अब्जा जी हाँ सुमन जलसा ग्रुप है गीत तोरो खातिर आशा तिराना नमस्ते है गीत तोरो नाम वर्ष हेलो फिर है गीत चली बिपिन बी खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ अनिता लाल जी हेलो और साथी साथी रिवेज पर से हवन है गीत तोरो नाम तोर माता जी तोर पिताजी तोर सब परिवार के नाम हेलो रिसोल रोनी मगर है यू गीत तोरो नाम राम प्रसाद बैरवा फिर है गीत चलाओ अपस करुणा खातिर हाय करुणा मामून भी उनके साथ देवत हवन नोआ और सराती और रिसोल जी हाँ दोनों संगत या लोग सैतो बैस एस एस कॉलेज आनंद सर विराट किम की सुनते माइकल जी है गीत तोरो खातिर देविया है तोर खातिर अक्सल और जैन भी अपनी के साथ देवत हवन दीपक रिसोल चला है गीत तोरो नाम बहुत ही प्यारा सन गाना है घर घर में झगड़ा झगड़ा काहे होला चल एक साथ सुनब जा।

भोजपुरी तड़का प्रोग्राम वो कार्यक्रम जहाँ पर केवल भोजपुरी गीत चल रहा, बॉलीवुड के गीत नहीं चल रहा हो। एक संगता बोलाता है, तू मेरी जिंदगी है ना भैया, ये करते बेरा सब ध्यान से सुने के तो ध्यान से नहीं सुने रहा सर, कहाँ बोला भैया बोला था। तब प्रोग्राम भोजपुरी तड़का एक में खाली भोजपुरी गीत चले रहा, और हमेशा निमन आदत डालिया, रोज के सूरज के उगे से पहले तू नींद से जाग जाइया, और फजर के उठ के नहा धोवा के पूजा पाठ करिए, सूर्य नमस्कार करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, यज हवन करिए, एक से हमने की जिंदगी में जितना ग्रह बा सब ग्रह दूर हो, जितना कष्ट है सब कष्ट दूर हो, और भगवान की जाप करिए, भगवान के नाम लिए फजर के एगो लिया हो कि बोला ब्रह्म मुहूर्त ओकर में पूजा पाठ होला हो कि नहीं, तो सूरज उगे से पहले चेहरा जाग जाए के एगो निमन आदत चेहरा डाले के, अगर हमने निमन का आदत तो अपन में डालब से तपन निकालो के भी सकब सब बोली हो कि नहीं। तो अगला गीत सब्जी दादी, हाँ एगो संगता मंगल सब्जी दादी तो गीत अब चलब से सब्जी दादी श्याम मंगल सब्जी दादी तोर खातिर नीरज रामधन बेनी सीताली सेवन की तोहर पत्नी खातिर भी, और फिर प्रिंस गीत सब्जी दादी तोहर खातिर हमके बोलते नमस्ते चाचो कैसे मर भतीजा

0: और माला भी उनके साथ देवोत्थन ललिता माला और हई गीता अमनी छावती से सुनीता राजन और अनीता खतीर बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना की कोशिश करता लाइन नाम ही रहता तो है गीत तो नाम भी कुछ सकते लाइन पे कुछ मिल अब जा भी ओके चलो कुछ मिले टेलीफोन करा था वन ओके हेलो
1: हेलो
0: हाँ नमस्ते
1: प्रताप जी
0: श्रीमती जी
1: सुयाग से
0: कैसे समाचार
1: सब ठीक है
0: आज बड़ी गर्म कर लग बाहों की नहीं
1: हाँ बहुत गर्म
0: भाप हो दिन
1: कैसे हैं
0: हम ठीक हैं तू कैसे हुआ बोला था
1: हाँ ठीक तनिसन बीमार
0: हाँ ते लासांते इसने रहे रहना
1: हाँ तोरा बहुत लासांते नहीं ठीक बा
0: हाँ
1: एगो गीत डाल दिया
0: हाँ बोला कौन गीत सुन बा
1: सिद्धार्थ के गीतवा डाल दिया भोजपुरी गाना
0: विनोद
1: बाप दादा के बोली है
0: बाप दादा के ऐसा जोड़ी बाप दादा के बोली
1: बहुत जोड़ी गीत है बहुत जोड़ी
0: खुशी रहे गीतवा
1: हाँ खुशी रहे गीतवा सुने के और जाने ला एगो बात बोला था तोरा और सिद्धार्थ के देखत रही ना हम टेलीविजन में हमर भाई रह कर्णियन
0: पारे
1: भाई के नाम रहल गौतम महेश जब जब हम टेलीविजन में ओके देखत रही था हमरा हमर भाई के याद चलावत रहल
0: ओ हो हो हो हो हो
1: भाई तो नहीं बा भाई तो चल गए 10 बरिस हो गए भाई के याद चलावे ला ओकर बोलिया सुनीला
0: तो भाई पारी ओके देखा पारी रहल
1: हाँ भाई ओके देखा तब बुझा ही हमारे भाई भी खड़ा मैं हमारे आगे
0: जैसे मुआक मजे कोली करल बा फुटो दिन में
1: ये किस्मत डाल दिया सब चंद्रमुनि परिवार कहती
0: आली हाँ डाल दी
1: सब महेश परिवार कहती
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपको भी
0: ओके शुभ रात्रि हाँ तो बाप दादा लाग के लोग के बोली तो बिंदु को गीत चली बाग टू बाग एगो प्रीतम कुमार दुचुआ के सब्जी दादी और दूसर का गीत विनोद सिंह दत्त के बाप दादा लोग के बोली और है गीतवा जुन चरावती से सब संगतिया लोग खातिर भी राविश मंडू कर बाप कर माँ कर माँ रेखा भाई भौजी चीजों फोर सब मंडू परिवार के नाम चाचा आत्मा राम है गीत और खातिर चची ललिता कुशल थयोले से वीरापेन रोसाय प्रतिमा केत शिशांक सरजू हवन सैंतुब एस एस एस कॉलेज से फिला फ्लोरा से विशाल विशेषर ओकर घरौली ओकर बेटा भवेश और सब विशेषर परिवार के नाम क्यूपिप से सुबीर रामनोरथ ओकर घरौली ओकर दुगो लड़का और सब रामनोरथ परिवार के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत आप सुदेवी विरासा में गीत और नाम बानो है गीत और खतीर वंदना सुनीता राजन अनीता माला बानो भी उनके साथ देवोत्थन तो चलो एक साथ सुने सब्जी दादी और बाप दादा लोग के बोली बाग टू बाग दुगो गाना

है जो मकई है एगो फल भी एगो सब्जी भी है और इनकर प्रयोग ढेर तरीका से होला। और जो मकई है जो माई बुरासा है तो एक में ढेर मना तत्व बा जैसे कार्बोहाइड्रेट

विद प्रोटीन फाइबर और विटामिन। और एक बुई करके खाल जला, बुई मकई या मकई के घिये करके भी खाल जला को मैं जीबे डाल दे घिये करके तो भैया मज़ेदार। और मकई के दाना लाग है माई जिसे बोई रहा सा, ओके मुर्गी के भी दे रहा सा खाई के। और मकई जुन है मकई के ओकर दाना हमने जगफिया में भी सेवी कर रहा सा, मीन उन पकड़े बता सकब मकई की दाना डाली। और मकई बड़े ही स्वादिष्ट है और मकई पूरा साल भर साल मिलेगा बाजार में जीब तो बोलब मौसम के बोलो भैया मकई बात और लगे तो मकई थोड़ा दे। और जो मकई तान रहे जैसे अच्छा रहा खाई के तो टेम्पो में डाल दा मकई के को तीन चार को मकई मिली नमक डाल दा पानी डाल दा जो कुछ सुपड़े करी थे तो मकई तैयार होकर माफ़ करिए अपन यहाँ के बिक दिए। और मकई वा सकभग खाए बड़ी ही आराम से तो भूले नहीं बाजार जाइब तो मकई ले ले आइए और अपन परिवार लोग के सर्व करिए। और अगला गाना बधाई हो बधाई रही तक गजादर की तो अकेले हुए बोबा सिंह के हरीश भाई खातिर काला छोटी पौला जी से मिशन क्रॉस रोड लाल माटी से रविराज सिन्हा बिच्छू को कर पत्नी स्वयं प्रभा बेटा प्रत्यक्ष और सब बिच्छुक परिवार के नाम। हरीश नारायण मिडलैंड से साइलेंट की ओर से ओकर बड़का संगतिया वीर वीरानन दीन दयाल के नाम। तो चले एक साथ सुने गीतवा बधाई हो बधाई।

रात की 10 बजे तक सुना भोज हुई तरह का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन से अजय प्रताप सिंह सितालू के साथ रात के 11 बजे रे और संगतिया लोग अब तोरा सुनाओ जा हमने को छोटा सन कहानी और कहानी के शीर्षक बड़ी मजेदार कहानियाँ और कहानी के शीर्षक घमंडी राजा। तो बहुत पुरानी बात है, एगो राज्य में एगो राजा रहतल। वो बहुत धनवान शक्तिशाली रहल, बल्कि ओकर में एगो खराब आदत रहल, वो बड़ी घमंडी रहल। राजा के लगे कि ओकरा से बढ़िया बुद्धिमान या ताकतवर कोई नहीं बा। वो गरीब लोग के हमेशा छोटा समझत रहल और अपन मंत्री लोग के बात भी कई बार नहीं सुनत रहल। एक दिन एगो बूढ़ा साधु राजा के दरबार में गल। राजा घमंड से पूछलक, बतावा साधु जी, ई दुनिया में सबसे बड़ा की बा? साधु मुस्कुरा के बोलक, महाराज समय सबसे बड़ा बा। राजा हंस पड़ा और बोलक, हमरा लगे सोना बा, धन बा, महल बा, समय हमर का बिगाड़ सकेला। साधु कुछ ना बोलक, चुपचाप रगल। कुछ दिन बाद राज में भयंकर सूखा पड़ गल, खेत सूख गल, तालाब खाली हो गल और लोग पानी खातिर परेशान हो गल। राजा के महल में भी पानी कम पड़ गल। राजा अपन सैनिक के आदेश दिलक कि दूर दूर से पानी के आवल जाए, बल्कि पानी में कमी बढ़ती गल। एक दिन राजा घोड़ा पर निकलल और रास्ता भटक गल। बहुत देर तक ओकरा एगो छोटा सा झोंपड़ी दिखाई पड़ल। झोंपड़ी में एगो गरीब किसान रहतल। राजा पानी मांगे गल। किसान के लगे बस एगो छोटा घरा पानी रहल। किसान बिना कुछ सोचे वो पानी राजा के दे दिलक। राजा पानी पी के पूछलक, तू अपन खातिर पानी हम के दे दिला? किसान मुस्कुरा के बोलक, महाराज पानी से जान बचेला, धन दौलत से नहीं, आज रउआ की जरूरत बा, ई खातिर थोड़ा पानी देवत है। राजा के मन में किसान के बात घर कर गल। ओकरा पहली बार ऐसा एहसास होल कि राजा खोकला से आदमी दूसर से बड़ा ना हो जाला। राजा वापस महल आके अपन घमंड छोड़ दिलक। उ राज में कुआं तालाब पोखरा खुदवैलक और गरीब लोग के मदद करे लगल। कुछ साल बाद राज्य फिर से हरा भरा हो गल। लोग राजा से अब ना डरे, बल्कि राजा से बहुत प्यार करे, कहे कि राजा के घमंड नहीं रहल। कहानी किसी की है कि घमंड आदमी की कमज़ोर बना देवेला। असली बड़प्पन धन ताकत या पद में नहीं बा, असली बड़प्पन बा

एगो व्यक्ति के नम्रता और ओकर व्यवहार में। तो हमेशा सीखिए जिंदगी में घमंड ना करे के, चाहे कितना भी धन दौलत तोहर लग रही तो हम्बल रहिय, अम्बल रहिय, रौची रहिय और जो है दयालु रहिय, एक दूसरे की मदद करिय। है घमंड कोई की काम नहीं आवेला। रावण जैसन व्यक्ति की घमंड ना चल तो हमने तो नर चोला है सा हो कि नहीं। ऐसा में सुनब जा राजेश राकेश कोप के आवाज़ में अगला गीत अगिनानी। बहुत ही प्यारा संगीत है और गीत तो हमने चलावा दैसा आशा जानू खातिर कतेज रहेलन कर्मा कुमारी फिर शुभम शुभम के मंगेतर दीदी आशा जीजाजी और सब जानू परिवार के नाम देवेन नदी वाला वैनकूवर कनाडा से अमन रवि बंगारू एक गीत और खातिर अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से बाल गोपाल के दुगो लैका और इंदिरा चिंताराम हमने के साथ देवथवन चंदन प्रिया सलोनी सब चिंताराम परिवार के नाम जानकी सी सहाय माता बास से और बेटा बहु और सब सी सहाय परिवार के नाम रतन निहाल गांवे से हवन पत्नी करुणा पापा विजय ज्ञान और चित्रा विश्राम मौदावे से रिहाना हसनाली गीत रीता और रेणुका के नाम। तो चले एक साथ सुनाए गीत तो अगे नानी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 यू आर लिसनिंग यू RM3 रेडियो रेडियो।
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
3: भोजपुरी तड़का
4: भोजपुरी चरका प्रोग्राम गो कार्यक्रम है जोन रोज के चलेला लेंदी से लेके दिवास ले रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और बेशक कर में तो बन पसंद है भोजपुरी गीत मांगे ले जा और ढेर कुछ ये प्रोग्राम में हमने की मिलेला सीखे के भी और खाना खजाना बॉलीवुड न्यूज़ एगो कहानी। और अभी थोड़ा सुन रात के 10:10 हुआ था और वो छोटी तरह का प्रोग्राम जाइए रात के 11 बजे बॉलीवुड न्यूज़ अन नहीं जा। और इत जानी जा सके हमने के चाहे था हीरो आज हमने के बीच नहीं बा। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मौत हो रहा 14 जून 2020 के मुंबई के बांद्रा स्थित तो कर फ्लैट में। वो 34 बरिस के रलन और कर मौत के बाद मामला बहुत चर्चा में आ गल। IIMS के फोरेंसिक टीम ने निष्कर्ष दिलक की ई हत्या ना बल्कि आत्महत्या के मामला रहल। बाद में CBI भी लंबा जांच करलक। ओकर बाद मार्च 2025 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करल गल। CBI के मुताबिक सुशांत सिंह के आत्महत्या खातिर कोनो व्यक्ति के उकसावे के पर्याप्त सबूत ना मिलल और FIR में नामजद लोग के खिलाफ मामला बंद करे के मांग करल गल। हालांकि सुशांत सिंह के परिवार के वकील बाद में CBI के रिपोर्ट पर सवाल उठैलन और रिपोर्ट के अधूरा बतैलक। ईचान के पक्ष आपत्ति CBI के निष्कर्ष से अलग अगर और बेशक 2020 के सितंबर 2026 तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले के मुख्य घटनाक्रम आसान नहीं रहल और बहुत वाद विवाद हो कर मौत पर। और 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपन घर में मृत मिला रहल। मुंबई पुलिस शुरुआत में मामला एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करलक। और जुलाई 2020 में सुशांत सिंह के पिता शिकायत पर बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती आ कुछ ओरी लोग के खिलाफ मामला दर्ज भेल। आरोप में आत्महत्या खातिर उकसावे समेत कई धारा शामिल रहल। 19 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट बिहार के दर्ज मामला की जांच CBI के सौंप दिलक। 2020 में AIIMS की मेडिकल राय मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष रहल कि मौत फांसी के कारण भल रहल ना कि हत्या के सबूत ना मिलल। CBI लंबा समय तक मौत की परिस्थिति संबंधित लोग अलग अलग आरोप की जांच कर लन। सोशल मीडिया पर हत्या समेत कई तरह के दावा सामने आ लेकिन ई दावा के जांच के अलग अलग करके देखल जरूरी बा। और बेशक CBI बांद्रा अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करल गल। CBI के निष्कर्ष रहल कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या

के मामला रहल नामजद लोग के खिलाफ आत्महत्या खातिर उकसावे के पर्याप्त सबूत ना मिलल। और सुशांत सिंह आज हमनी के दुनिया में नहीं बा, पर ओकर मौत पर आज भी स्पेकुलेशन होता। ढेर कोई बोला था कि ओके कोई मार के मुआ दिलक, कोई बोला था एगो आत्महत्या है, पर आज देख कोई नहीं सकल जाने कि है जो सुशांत सिंह जो सितारा रहल ओकर मौत सच्चे में कैसे।

जी, अक्सर ऐसे बॉलीवुड में होला है, पहली बार नहीं है, पर दुख की बात यह है कि ऐसे नहीं को कलाकार जो टीवी सीरियल शुरू करके बड़ा बड़ा फिल्म में आ रहा और एक दिन ओकर मृत शरीर मिलल ओकर अपार्टमेंट में वो टंगा रहा अपन बंसिलाते में, ढेर कोई बोलता है वो आत्महत्या है, कोई बोलता ओके जान से मार दीवल कर रहा, पर आदि कोई नहीं सकेला जाने, तो भगवान भी जानेला कौन ची हो रहा, भगवान ओकर आत्मा के शांति दे। अब जेकर भी माँ बाप के लड़का है तो दुख तो बुझाला, ये तो ज़रूरी है कि जाँच पड़ताल छाँ करे कि हाँ कि नहीं, पर दुनिया में ऐसे हो रहा है कि कबो जो बात हमने ना सोचे अब सर वो बात हो चला। रात के 10:14 हुआ था, तू सुना तो भोजपुर का कार्यक्रम और अगला गाना नाच मौसी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर गाना है, सुभाष शंकर गीतवा गैले हवन और है गीत हम चलावते सब भाई राफिक मोहित के नाम तायक से हवन, रोजीदा हाईलैंड से, भाई इब्राहिम पोटरी से, फातमा न्यू ग्रोव से और आफेज लावेनिया सैम्पियर से। आफेज कमरवा बड़ी जोड़ डोलावता और नाचता झूमता आफेज, तय गीत हो नाम नाच मौसी।

ये बात सच है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जाता सब कुछ किने के आसान नहीं बा। निका जी बोला सा कि खाई के चीज अगर खाली किने खोजब तो सब पैसा फिनी हो जाए। ये कहते बोला सा कि पारिश नहीं करिया, अगर घर में सब खाना तैयार करे तो घर में खाना तैयार करिया, ऐसे में तोरो खाना मिले, तोहर पति तोहर लड़का लोग के भी खाना मिल जाए। बाहर आके खाए के कहूँ कहूँ पर ढेर महंगा, बड़ी महंगा बेचेलन सर। हम नहीं माना करते हैं बाहर आके खाए का कब कब परेरा किने के, पर अगर फजर के बुनेरे उठ जाइबा, वो 3-4 बजे फजर के उठ के पका दीबा तो तोरो खाए की मिली दिन के, तोहर लड़का के, तोहर आदमी के भी सब कोई के खाए की मिली। पर एगो बन बुरौते चेहरा स्ट्रांग वे पाओ चेहरा डिटर्मिनेशन चेहरा फजर के बन आलोम डाल दिया और सोचिए कि कौन सी पकई बा ताकि सब कोई के खाए की मिली और जिन पैसा से जिन खाए के किने के रल वो पैसा बच जाए तो पैसा सब दूसरा चीज किने। तो चाहेला कब कब वो दिमाग के इस्तेमाल करे कि भगवान का तेरे हमने एगो सेबो एगो दिमाग दिलक बा। अब सब चीज खोज खाली भाड़ा किन के खाए के भैया तो सब पैसा फिनी हो जाए। तब रोल कर महंगाई के जमाना बा, खाली मॉरिशस में नहीं है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ता तू चाहे जी बा कनाडा इंग्लैंड इटाली ला फ्रांस जो इन्फ्लेशन हो तई से जो है महंगाई बढ़ले जाता और महंगाई हमेशा बढ़ले जा रहा, वो कमती नहीं होला बढ़ले जाला है कि दुनिया भर में से हुआ था। तो महंगाई से बचे खातिर सब गार्डनिंग करे, अगर तोहर आंगन में जगह बा माटी बा तो अपन को खूब सौदे बनैया। और हम देख रहे हैं धीरे कोई पनीर बनाओ एन सर धे मना चीज सब अपन हाथ से बनाए तो सब नहीं पर किने के और तो पैसा बच जाए। तो पैसा की बात करते सर तो अगला गीत है पसंद राज जुल्म की गवर रुपया आई रुपया सबके नचावेला भैया। और पसंद राज बुलम की जुल्म के गीत है रुपया है गीत चरावती स संजय बिहारी की रोसे कर पत्नी कर बेटा पतो बेटी दामाद और कसा परिवार के नाम रीता रेणुका की नाम भी गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना कोई रात के उनकी सुनाता है गीत तलो के नाम भी रुपया शास्त्री बने माली कैसी बा समाचार भैया है गीत तोहरो नाम खासम खास।

खन खना खन खन खना खन बाजेरा रुपया नाचे लाल सबके नचावे ला रुपया। और मॉरिशस में जिए के छेना धेर सारा पैसा। पैसा बात है सब कुछ बा भैया, पैसा नहीं बात कुछ नहीं बा, हॉकी नहीं। और पैसा के बढ़िए मोल बात, काम करिया मेहनत से लगन से और पैसा कमैया। ओवर टाइम में सब मिली तो जरूर करिया जा, नहीं बोलिया कि ओवर टाइम नहीं कर बा, ओवर टाइम जरूर करिया, ढेर मना पैसा मिली। रात के 10:00 आधा हुआ था, तो सुना था बहुत छोटी तरह का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह सीतालू के साथ। रात के 11 हमने किया तो के साथ। अगला गीत राज कमल चिंतामणि गैले हवन ओ सोनी देखा गीत हम चाहते इस वेदांश खातिर। हेलो वेदांश, वेदांश का तो बोन से हवन जा हमने के साथ देव थवन, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिकुटा त्रिकुटा हवन रोजेल से, हाय त्रिकुटा गीत तोरो नाम तोहर सब परिवार के लिए। डॉक्टर अंजू है गीत तोहर मंगेतर और तोहर सब होने वाला तोहर ससुर ससुमा खातिर और तोहर होने वाला परिवार खातिर भी। विपिन भैया वन फ्लैक्स से हेलो विपिन, गीत तोहर जिगरी दोस्त राकेश खातिर। उदय धनी राम अभिया जी पस्से हवन और सब धनी राम परिवार के नाम। प्रीतम राज जमीला गीत और खातिर। किशन गुरियाप गीत और नाम और है गीत चली श्रीमान श्रीमती काशी जी के नाम। कर बेटा पतो और सब काशी परिवार के नाम।

भाई बहन लोग संगत लोग हरी जीत के संगीत भोजपुरी चर्चा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हमने साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। टिकटॉक पर हमने के देख लिया, रेडियो पर सुन ला, हमने के जगह खातिर हमने के सुनने खातिर शुक्रिया। चलो कैसे एस और फोन कॉल खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की तो लोग मुलाकात हुई शाम के भजीर के, जी हाँ 6 बजे से 9 बजे ले MBC रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजाना प्रोग्राम में। तब तक हमने की इजाजत दाओ जी प्रताप सिंह की ओर से सबको प्यार भरा नमस्ते सलाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी म्यूजिक लवर्स का सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां हर गीत अपने साथ एक खूबसूरत याद लेकर आते हैं। पुराने बॉलीवुड गाने की वो मिठास, वो ब्यूटीफुल लिरिक्स और वो टाइमलेस मेलोडीज जो आज भी दिल को वैसे ही टच करते हैं। तो आज की शाम अपनी यादों के साथ बिताइए, क्योंकि कुछ पल कभी पुराने नहीं होते हैं दोस्त।

कहते हैं वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ गाने कभी नहीं बदलते। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक पुराना गाना सुनते ही हम सडनली अपने पास्ट के किसी ब्यूटीफुल मोमेंट में पहुंच ही जाते हैं। कोई वजह नहीं होती, बस एक मेलोडी और हजार मेमोरीज। आइए उन्हीं सुनहरे पलों को फिर से जीते हैं सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

आई रियली होप कि आपको हर गाना दिल से अच्छा लग रहा है। वैसे आपके घर में भी कोई ऐसा पुराना गाना है जो सुनते ही आपको किसी अपने की याद आ जाती है ना? शायद वो गाने किसी स्पेशल पर्सन से जुड़ा हुआ हो, किसी जर्नी से या किसी अनफॉरगेटेबल मोमेंट से। म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल खास बात तो यही होती है, वो मेमोरीज को जिंदा रखते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को खोल कर एंजॉय कीजिए अपना सुनहरे पल में।

तो दोस्तों पुराने हिंदी गाने में एक अलग ही मैजिक था ना, अभी भी है, था क्या? लिरिक्स में फीलिंग्स, मेलोडी में इमोशंस और आवाज में एक ऐसी वार्म्थ जो सीधा दिल तक पहुंची जाती है। आज के फास्ट लाइफ में जब सब कुछ इतना जल्दी बदल रहा है, दीज एवरग्रीन गाने हमें थोड़ा स्लो डाउन करने पर मजबूर कर देते हैं और ब्यूटीफुल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करने का फिर से मौका देते हैं। तो चलिए अगला गाना स्पेशली आपके लिए गिनेशा की तरफ से ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे देखा जाए तो कभी कभी एक पुराना गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, वो एक कहानी होती है, एक कहानी आपकी मेरी हम सब की। जी हाँ दोस्तों, किसी की मोहब्बत, किसी का इंतज़ार, किसी की दोस्ती, किसी की जुदाई और कभी सिंपली खुशियों की एक ब्यूटीफुल मेमोरी, आज फिर उन्हीं कहानियों को म्यूजिक के जरिए महसूस करते हैं सुनहरे पल में। तो चलिए, दिस वन गोज आउट टू यू स्पेशली ऑन रेडियो मॉरिशस इस खूबसूरत से शो में।

Well guys, चलिए फिलहाल के लिए it's time for Ganesha to say goodbye to you. वादा तो हम हमेशा करते हैं वापस लौट के आएंगे और भी खूबसूरत खूबसूरत गानों के साथ और भी एक खूबसूरत सुनहरे पल शो के साथ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि. शब्बा खैर.

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।